0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप्स। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, यह शरीर श्वास और मन के बीच एक बढ़िया सा संतुलन का अभ्यास भी है। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं

0: से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से योगिनी सप्ताह स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि योग शिविर में 30 दिवसीय हम नए नए आसन प्राणायामों को मिलकर के कर रहे हैं। आसन प्राणायाम के साथ में एक शब्द का जुड़ा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ आज जैसा कि हमको ये बताना है कि अब नया एक प्राणायाम हम आप सभी के साथ करने जा रहे हैं। नया प्राणायाम यानी कि प्राणायाम तो हम रोज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आज उस प्राणायाम के साथ में जो शब्द जुड़ रहा है वह है प्रेम। प्रेम के साथ में अगर एक आसन प्राणायाम हम सभी मिलकर के करते हैं तो उसकी अनुभूति, उसका आधार और रूप बदल जाता है। किसी भी प्राणायाम, किसी भी आसन को करने के लिए सबसे पहले उस आसन प्राणायाम के प्रति हमें सच्चाई, निरंतरता और धैर्य समान रूप से रखना है। आज जिस प्राणायाम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है अग्निसार। अग्निसार के साथ में प्रेम का संबंध। जी हाँ दोस्तों, प्रेम अग्निसार। अग्निसार जो कि बहुत सारी ऐसी आंतरिक चीजें होती हैं जिसे हम शांत करते हैं, जिसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक अग्नि उत्पन्न होती है, उसी को प्रेम रूप में शांत करना प्रेम अग्निसार है। तो आइए सबसे पहले हम प्रेम के बारे में जानेंगे कि वह प्रेम अग्निसार क्यों बना। सर्वप्रथम हम आपको बताते आते हैं कि स्वच्छ वातावरण में शांत चित होकर के बैठ जाएं। तत्पश्चात एक भीनी सी मुस्कान हमारे चेहरे पे और एक नए सुबह की ओर, एक नए उल्लास की ओर बढ़ते हुए यह कामना, यह विश्वास हमारे चित मन में रहना चाहिए। आइए तो हम अब शुरू करते हैं प्रेम के बारे में जानना। यह मनोवृत्ति जिसके अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के संबंध में यह इच्छा होती है कि वह सदा हमारे पास या हमारे साथ रहे, उसकी वृद्धि, उन्नति या हित ही अथवा हम उसका साथ रहें। वह भाव जिसके अनुसार किसी दृष्टि से अच्छी जान पड़ोसने वाली, वह भाव जिसके अनुसार किसी दृष्टि से अच्छी जान पड़ने वाली किसी चीज या व्यक्ति को देखने, पाने, भोगने, अपने पास रखने अथवा रक्षित करने की इच्छा हो वह प्रेम कहलाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि प्रेम अग्निसार का अर्थ क्या है। प्रेम अग्निसार का अर्थ है कि हम कोई भी प्राणायाम जब हम बड़े प्रेम से करते हैं तो उसका प्रारूप ही बदल जाता है। प्रारूप बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम किसी भी चीज को बड़े प्रेम से करते हैं, साथ ही साथ उसे समझने, उसके प्रति और जागरूकता से जानने के लिए ही यह प्रेम अग्निसार है। प्रेम का अर्थ क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेम अग्निसार स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। यह एक मजबूत आकर्षण है और निजी जुड़ाव की भावना रखता है जो सब भूलकर उसके साथ एक प्रेरित रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो आइए भावना, दया, स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी हम जान लें। प्रेम अग्निसार की पहचान क्या है आइए अब हम आपको बताते हैं। कहते हैं सच्चा प्यार एक बार होता है और उसकी निशानी हम एक दूसरे के प्रति जब हम सपोर्ट करते हैं तब होता है। कितनी भी पुरानी या गंभीर परिस्थितियों के साथ में जब हम रहते हैं तो हमें लगता है कि इसमें हमारा साथ कौन देगा, लेकिन वह प्रेम ही होता है और प्रेम द्वारा ही होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अग्निसार का प्रेम से क्या संबंध है। अग्निसार को हम और विस्तार में जानेंगे कि अग्निसार प्रेम अग्निसार क्यों बना। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अग्निसार के बारे में। अग्निसार प्राणायाम क्रिया योग से शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होने के कारण अंदर के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसे स्वामिली क्रिया भी कहते हैं। अग्निसार विधि इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अग्निसार क्रिया से क्या होता है। प्रेम अग्निसार क्रिया प्राणायाम का एक प्रकार है जिसे हम अग्निसार क्रिया से शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है जो शरीर के अंदर के रोगाणु को भस्म कर देती है। इसे प्रालिमनी भी कहते हैं। यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। अग्निसार यानी कि प्रेम अग्निसार कितनी बार करना चाहिए। वैसे तो अग्निसार प्रक्रिया हमें दिन में 3 से 4 बार हम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि अग्निसार भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन स्वयं हमारे शरीर में जाकर एक अद्भुत अग्नि प्रदान करती है। तो साथ ही साथ अग्निसार जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक अद्भुत प्रकार की अग्नि बनती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अग्निसार प्राणायाम के फायदे बताते हैं। प्रेम अग्निसार प्राणायाम को करने से पाचन क्रिया बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, वजन कम होता है और हमें बहुत ही आरामदायक मिलता है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस है, वह अग्निसार प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अग्निसार प्राणायाम को करने से मांसपेशियां और फेफड़े मजबूत होते हैं। कफ की तकलीफ को दूर करने के लिए यह प्राणायाम फायदेमंद माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं अग्निसार करने का ठीक से तरीका। सर्वप्रथम हमने बताया है कि किसी भी स्वच्छ स्थान पर आप बैठ जाएं और किसी भी स्वच्छ स्थान में बैठने के बाद में आपका वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। साथ ही साथ हमें स्वच्छ वातावरण में तो बैठना ही है, उसके साथ में हमें अपने अंदर एक स्फूर्ति एक खुशी का आनंद भी लेना है। हमें निरंतर यह महसूस करना है कि यह प्राणायाम हमें सफलता और सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए दोनों ही आवश्यक है। तो साथ ही साथ हमें यह प्राणायाम करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करके खड़े हो जाएं, श्वास को बाहर निकाल दें, आगे झुककर हाथों को जांघों पर रख लें, श्वास को बाहर ही रोक कर रखें, हाथों से पैरों पर जोर डालें और पेट को अंदर की ओर खींचें व बाहर छोड़ें। इस तरह जब तक श्वास बाहर रोकें तब तक लगातार पेट को अंदर बाहर पंप कर सकते हैं। जब लगे कि आप श्वास नहीं रोक सकते हैं तो पेट को ढीला छोड़ सकते हैं। इसके बाद श्वास भरकर आराम से सीधे खड़े हो जाएं। 3 से 4 बार प्रेम अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। एक और तरीका हम आपको अग्निसार प्राणायाम का बताने जा रहे हैं। आप शांत चित अवस्था में बैठ जाएं। उसके बाद आप पद्मासन की स्थिति में यदि बैठना चाहते हैं तो बैठेंगे, अगर नहीं तो हम पलथी मार करके भी बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमें प्राणायाम करते समय कोई भी परेशानी हमारे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। हम जो भी प्राणायाम करें हमें बिल्कुल आराम से और सुखपूर्वक बैठ करके करना है। तो आइए हम अग्निसार प्राणायाम को बहुत ही आराम से देखते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे पद्मासन की स्थिति में। तत्पश्चात हम हाथों की मुद्राओं को यानी दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर और श्वास को हम आराम से अंदर की तरफ खींचेंगे। जितनी देर हम श्वास को रोक सकते हैं रोकेंगे और उसके बाद हमें पेट को अंदर और बाहर की ओर चलाना है। अंदर बाहर चलाते हुए हम अपने पेट की स्थिति को देखेंगे। अब हमें यह कैसे पता चले कि हमारा पेट जो है वह श्वास की गति पर अंदर बाहर हो रहा है? वह इस तरह, जैसे हम पेट पर हाथ भी रख सकते हैं और अपने श्वास के माध्यम से हम उसे कर सकते हैं। कुछ इस तरह हमारा पेट अंदर बाहर हो रहा है। इसका मतलब हमारा प्रेम अग्निसार ठीक रूप से, नियमित रूप से हो रहा है। अब उसके बाद में हम जब हमारा प्राणायाम 3 मिनट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रारंभिक अवस्था में करते हैं उन्हें 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही यह प्राणायाम करना है। तत्पश्चात हम बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और हाथों की हथेलियों में घर्षण करके आँखों पे और चेहरे पे लगाते हुए अपने प्राणायाम की पूर्ति करेंगे। तो ये था अभ्यास प्रेम अग्निसार का। आइए अब हम अग्निसार प्राणायाम की कुछ सावधानियां भी आपको बताने वाले हैं। इस प्राणायाम को ज्यादा समय के लिए ना करें, ऐसा करने से कमजोरी महसूस हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में 1.5 से 2.5 मिनट ही आपको बताया है। इस प्राणायाम को सुबह के वक्त करना चाहिए क्योंकि उस समय गर्मी कम होती है और शरीर के भीतर अधिक गर्मी भी नहीं जा पाती है। इस क्रिया को रात के खाने के 4 घंटे बाद और सुबह के खाने से 2 घंटे पहले ही करना चाहिए। प्रेम अग्निसार प्राणायाम को हम कर रहे हैं तो लाल मिर्च मसाले वाला भोजन खाने से पूरी तरीके से परहेज करनी चाहिए। उच्च रक्तचाप की समस्या है या आप गर्भवती हैं तो इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं के अनुसार सारे प्राणायाम जो कि हमने पहले भी बताए हैं वह सावधानियों के साथ में जरूर से आप करेंगे। अग्निसार एक हमारे महत्वपूर्ण अंग के लिए आवश्यक है, तो आइए जानते हैं वह क्या है। अग्निसार क्रिया यकृत और अग्नाशय की मालिश करती है और इंसुलिन अन्य एंजाइमों के उचित स्राव को नियमित करने में मदद करती है। चूँकि यह पाचन में सुधार करता है और गर्मी पैदा करता है, यह शरीर की चयापच दर और प्रतिरक्षा को भी बढ़ाता है। गर्मी में शरीर में गर्मी पैदा करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह योग आसन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि शारीरिक अवस्था में, यानी कि हमारे खुद की हमारी अवस्थाओं में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमें सर्दी में जब ठंड लगती है तो हमें गर्मी की जरूरत पड़ती है, और अग्निसार प्राणायाम जो है वह हमारे शरीर की गर्मी को उत्पन्न करता है तथा पेट की गर्मी को खत्म करता है। तो प्रेम अग्निसार यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अग्निसार प्राणायाम, जो कि आपने सावधानियां और विशेषताएं, समय, नियम सब कुछ आपने समझा, आइए तो हम इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराते हैं। अग्निसार प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति या साधारणता पलथी मार की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। तत्पश्चात हम आराम से बैठ जाएं और मुद्रा बना लें, यानी कि दाहिने हाथ को नीचे और बाएं हाथ को ऊपर रखने के बाद में हम तीव्र गति से नहीं बिल्कुल मध्यम गति से श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। इसके बाद हम श्वास को लेंगे और पेट को अंदर बाहर की ओर चलाते हुए यह महसूस करेंगे कि हमारा पेट इस समय गति कर रहा है, और उसी अवस्था में हम समझ जाएंगे कि हमारा प्राणायाम ठीक हो रहा है। तो आइए हम सभी मिलकर के प्रेम अग्निसार को प्रेम पूर्वक करें और उससे लाभ भी मिले। तो 30 दिवसीय योग शिविर में हमने किया प्रेम अग्निसार, आप सभी को एक साथ मिलकर के करना है बड़े ही प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक अग्निसार करने के लिए हम सभी को क्या कहना पड़ेगा? करें योग, रहे निरोग। तो आइए हम अब कुछ देर के लिए ध्यान की ओर चल रहे हैं।

हेलो दोस्तों, मैं समता योगा एक्सपर्ट आपके सामने आज ला रही हूँ फिर से एक नया प्राणायाम व्यायाम और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि आपने पहले भी कई बार सुना है। दोस्तों, आजकल के युग में सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो है हम अपना ध्यान रखें और साथ साथ अपनों का भी हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम के बारे में। जैसे कि यह मुख्य प्राणायाम है और यह मुख्यतः आँखों से संबंधित प्राणायाम है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हर घर में एक जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सबके क्या कहते हैं चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। उसका मुख्य कारण यही है दोस्तों, मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, या हम बहुत देर तक रात में जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी हमारी जो आँख की रोशनी है वो कम हो जाती है और आँखों से पानी आना, आँखों में जलन और बहुत सारी ऐसी आँख से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम व्यायाम जो लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है त्राटक प्राणायाम और मुख्यतः यह आँखों का प्राणायाम है। त्राटक का अर्थ वैसे तो विशेषता एक साधारण लैंग्वेज में हम बोलेंगे जिसका अर्थ होता है टकटकी, और ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी निगाह टिकाते हैं तो शरीर को बिना हिलाए मन भी स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर उधर भटकने वाले मन को शांत करके एकाग्र करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने वाले मस्तिष्क के काम करने वाले की क्षमता को हार तो करता ही है, साथ साथ हमें एक साथ एकाग्र होने की भी क्षमता बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों, हम त्राटक प्राणायाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, विधि जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, त्राटक प्राणायाम करने के लिए हम सिद्धासन में कहीं पर भी आप स्वच्छ जगह पर चटाई बिछा करके, चद्दर बिछा करके हम बैठ जाएंगे। तत्पश्चात त्राटक योग करने की जो सबसे एक सरल प्रक्रिया है जिसे हम अपने घर में आसानी से किसी भी जगह पर बैठ करके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बेड पे या हम कहीं पर भी, या जैसे सोफे पे, बेड पे, हम कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन पर ही बैठ करके इस प्राणायाम को कर सकते हैं। हम सोफे पे, बेड पे, कुर्सी पे, कहीं पर भी इस प्राणायाम को नियमित रूप से और आराम से हम बैठ करके कर सकते हैं, जिससे हमें और हमारे शरीर और हमारी आँखों को लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहली प्रक्रिया हम जान लेते हैं। इस योग को करने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है दोस्तों, वह है मोमबत्ती जलाएं और इसे आँखों के सामने रखें, यानी आपकी आँखें जो हैं वो ना तो ऊपर होंगी आँखों की पुतलियाँ और ना ही नीचे होंगी, बिल्कुल आपको सीधे एक ही दिशा में इसको रखना है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर रख लेंगे ज़मीन से, अगर हम बेड पे बैठे हैं तो किसी टेबल पे ऐसे स्थान बनाएं कि मोमबत्ती हमारे आँखों के बिल्कुल सामने आए और उसकी जो लौ है वो हमारे आँखों के बिल्कुल सामने ही रहे। जैसे हवा आती है और लौ थोड़ा बहुत हिलती ढुलती है, वैसे ही हमारी आँखें जो हैं, जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, वो उस लौ के ही आधार पर जो हमारा प्राणायाम है वह स्टार्ट होगा। हाथों को घुटनों पर रखकर आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और शरीर को आराम देने के लिए धीरे धीरे श्वास लेंगे। जैसे हम बिल्कुल तेजी से श्वास नहीं ले सकते हैं, बहुत आराम से श्वास लेंगे धीरे धीरे। और त्राटक प्राणायाम ही अपने आप में ऐसा मुख्य प्राणायाम है जिसे बहुत ही आरामदायक कहा गया है। उसके बाद इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वह है जब आंखें बंद करें और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ को एक टक देखने की कोशिश करें। कैसे करना है, जैसे हमने मोमबत्ती जला ली और हम बिल्कुल हम ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठ चुके हैं, हमारी आंखें उस मोमबत्ती को देख रही हैं और लगातार देखती जा रही हैं। आप यह व्यायाम सबसे पहले आप टाइमर लगा लेंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, सबसे कम का हम इसमें लगाएंगे टाइमर, जैसे सबसे पहले हम 1.5 मिनट का लगाएंगे।
उसके बाद में आंखों की जो पुतलियां हैं वह बिना इधर उधर घुमाए, आंखों की जो पलकें हैं उनको बिना नीचे ऊपर झपकाए, सिर्फ एक तक हमें मोमबत्ती की ओर देखना है और देखते देखते एक तक देखते रहना है। आंखों पर बिना दबाव डाले जितना संभव हो सके उतना उस लौ को देखें और जरूरत पड़ने पर फिर से आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान भवों के केंद्र की ओर करें, यानी हमारी आईब्रोज के बीच में ध्यान होना चाहिए और इस अवस्था में मस्तिष्क में मोमबत्ती की लौ की कल्पना करें। आप इमेजिन करें हमारी जो ये मोमबत्ती हमने जलाई है वो हमारी कल्पना में है और उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही साथ हमारी आंखों की नजर सामने वाले किसी भी रंग कप पर पड़ सकती है। यदि हम मोमबत्ती को एक तक देखते रहेंगे दोस्तों तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि हमें अनेका अनेक उसमें रंग उसमें हमको दिखाने लगेंगे, जैसे कभी लाल दिखने लगेगा कभी पीला दिखने लगेगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम त्राटक प्राणायाम कर रहे हैं और एक तक हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां जो हैं बिना पलक झपकाए हम किसी भी एक चीज को केंद्रित होते अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होने लगता है कि उसकी जो लौ है वो हमारी आंखों में जाने लगती है, जिससे आपको लगेगा कि हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मस्तिष्क के भीतर उभरने वाली छवि गायब होने लगे, यानी जैसे मैंने अभी आगे बताया कि हम उस मोमबत्ती को अपनी भवों के बीच में बिल्कुल ध्यान एकत्रित करके देखेंगे, तो ध्यान रहेगा कि 3 से 4 मिनट, जब हमारा 2 से 2.5 मिनट हो गया है तो हमें लगेगा कि हम उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए हमें ये महसूस होगा कि हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। और उसके बाद से जब हमें लगे कि हमारी आंखों से पानी गिरने लगे तो हम स्वतः आंखें धीरे धीरे बंद कर देंगे और आंखें बंद करने के बाद में हम एकाग्रचित होकर के 30 सेकंड या 1 मिनट बैठ करके हाथों की हथेलियों में घर्षण करके वो जो हमारी हथेलियां गर्म हो जाएंगी अपनी पुनः आंखों पे लगाएंगे और चेहरे पे लगा करके धीरे धीरे हम आंख को खोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा त्राटक प्राणायाम करने की विधि। अब जान लेते हैं त्राटक प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों हमने त्राटक प्राणायाम कैसे किया जाता है यह तो हमने जान लिया, पर इसकी विशेष कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं त्राटक प्राणायाम अभ्यास जो है वो हमें कब करना है और कितनी देर के लिए करना है। यदि हमारा खाली पेट होगा तो यह अभ्यास सुबह 5 से 6 के बीच में अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम सो करके सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों में आपने खुद देखा होगा एक अजीब प्रकार की एक जैसे लार आंखों में आ जाती है। जब हम उठते हैं अपनी आंखों को मसलते हैं उसके बाद हमारी आंखें जो हैं स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। तो यदि इसको हम सुबह उठने के बाद ही अगर हम कर लेंगे तो हमारा इसका जो साथ में इसका प्रभाव है वो 2 गुना हो जाएगा। आप रात में सोने से पहले भी इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यदि हम जैसे सोने जा रहे हैं तो हमें 5 मिनट पहले अपने जैसे हम बिल्कुल ये लगे कि हाँ बस अब हम सोने ही जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले इस प्रक्रिया का आरंभ कर सकते हैं और जैसे लगे कि हमारी यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही है पूर्ण होने के बाद में हम आराम से सो सकते हैं। इसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि त्राटक योग का अभ्यास करते समय हमें महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी करनी है कि कमरे में ना तो रोशनी से भरा हो और ना ही उसमें बहुत अंधेरा हो, मतलब मीडियम होनी चाहिए, ना तो बहुत रोशनी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही अंधेरा होना चाहिए। प्रतिदिन दोस्तों 3 से 4 मिनट यह अभ्यास किया जा सकता है। इसकी जो समय अवधि है वो 10 से 15 मिनट तक भी हो सकती है, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसको 2 से लेकर के 5 मिनट के अंदर तक कर सकते हैं। नेत्र विकार बहुत सारे हो गए हैं आजकल, तो उस नेत्र विकार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को खत्म करने के लिए यह त्राटक जो प्राणायाम है यह उपयुक्त
बहुत है। तो आइए दोस्तों, हम अब त्रिटक प्राणायाम के इस योग के लाभ जान लेते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है, यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। उसके बाद आंखों को शुद्ध करता है, और एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह व्यायाम हमारी आंखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, आंखों में भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, और जब हम किसी चीज को एक तक देखते रहेंगे तो उस पे प्रेशर पड़ेगा, हल्का प्रेशर पड़ेगा, और इससे हमारी आंखों की जो भी मांसपेशियां हैं वह उनको मजबूती मिलेगी।

भूर्भुवस्वः। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए, केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी, तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं। और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

चलिए अब मैं आप सभी को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आँखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

आइए अब आपको सभी धर्मों के अनुसार माँ और ईश्वर के संबंध की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ वही है जहाँ परमात्मा छुपा होता है। गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीजस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीच्स गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की

ब्रीथ यानी श्वास है जो सृष्टि में बहती है। ईसाई धर्म में माँ मैडोना मैरी प्रभु यीशु की माँ को ईश्वर की माँ माना गया। ईसाई धर्म में माँ त्याग बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है। मदर मैरी के आंचल में पवित्रता की सबसे सुंदर छाया मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था, माँ का प्रेम अनमोल है जो कभी किसी से बदला नहीं मांगता। बौद्ध दृष्टिकोण में माँ करुणा दया और सह अस्तित्व का आधार है। यहूदी संस्कृति में माँ को परंपरा की रक्षक, संस्कारों की वाहक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है।

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं और हर धर्म, हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप हैं। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खेमा बख्शीश दिखान, जिथे बच्चे पल दे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं, पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक आध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति, वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

माँ और इंसानियत दोनों बिना स्वार्थ के जीती हैं। माँ बिना शर्त प्यार करती हैं। इंसानियत भी वही है जो बिना मतलब किसी के आंसू पोछे। माँ भूखी सो सकती है पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए जीना सिखा दे। इसलिए माँ और इंसानियत एक दूसरे का प्रतिबिंब है। चलिए आपको अब माँ के स्पर्श से जुड़ा एक सूफियाना विचार सुनाती हूँ। माँ की हथेली पर खुदा की मोहब्बत उतरती है और उसकी दुआओं में जन्नत से भी बेहतर ठिकाना मिलता है। और अब आज के एपिसोड की आखिरी बात, माँ पर कोई धर्म नहीं होता, बेशक उसका कोई मजहब नहीं, पर हर मजहब उसी से शुरू होता है। उसकी कोई भाषा नहीं, पर हर प्रेम उसी की बोली से जन्मता है। उसकी कोई सीमा नहीं, पर हर जीवन उसी की गोद में सीमित होता है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो सब अधूरा है। माँ रब की रचना नहीं, बल्कि रब भी शायद माँ की रचना हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लूंगी आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़।

0: मॉर्निंग गोंडा सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9761 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

गुड मॉर्निंग गोंडा, हो चुकी है भाई मॉर्निंग। घड़ी में बज चुके हैं 8:30 यानी कि 8:30:31 बाद स्टूडियो क्लॉक, और हर सुबह की तरह एक बार वापस से मैं आ चुकी हूँ आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे उन्नति, और हर सुबह यानी कि वेंसडे के स्पेशल वाले सुबह में हम लोग मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी के अलग अलग रंगों पर बात करते हैं। तो भाई आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली गोंडा, शहर की धड़कन। और हर दिन यानी कि हर वेंसडे हम किसी ना किसी जज्बात को जो हम पीछे छोड़ते आए हैं, जिनको हमने देखना बंद कर दिया है, हम उस पर बात करते हैं। थॉट ऑफ द डे से हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती बॉस, हमारी दिन की शुरुआत होती है पोइट्री ऑफ द डे से, बिकॉज आई लव पोइट्री। और आपको भी पता है कि पोइट्री कितनी खूबसूरत होती है, हर वो इमोशन हम कवर करने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिंदगी के ब्लैक एंड वाइट से निकाल कर रेनबो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में आज की जो हमारी प्यारी सी पोइट्री है वो जानना चाहेंगी क्या है, हैं जानना चाहेंगी सही में, बताइए बताइए। अच्छा चलिए बता ही देते हैं मैं आपको। तो भैया आज की पोइट्री कुछ इस तरह से है कि क्योंकि अभी अभी हम चाय भी पी आ रहा हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत चाय से हो जाए। तो भाई सुबह की पहली चाय के साथ एक बात दिल में आई है, हमने अपनी खुशियाँ ना जाने कितनी बार गंवाई हैं। हर सपने को पहले एक ही तराजू के अंदर है तोला कि चार लोग क्या कहेंगे, हमेशा खुद से यही है बोला। पर सोचो सच तो ये है दोस्तों कि वो चार लोग कभी मिलते ही नहीं, उनकी चिंता में हमारे आंगन के गुलाब कभी खिलते ही नहीं। तो छोड़िए उन्हें जो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, आज का दिन उनके लिए जिए जो आपको अपने बेहद करीब मानते हैं, यानी कि मैं। तो भैया ये सीधी सी बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे ये ताने सुन सुन के ना मेरा तो दिमाग पक चुका है। हर दूसरा बंदा आ जाता है और चार का कनेक्शन ही पता नहीं क्या है, हर चीज़ चार पे आके अटक जाती, चार दिन चार दुनिया चार जहान, ये चार चार चार चार चार। और इसी की एक कड़ी में आते हैं हमारे ये चार लोग, जिनकी टेंशन पूरी दुनिया को होती है, और एट द एंड ये होता है कि वो चार लोग बैठ कर इतना कह रहे होते हैं कि भैया मज़ा नहीं आया, और उनकी टेंशन हम पूरी ज़िंदगी लेके घूमते हैं। हालांकि उन चार लोगों को आपसे कुछ खास मतलब है भी नहीं, उन्हें बस बातें करने में मज़ा आता है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ खास चल रहा नहीं है, और आपकी लाइफ को खास देखकर सोचते हैं इसको आम बनाया कैसे जाए। तो आम मत बनने दीजिए, आप अंगूर बने रहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ चार लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, देना भी नहीं चाहिए। कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, और यकीनन जो वो खुद होते हैं इसलिए वो आपको भी बोलते हैं। अगर अब वो नाकामयाब हैं तो आपकी नाकामयाब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भी उन्हीं का होने वाला है, अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, अगर आप उनकी चीज़ों को सुनते हैं और अपनी बातों को नहीं देखते। वो कहते हैं कि परफेक्ट होने के चक्कर में, यानी कि उनकी नज़र में परफेक्ट होने के चक्कर में हम अपनी नज़र में ही खुद को गिरा लेते हैं, सोचते रहते हैं कि यार दुनिया की नज़रों में अच्छा बनना है, दुनिया की नज़रों में परफेक्ट बनना है। बट सच तो यह है कि आपसे हर वक्त हर कोई खुश कभी हो नहीं सकता, आप कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि हम बने ही इम्परफेक्ट हैं, हमको परफेक्शन से इतनी मोहब्बत काहे है, नहीं होनी चाहिए। जापानीज में एक कहावत है वाबी साबी, ये यानी कि आपका इम्परफेक्ट होना ही आपको सबसे खूबसूरत बनाता है। एक टूटा हुआ कप जिसे हम फेंक देते हैं, उसे सोने के कलर से जोड़कर उसको और भी महंगा बेचा जाता है, यानी आपका इम्परफेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चार लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, अपने सपनों पर काम करें, अपने अपनों के साथ वक्त गुजारें, और ये मत सोचें कि यार ये कुछ बोल रहा था, वो भी कुछ बोल रहा था, इसने कुछ कहा है, उसने कुछ कहा है, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसने न जाने कितने लोगों से कितना कुछ कहा है, तो मेरी बदनामी कर रहा है। इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास काम ही यही है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। फिलहाल ये तो थी आज की पोइट्री ऑफ द डे, जो सीधा सा एक ही मतलब समझाता है कि चार लोगों की चिंता अपने इस प्यारे से दिमाग के अंदर से निकाल दें, इस प्यारी सी सुबह के अंदर से निकाल दें। मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे राजेश खन्ना बहुत पहले ही कहकर जा चुके हैं कि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आज आपकी बुराई करेंगे कल आपकी तारीफ करेंगे, इनका काम है पलटना, और ये पलट जाएंगे, और जब वो पलटेंगे ना
तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि अरे मुनि मैया, ये कल तक तो कुछ थे, आज तो कुछ और हो गए हैं, इतना तेज तो गिरगिट भी नहीं बदलता। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना कि आपको टेंशन रहती है कि हर वक्त किसके बारे में ख्याल है, किसको सोचते रहते हैं, ये सोचते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, किसको बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई अगर बोले ना कि देखो तुम्हारे बारे में मैंने ये कुछ सुना है, तो आप बस उनसे इतना कहिए, हाँ जो सुना है अच्छा सुना है, और तुमको कुछ और अच्छा मिलाना हो तो तुम मिला सकते हो, जाकर बता सकते हो, मुझे मत बताओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। सीधी सी बात, बस इतनी सी सीधी बात, नो बकवास। जिसको जो सुनने का है सुनने दो, जिसको जो बोलने का है बोलने दो, आपको वही करना है जो आपको लगता है कि ये आपकी एम की तरफ जा रहा है, यानी कि आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है, आपकी खुशियों की तरफ जा रहा है, आपके अपनों के करीब लेके जा रहा है। सिर्फ इसकी वजह से कि लोग आपकी तारीफ करें और आप वो काम ना करें जो आपको पसंद है, तो एट द एंड भैया वही थ्री इडियट का एक सीन याद आता है कि जब हम हॉस्पिटल के बेड पर होंगे तो दुनिया भर को कोसने की जगह पर हम खुद को कोसेंगे बैठकर कि काश काश मैंने वो दिन ऐसा ना किया होता, काश मैंने अपने सपनों को जिया होता, काश जिंदगी ने और वक्त दिया होता। और जब हमें ज़िंदगी वक्त देती है तो बस हम चार लोगों के चक्कर में उस वक्त को यूं ही गंवा देते हैं। तो नहीं गंवाना है, खुद का वक्त खुद के लिए है, खुद की ज़िंदगी खुद के लिए है, खुद के सपने भी खुद ही के लिए होते हैं जनाब। तो भैया अपने सपनों का ख्याल रखिए, लोगों की टेंशन छोड़ दीजिए, लोग कुछ भी नहीं कहते, चार दिन बातें करते हैं, चौथे दिन के बाद पांचवा दिन जैसे ही आता वैसे ही भूल जाते हैं, चार लोग चार दिन, बस इतनी सी बात है। और फिलहाल के लिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो ना बॉस, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम इन्जॉय करेंगे मस्त मगन, कहे कि आपको मस्त मगन होना है आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। हम मिलते हैं इस गाने के उस पर लेकर के आज की बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां जो आपको देनी है आपके मॉर्निंग वाले शो में विद राजनीति। सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

अब देखो भैया, भले ही इस गाने के अंदर शिल्पा जी की बात की जा रही हो कि उनके चेहरे पे काका लिखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके चेहरे पे भी बहुत कुछ लिखा है। वो अलग बात है कि आप जानते नहीं है कि आपका चेहरा कब कहाँ कैसे कौन पढ़ रहा है, आपकी आंखें कौन पढ़ रहा है, आपकी बॉडी कौन पढ़ रहा है। इसके अलावा किताबों से ज़्यादा आपके इमोशंस बोलते हैं। और आपको ये पता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत चुप रहना चाहिए, अगर वहाँ हम बहुत टिपर टिपर बोल देते हैं ना, तो फिर हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं सीधे कुल्हाड़ा मारते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अगर इसके आगे कुछ और हुआ तो इसकी गलती किसी और इंसान की नहीं, हमारी है। अब यूँ तो आप यही सोचते होंगे कि हम तो क्यों पे भरोसा हुआ करी थे यार, अब का हुआ। हाँ, भरोसा नहीं करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट जहाँ आप ओवर एक्साइटेड हुए और आपने सोचा कि सामने वाला इंसान तो अपना मित्र है, अपना दोस्त है, और अपना सीक्रेट उसे बता दिया, फिर तो शुरू होती है ना, वहीं से सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है, शकुनी मामा बन के साजिशें हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फिलहाल बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्ची नदी, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली।

अभी देखो भैया, कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे कभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाँ हूँ का भी जवाब ना दें, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए। स्पेशली कुछ ऐसी जानबूझकर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। अब मेरी नानी बचपन में कहानी सुनाया करती थी, क्योंकि शेर को जो बिल्ली है वो शेर की मौसी होती है और वो उसे बहुत कुछ सिखाती है। बट एक रोज बात ये आती है कि जो शेर भाई साहब है वो अपने शिकार की करतूतें जानने के लिए, अपनी देखने के लिए कि हमारे अंदर कितना टैलेंट आ गया है, हमने कितनी स्किल सीख ली हैं, वो अपनी मौसी पे ही हमला कर देते हैं। और जो मौसी जी हैं, यानी कि जो बिल्ली रानी है, वो जाके पेड़ पे बैठ जाती हैं। अब नीचे से जो हमारे शेर दादा हैं वो कहते हैं, ये बात बताइए, आपने हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, क्यों? अब बिल्ली मौसी कहती है कि देखो भैया, अगर तुम वो पेड़ पे चढ़ना सिखा दिए होते तो तुम हमारी जान ना ले लेते, आज हम बचते कैसे। और वहीं से एक और बात सामने आती है कि आपका बहुत करीबी इंसान आपको बहुत बड़ा धोखा देता है। इसीलिए हर एक चीज हर एक जगह नहीं बोलनी चाहिए, भले वो आप कितना ही भरोसा क्यों ना कर रहे हो। अभी भले ये एक कहानी हो बिल्ली और शेर की, बट असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो अपनी चीजें रिवील कर देते हैं, अपनी बातें बता देते हैं, और आपको नहीं पता कि भैया आगे जाकर इन फ्यूचर कौन सी बात आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक सीक्रेट बता देते हैं इंसान को, और उसको ये बता देते हैं कि उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, और इसका फ़ायदा वो इंसान ज़रूर उठाता है। अब कोई ऐरा गैरा आकर या फिर कोई पराया इंसान आकर तो आपकी बातों को नहीं जानता, क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए धोखा उसी से मिलता है जिसको आपने बहुत कुछ बता रखा है, जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, और धोखे की फितरत ही ऑफकोर्स भरोसा होती है। तो फिलहाल आइए हम आपको बता दें कि कहाँ कहाँ आपको अपनी ज़ुबान पर ताला लगाना है, चाबी उठाकर पांडे तालाब में फेंकना है, ढूंढना भी नहीं है उसके बाद, और वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको बिल्कुल खामोश रहना है। तो भैया सबसे पहली जगह तो होती है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक्सट्रीमली जॉय के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब इतने खुश हैं कि उस दिन तो ऐसा लगता है कि सातों आसमान में तुम्हारे नाम कर दूं, दोनों जहान में तुम्हारे नाम कर दूं, तुम कहो तो अपनी वसीयत भी तुम्हारे नाम कर दूं, वो वाला जब आपका हाल होता है तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे कर बैठते हैं। अपनी बातें तो बताते ही बताते हैं, उसके अलावा आप इतने सारे वादे कर लेते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और सोचिए, अगर सामने वाले इंसान ने आपकी वादों को सीरियसली ले लिया, उसने आपके बोले हर एक शब्द को सीरियसली ले लिया, वक्त बदला, आपके वादे बदलेंगे, क्योंकि आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, और अब सामने वाला कह रहा है तुमने तो कहा था, तुमने प्रॉमिस किया था तुम ऐसा करोगे, अब वहां पर आई ना कशमकश, अब आप फंस गए। जी हाँ, तो जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो तुरंत कमिटमेंट मत दो, किसी को ये मत कहो कि यार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए करके ही रहूँगा। नहीं, आप बहुत खुश हैं, आपसे कोई वादा कराने आ रहा है, मत कीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, वक्त लीजिए। वक्त लेना बहुत ज़रूरी होता है, हम वक्त नहीं लेते, हम किसी से कहीं भी कुछ भी वादा कर देते हैं, और ये हमारे इतिहास में लिखा हुआ है भाई। जितने भी लोग बहुत खुशी खुशी में वादा कर देते हैं ना, फिर मुसीबत आने पर वो अपने वादे से पीछे भी नहीं हट पाते। क्यों? क्योंकि इंसान वही है जो अपनी जुबान दी हुई शब्द, जो अपने शब्दों पर वापस नहीं जाता, अपनी जुबान पर वापस नहीं जाता, वो उसी पर अडिग रहता है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और अगर आप कहीं बदल जाते हैं तो फिर लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं, तुम तो मतलब ही निकले, तुम तो झूठे निकले, एंड ऑल दैट चीज़ें। तो जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा जॉय के अंदर हो, थोड़ा सा वक्त लेने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं, जो प्रॉमिस आप करने जा रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्या वो उस सिचुएशन में भी हो सकता है जिस सिचुएशन में आप रहने वाले हैं। नहीं, अगर नहीं है तो ठहर जाइए, उनको क्लियर कीजिए, क्योंकि हम बहुत खुशी खुशी में जो कमिटमेंट दे देते हैं, एट द एंड वो हमारे लिए मुसीबत बन ही जाती है। इसके अलावा आता है जब आप बहुत दुख में हो। जी हाँ, ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप बहुत दुख में हो तो अपना मुंह हमेशा बंद करके रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उस वक्त बोल देते हैं तो यकीन मानिए, अगर आपके पास कोई इंसान आया और आप बहुत रो रहे हैं कि हाय दादा हमने तो पांडे तालाब भर दिया है रो रो के, तो उस हालात में आप अपनी सबसे डीप सीक्रेट को किसी ना किसी के सामने ज़रूर पेश कर देते हैं। जी हाँ,
हम बहुत दुख में होते हैं तो हमें लगता है यार बस मेरे अंदर की जितनी भी भड़ास है, जितनी भी बातें मैंने दिल में छुपा कर रखी है कोई सुन ले, और अगर कोई सुन लेता है तो आपकी दिलों की बातें उसके लिए हथियार बन जाती हैं। आपको नहीं पता कि वो इंसान इन फ्यूचर आपके साथ इतना ही वफादार रहने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, खुद स्पेशली मेरे साथ भी होता है भाई ऐसा कि हम अपनी बातें किसी को बता देते हैं और एट द एंड पता चलता है कि नहीं करना चाहिए था भैया, नहीं करना चाहिए था, आप तो बता दिए हैं ना, अब देखो क्या होता है, और आगे जाकर देखा नहीं जाता है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बट बिल्ली की आंखें बंद कर लेने से दुनिया थोड़ी रुक जाती है, वो तो चलती ही रहती है। और इसीलिए जब आप बहुत दुख में हो तो किसी को भी ना बताएं कि आपके अंदर वो कौन सी चीज है, वो कौन से डीप सीक्रेट्स है। जब आप बहुत अंदर से दर्द महसूस कर रहे हो तो हमेशा चुप रहना बेहतर होता है। इस इमोशन में अक्सर अपनी कमजोरियां आप दूसरों को बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, अपनी प्राइवेट चीजों को रिवील कर देते हैं, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को रिवील कर देते हैं, और वहां पर आपका फायदा डेफिनेटली उठाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां पर दरार है, कहां पर चोट करने से आप कमजोर पड़ सकते हैं। इसके अलावा आता है जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा हो तो आपको बिल्कुल खामोश रहना है। यकीन मानिए ये मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूं कि जब भी आप किसी से ऐसी सिचुएशन में हो जो सामने वाला आकर के बता रहा है कि भैया सुनो तुमको पता है ये पड़ोस वाला ऐसे काम कर रहा था, इसकी हरकतें तुमने देखी हैं, अगर वो आपकी बुराई कर रहा है, किसी और की बुराई कर रहा है आपके सामने, तो कल वो आपकी बुराई करेगा किसी और के सामने। ये बात बहुत हद तक सही है। आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा या कभी हो सकता है। एट द एंड जो इंसान आपके पास आकर दूसरे की चीज़ें रिवील कर रहा है, दूसरे के बारे में बता रहा है, वो आपकी बातों को भी उस तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसा ही काम करते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ एक काम होता है, आपकी बात उस तक पहुंचाना, उसकी बात आप तक पहुंचाना। तो अगर आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप सुन भले ही लीजिए, या फिर चाहे तो वहां से हट जाइए, बट वहां पर अपना मुंह खोल के उस इंसान के बारे में यह मत बोलिएगा कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम भी यही मानते हैं। नहीं, आप ये नहीं मानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आज अगर किसी और के बारे में बोला जा रहा है तो कल उंगलियां आप पर उठेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो किसी से बात भी करने नहीं जाता हूं, और पूरी दुनिया जहान में या न्यूज़पेपर में अखबारों में पोस्टर बना के कौन छाप रहा है, कौन छाप रहा है, वही शख्स जिसके सामने आपने अपना मुंह खोला था। क्योंकि जो एक इंसान की बुराई कर सकता है वो 100 इंसान की भी कर सकता है। खुद वो मिट्ठू बना रहेगा कि अरे बाबा हम तो बहुत स्वीट स्वीट हैं। नहीं, वो स्वीट नहीं होते हैं। जो आपको आके दूसरे के सीक्रेट्स बताते हैं वो आपके सीक्रेट दुनिया जहान में भी गाते फिरते हैं, तो इसी इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आता है, इसके अलावा जो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वो ये है कि भैया आप अपने उन लोगों के सामने चुप रहिए जहाँ झगड़े हो रहे हों। हम झगड़े जब करते हैं बहुत गुस्से में होते हैं और गुस्से में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। उसी में हम अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं, सारी कमजोरियाँ बता देते हैं, सारी खूबियाँ बता देते हैं, सारी आदतें बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि गुस्से में इंसान का विवेक खो जाता है, और जहाँ आपका विवेक जाता है वहीं पर आप अपने पैरों पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर आपको दर्द भी नहीं होता, वो तो बाद में पता चलता है जब दूसरा आपके साथ कुछ करके चला जाता है। तो भैया इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत खुश हो तो किसी से वादे नहीं करने, बहुत दुखी हो तो किसी को बताना नहीं है कि हम काहे दुखी हैं, हमारे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, नहीं मत बताइए, शांत होने दीजिए उस तूफान को। उसके बाद जब आप हर एक चीज़ में वक्त लेना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका वो वक्त लेना, उस मौके पर खामोश रहना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जब आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो और स्पेशली अगर वो आपसे मिल ही किसी की बुराई के लिए रहा हो, तो यकीन मानिए उसके पास कोई और काम है नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही काम है आपके पास बैठना, दूसरों की चुगलियां करना, और ऐसे लोगों के साथ आप मत बैठिए, क्योंकि भाई ये आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। अगर आप अपनी एम्स पर काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने आते हैं, आपकी बातें बताएंगे कि फलाना आपके बारे में ये बोल रहा था, ढिमकाना आपके बारे में ये बोल रहा था, और आप सोचते हो कि यार ये मुझे वो कैसे बोल सकता है, भले ही उसने ना भी बोला हो, और भले ही उसने बोला भी हो तो आपको क्या। सीधी बात, जो भी आपसे बुराई कर रहा है बोलिए भैया हमसे ना बताओ, हमको नहीं जाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जिसने मेरे बारे में जो भी कहा है अपने पास रखो, चाहो तो मिर्च मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला सब तुम मिला लो अपनी तरफ से, लेकिन मुझे मत बताओ क्योंकि मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है।
और वहां पर किसी और की बुराई करने मत बैठ जाना, उसके साथ में हाँ में हाँ मत मिलाना, नहीं तो फिर आप ही गिले देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप बहुत गुस्से में हो तो भी आप खामोश रहने की कोशिश करें। तो ये वो मेन चार जगह हैं जहां पर हम सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं, और इन गड़बड़ी करने के बाद ही हमें सबसे भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। 100 करोड़ का नुकसान नहीं होता सीधे सीधे सीधे जिंदगी का नुकसान होता है। आपकी बहुत सारी चीजें आपके पास से चली जाती हैं और हमें लगता है कि सिचुएशन अचानक से कहां से खराब हो गई। सिचुएशन यहीं से खराब होती है, बहुत सारी सिचुएशन सिर्फ इसलिए ख़राब होती है क्योंकि हम अपने ही मुंह से अपने ही बारे में वो चीज़ें लोगों को बता देते हैं जो किसी को जानने का अधिकार नहीं होता। तो भाई अगर आपको समझ में आ गया हो ना कि कहाँ चुप रहना है, और अगर आपको मेरी बातें परफेक्ट लगी हों, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ थोड़ी सी ठीक, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है इन बातों को लेकर के। और इसी के साथ आइए इंजॉय करते हैं हमारा अगला गाना मन्नत। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारे को खोलते हुए। बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे करनी रहती हैं पूरे हफ्ते के दौरान, और मैं मॉर्निंग शो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मिलती हूँ, आप सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा।

हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। डिशम फिल्म से आपने एंजॉय किया और वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने का। आपके मॉर्निंग वाले शो में जो मैसेजेस आ चुके हैं, जो पैगाम आ चुके हैं, उनको पढ़ने का। तो फिलहाल के लिए वापस से वेलकम करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आज के मॉर्निंग शो में जो हमारा पहला मैसेज आया है वो आया है हमारे महेंद्र दीपन जी का फ्रॉम राजस्थान, और आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग आशुमती मैम जी और सभी प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू यू एंड नमस्कार। सुबह की पहली किरण आप सभी के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आए। चाय की चुस्की के साथ चेहरे पर मुस्कान रहे और दिन भर की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो के साथ अपनी सुबह को यादगार बनाइए। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लिखा है, और इन विशेष के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र दीपन जी, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद है हमारे पास सविता दुबे जी का मैसेज जो लिख रही है, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। एंड आपने लिखा है कि मैम मैं लखनऊ सफर पर हूँ, चार क्या कहेंगे, कहने दो, क्या बात है क्या बात है। तो भैया आपने लखनऊ पहुँचते पहुँचते क्या बीच रास्ते में कुछ खा पी लिया है, या फिर आप ऐसे ही खाली पेट पहुँच चुकी हैं लखनऊ के दर्शन करने के लिए? और लखनऊ में जाकर आपका कहाँ घूमने का मन है, भूल भुलैया में? क्योंकि मेरा तो बहुत मन है भूल भुलैया में खो जाने का, वो अलग बात है कि हमको खोने नहीं दिया जाएगा। एंड मैं सृष्टि के साथ हूँ, क्या बात है भैया। आज सृष्टि जी, सविता जी SS साथ साथ में घूम रही हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, आपका दिन बहुत बेहतर हो, यही कामना है। एंड महेंद्र दीपन जी लिख रहे हैं, आखिर में चार लोग यही कहते हैं, पूरी गरम लेकर आना। क्या बात है, वैसे आयरनी है लेकिन ये बात सच भी है। इसके बाद है धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, सुप्रभात रति जी, सुप्रभात आपको भी। चौथे दिन की सिद्धियां देने वाली माँ कुष्मांडा देवी जय जय कर रहे करो। जी हाँ, आज हमारी नवरात्रि का चौथा दिन है, दिन बीतते जा रहे हैं। वैसे नवरात्रि जब आती है ना, और स्पेशली जब कानों में मार्केट से गुजरते वक्त लखबीर सिंह की आवाज़ पड़ती है, यानी कि लखा की आवाज़ पड़ती है, तब लगता है कि भाई सच में नवरात्रि आ गई, और ये बहुत ही प्यारे लगता है। फिलहाल के लिए कहाँ कहाँ मूर्तियाँ रख गई हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं मूर्तियाँ देखने ज़रूर आऊँगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और एक दिन अपनी मम्मी के साथ सिर्फ मैं मूर्तियाँ देखने के लिए घर से बाहर निकलती हूँ, ना शॉपिंग करना है ना कुछ करना है, बस सिर्फ अलग अलग पंडाल में जाकर के देखना है कि कहां पर कौन कौन सी मूर्ति रखी गई है। तो मुझे बताइएगा कि आपके पास आसपास रख दी गई है, क्योंकि मेरी गली में तो नहीं रखी गई है फिलहाल के लिए। एंड इसके बाद है कि देवी जी का आपने मंत्र लिखा हुआ है, देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यारा सा आपका मैसेज था। इसके बाद महेंद्र दीपन जी का लिखना है, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत जी उन्नाव से लिख रही हैं, इतना सारा गुड मॉर्निंग हो गया है आपकी तरफ से, हम ऐसे बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग इनटू 20x, इसके बाद क्यूट इनटू 10x। मैम जी, उन्नति मैम जी, आप कैसी हैं प्रोग्राम छक्का से, थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत क्यूट है रोशनी जी, एंड इतनी सारी क्यूटनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। मुझे तो कोई एक चाय में सब कुछ उगलवा लेता है। अरे रे रे रे, महेंद्र जी संभालिए संभालिए, थामिए थामिए थोड़ा सा खुद को, हर एक चीज़ नहीं उगलना होता है, ये बहुत गंदी आदत है, कई बार आप ही की चीज़ें आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए मैं आपको बताने आई थी स्पेशली। इसके बाद गौरव जी लिख रहे हैं कि ओके, अगर वादा करते वक्त नहीं सोचते, बाद में सोचते हैं कि ये क्या कह दिया, तो बस एक ही मंत्र याद रखना, जो होगा देखा जाएगा, ये बोलकर चद्दर तान कर सो जाना। अब इसके बाद कोई ऑप्शन बचा ही नहीं ना, एक ही ऑप्शन है, और वही ऑप्शन काम पे भी लगाना पड़ेगा। हमेशा हमेशा खुश रहने के लिए एक ही चीज़ करो, तुम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, अगर आशा रखोगे तो दुख पाओगे। ये बात तो है भाई कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, वो भी बिना बताए एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपको नाउम्मीद ही हाथ लगती है। तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है, स्पेशली बिना बोले नहीं करना है। कई बार हमें चीज़ों को बताना पड़ता है ताकि इंसान समझ सके, हमें लगता है कि इंसान को सपने आएंगे और वो हमारी हर एक बात समझ जाएगा, हम क्यों चुप हैं, हम क्यों खुश हैं, हम क्यों दुखी हैं। हाँ, वो ये समझ सकता है कि आप दुखी हैं, बट वो ये नहीं समझ सकता कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो जाकर मुँह खोल के बताना पड़ता है भाई कि हमको ये बात पसंद नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि वो तो खुद ही समझ जाएगा, तो नहीं समझेंगे, ये एक्सपेक्टेशन ही बहुत गलत होती है। इसके बाद है हमारे पास मैसेज, जब झगड़ा हो दो लोगों का तो वहाँ ज़रूर जाए, बहुत मज़ा आती है। अच्छा, पॉपकॉर्न लेके जाना है या कुछ और लेके जाना है, ये भी बताइएगा। धर्मेंद्र जी का लिखना है, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता, बुझ जाते हैं दिए कभी, तेल की कमी से हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। क्या बात है, बात बिल्कुल सही है, और हर इंसान अपने आप में सही है, बस आप देखिए कि भाई वो जो चीज़ वो बता रहा है वो सिचुएशन में कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, लोग ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ आपके नज़रिए से गलत हो सकती हैं वो किसी और के नज़रिए से सही ज़रूर होंगी। जब बारिश आपके लिए रोमांस
रोमांटिक लग सकती है, वही बारिश हो सकता है किसानों को बिल्कुल पसंद ना आए। और अगर आपके घर का पेंट चल रहा है तो वो बारिश आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है उसी बारिश की ज़रूरत किसी और को उस वक्त हो। तो ज़िंदगी कभी भी लेफ़्ट राइट नहीं चलती, वो हमेशा लेफ़्ट राइट ज़िगज़ैग चलती रहती है, और आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं डिपेंड करता है आप पर। गीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग डियर राजन दी मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। गीता जी कैसी हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। सविता जी की तरफ से बहुत सारे हार्ट इमोजीज हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनूप जी का लिखना है, जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया, यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। सुप्रभात सुप्रभात। और आपने बिल्कुल सही लिखा है कि हर वक्त नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कौन कैसे कहाँ गया, आपको ये भी देखना चाहिए कि वो किस लिए आया था और उसने आपको क्या सिखाया। अगर वो आपको छोड़ कर गए हैं, आपको बिट्रे करके गए हैं, तो इसमें भी एक चीज़ है कि भैया अगली बार से थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। गौरव जी दिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू गौरव जी, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। गुड मॉर्निंग आर्जुनती, आपने लिखा है आर के श्रीवास्तव जी ने, गुड मॉर्निंग टू यू आर के जी, कैसे हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। क्या स्टाइल है बोलने का, मस्त हो जाता है, कीप इट अप आर्जुनती जी, थैंक यू सो मच। एंड सविता जी का लिख रहा है कि सृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए जा रही हूँ। ओके ओके भाई, तो भाई सृष्टि जी का ख्याल रखिए और आकर ज़रूर बताइएगा कि क्या अब वो ठीक हैं, और आप जब डॉक्टर से मिल लें तो आराम से घर आइए, अपना ख्याल रखिए, सृष्टि जी का ख्याल रखिए, और ऑफ कोर्स अपने दिन को भी इंजॉय करते रहिए। फिलहाल के लिए आपसे अब मेरा एक सवाल है दोस्तों, सवाल ये है कि आपने बचपन से बैडमिंटन तो बहुत दफ़ा खेला होगा, खेला है ना? हाँ मैंने भी खेला है, वो अलग बात है कि रोज़ रोज़ नहीं खेलते हैं लेकिन खेला बहुत है। तो उस बैडमिंटन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शटल कॉक, यानी कि शटल कॉक या वो चिड़िया जिसको हम बोलते हैं ना, चिड़िया मारते हैं इधर से उधर, वो चिड़िया बनी किस गांव से है, किस शहर से है, किस ज़िले से है, ये आपको पता है कि भारत के कौन से क्षेत्र से वो शटल कॉक पूरे दुनिया में जा रही है और उसे कौन बना रहा है, प्लस कितने पंखों की एक चिड़िया होती है। अगर आपको ये बात पता है तो जरा चैट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो हम बताते हैं, हम कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, हम बस एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक ले रहा हूँ, वो भी एवं एवं बैंड बाजा बरा से इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में लेकर के आपको बताते हुए कि भैया जो आपके पास ये सफ़ेद रंग की चिड़िया है वो सफ़ेद रंग क्यों है, किसके पंखों से बनती है, और ऑफ कोर्स ये कहाँ बनती है, बताते हैं। लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग, और ये है रेडियो ज्ञानस 89.6 FM।

क्या बात है भाई, मॉर्निंग एनर्जी को बरकरार रखते हुए आइए बढ़ते हैं हमारी शटल कॉक की तरफ, यानी कि वो चिड़िया की तरफ जिसको आप इधर से उधर फेंका करते हैं बैडमिंटन के साथ। लेकिन कभी आपने ये सोचा ये आई कहाँ से है, इसको बनाया किसने है और इंडिया की किस छोटे से गांव से निकल कर ये पूरे भारत को दौड़ रही है। हम आपको बता दें इसमें भी दो तरह के पंख लगते हैं, पहला पंख जो होता है वो होता है हंस का, दूसरा होता है मुर्गे का। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे और इनमें क्या फर्क होता है, क्या चक्कर है हंस और मुर्गे का, बताते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग वाले स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनती और ये है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।

0: जिस चिड़िया की डिमांड पूरे भारत में है, इवन बाहर भी जाया करती है, वो चिड़िया हमारे भारत के कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है उलुबेरिया, वहां पर बना करती है। उलुबेरिया में कुछ छोटे छोटे गांव हैं जिसको जादुरबेरिया कहते हैं, बनीबन कहते हैं, बाहिर तफा कहते हैं और राजापुर कहते हैं। ये ऐसे चार गांव हैं जो इसको बनाया करते हैं। अब इसको बनाने की शुरुआत कहां से हुई थी वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी ज्ञानेंद्र बोस से, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और वो खेल के सामान का दुकान चलाते थे, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दुकान का काम संभाला करते थे। वहां पर अंग्रेज आया करते थे सामान खरीदने के लिए, खेलों का सामान, स्पेशली बैडमिंटन के लिए, चिड़िया लेने के लिए। तो वहां पर वो शटल कॉक बेचने का काम करते थे। धीरे धीरे उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इंडिया में अपनी शटल कॉक की एक कंपनी खड़ी की जाए। पहली फैक्ट्री उनकी 1920 के दशक में उन्होंने उलुबेरिया के पास पीरपुर गांव में जे बॉस एंड कंपनी के नाम से बंगाल की पहली शटल कॉक फैक्ट्री खोली हुई थी। स्टार्टिंग में शटल कॉक कंपनी के अंदर किसी ने भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये कहते हुए कि ये तो चलने वाला ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसका सपोर्ट नहीं करते, और जे बॉस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जे बॉस ने भी कहा कि भाई उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि सबको लग रहा था ये शटल कॉक बनाने का काम, इन चिड़ियों के पंखों से बैडमिंटन वाली चिड़िया बनाने का जो काम है वो कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज खेलते हैं, भारतीय तो खेलते भी नहीं है। क्योंकि भारतीयों का उस वक्त काम कबड्डी खेलना था और बाकी गेम्स की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, तो उनको कभी लगा ही नहीं कि शटल कॉक का काम चल सकता है। बट उन्होंने देखा कि भाई जो वहां के आसपास के गांव वाले लोग हैं, जो गरीब घर से आ रहे हैं, अगर उन्हें सिखाया जाए और वो इस चीज को गंभीरता से लेते हैं तो इसका बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने जब इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई तो उन्होंने धनंजय पंडित के नाम के साथ, यानी कि धनंजय पंडित एक इंसान थे जिनके साथ मिलकर उन लोगों को, ग्रामीण लोगों को जो गरीब हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, उनको अपना टारगेट बनाया, उन्हें इस हुनर को गंभीरता से सिखाना शुरू कर दिया। आसपास के गांव वाले लोगों ने शटल कॉक बनाने की इस प्रक्रिया को सीख लिया और अब ये स्पेशली उलुबेरिया के चार गांव में बनाया जाता है। बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले हंस और मुर्गे के पंखों को लाया जाता है, उन्हें धोया जाता है, धोने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, देन इसकी कटिंग स्टार्ट की जाती, हर एक पंख को एक बराबर काटा जाता है, पंखों के बीच में भी कट लगाया जाता है जिससे आपकी चिड़िया दूर तक जा सके। पहले यही पंख काले हुआ करते थे, आजकल जो आप सफेद रंग की चिड़िया देखते हैं ये पहले सफेद नहीं थी, ये काले पंखों से बना करती थी, और इसके पीछे जो रीजन था वो था बंगाल, यानी कि आपका बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से आते थे काले हंस के पंख और वहां से तैयार किया जाता था काली चिड़िया। बट क्योंकि हमारा बांग्लादेश अलग हो चुका है, अब भारत के अंदर नहीं आता, अब बॉर्डर आ चुका है हमारे बीच में, तो अब सिर्फ आपको सफेद रंग की चिड़िया देखने को मिलती है, सफेद रंग के पंख देखने को मिलते हैं। हर एक चिड़िया के अंदर 16 पंख लगाए जाते हैं, और वो जो नीचे आप छोटा सा रबड़ देखते हैं वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, वो भारत में नहीं बनता, उसे चाइना से मंगाया जाता है, फिर उसमें होल किया जाता है और ऑफकोर्स प्राकृतिक गोंद से, यानी कि गम से, एक एक पंख को जोड़ा जाता है। उसके बाद तैयार होती है आपके लिए, आपके घर तक आने वाली 10, 20, 50, 150, 200, 250 वाली चिड़िया, यानी कि शटल कॉक। जो हंसों के पंख से बनी शटल कॉक होती है वो हाई क्वालिटी पंख माने जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा महंगी बिकती है। वहीं पर जो मुर्गे की पंख से बने होते हैं, जो मुर्गियों के पंख से बने होते हैं, उन्हें लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी कहा जाता है, उन्हें सस्ते दामों पे बेचा जाता है। और यही चिड़िया भारत से बाहर भी जाती है जब कोई बैडमिंटन का एथलीट जाकर गेम खेलने वाला होता है। तो अब आपको समझ में आया कि छोटी सी चिड़िया जो आपके घर के किसी कोने में पड़ी होगी अभी भी, क्योंकि आपने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि बैडमिंटन खेलने का अब उम्र नहीं रहा, अब वक्त नहीं रहा, वो चिड़िया अभी भी किसी कोने में बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रोसेस यहां से कई किलोमीटर दूर उलुबेरिया से, उलुबेरिया के छोटे छोटे गांव में हुआ, जो कि कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर है, ग्रामीणों के हाथों से निकला हुआ है, ये उनका काम है। और इसका क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं हमारे ज्ञानेंद्र बोस को, जिन्होंने इस चीज को देखा और कोलकाता की यानी कि बंगाल की अपनी पहली शटल कॉक कंपनी बनाई। अगर वो लोगों को ये कॉक बनाने की, ये शटल कॉक बनाने की यानी चिड़िया बनाने की हुनर नहीं सिखाते और गांव वाले इतनी गंभीरता के साथ इसको नहीं सीखते तो शायद हम ये शटल कॉक भी भारत के किसी बाहर वाले देश से इम्पोर्ट कर रहे होते। फिर वो भी हमें 10 रुपये की चीज 100 रुपये में मिल रही होती तो हर कोई शायद बैडमिंटन भी ना खेल रहा होता। अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि भैया ये शटल कॉक यानी कि चिड़िया के बीच में क्या डिफरेंस है और ये चिड़िया किस पंखों से बन रही है और क्यों इसे चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि ये उड़ती है। पंख तो इसके पास बहुत पहले से हैं लेकिन इसको उड़ाने के लिए आपका हाथ लगता है, सही टेक्निक्स लगते हैं। और तो और अगर आप इस जानकारी को पाकर खुश हो गए हों तो फीडबैक में ज़रूर से बताइएगा कि आपको पता था ये बात कि नहीं, और अभी अभी जानकर आपको कैसा लगा कि भारत के छोटे छोटे गाँव से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके घर तक आती हैं, वो अलग बात है कि आपको पता नहीं चल पाता है। फिलहाल के लिए सुनते रहिए आपका अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गुंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पार। और मुझे लगता है ये गाना आपको काफ़ी पसंदीदा होने वाला है क्योंकि सरबजीत की आवाज़ में होगा रंग रारा रीरी रारा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हां जी, तो एक बार वापस से वेलकम करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशी उन्नति। और अभी तक हमने जाना कि हमारी शटल कॉक किस जगह से बनकर आती है, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी अफवाह की जो हमने बॉलीवुड में बहुत सुनी है। और वो कहते हैं कबूतर जा जा जा और मेरे प्यार की पहली चिट्ठी मेरे साजन को दिया। बट क्या सच में कबूतर के दिमाग में ऐसा कोई GPS ट्रैकर फिट है कि आप जहां उसको बोलोगे वो उसे सटीक एड्रेस पे जा करके चिट्ठियां बांट देगा? हो सकता है क्या ऐसा कि चिड़ियों को आता है कि यहां से निकलना है, दूर चौराहे पर जा करके चौक से दाएं मुड़ना है, वहां से तीसरा घर जो है बस वही वो इंसान का है, उसका जो ऊपर वाला कमरा है उसी के अंदर जाके बैठना है चिट्ठी देने के लिए? कभी सोचा है ऐसा? क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके दिमाग के अंदर भी थोड़ी सी घंटी बजाई जाए और आपको भी सोचने पे मजबूर किया जाए कि जो कबूतर है क्या वो सच में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते हैं? मतलब करते तो थे, लेकिन कहाँ ये गलतफहमी स्टार्ट हुई बॉलीवुड से कि आपकी लिखी हर एक चिट्ठी उसी जगह पहुंचेगी जहां आप चाहते हैं? पता चले आपने चिट्ठी तो बांध दी है और उस कबूतर का घर जो है वो उसके घोंसले में है, तो आपकी चिट्ठी किसी और के पास ना जाकर उसके घोंसले के अंदर उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे। सोचिए जरा कैसा लगेगा फिर आपको। आप इंतजार में बैठे हैं कि सामने वाला रिप्लाई देगा रिप्लाई देगा। वो तो ये है कि आजकल इंस्टाग्राम का व्हाट्सएप का जमाना है, तो हम दो मिनट में कॉल करके पूछ लेते हैं, मैसेज करके पूछ लेते हैं। अगर कबूतर भेजने का जमाना होता तो न जाने कितने लोग आज भी चिट्ठियों का इंतजार कर रहे होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ यही सोचते हैं बॉलीवुड के नजरिए से कि हम जितनी बार चिट्ठियां देंगे वो सही एड्रेस पे पहुंचेगा और वो हमें लिखकर भेजेगा, हम उसे लिखकर भेजेंगे। कबूतर कोई पोस्टमैन तो है नहीं, उसके पास GPS ट्रैकर तो है नहीं, तो ये कैसे चिट्ठियां पहुंचाने का काम कर रहा है? चलिए आइए हम बताते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में और आपकी उस गलत फहमी को भी तोड़ ही देते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कबूतर चिट्ठियां देने का काम कैसे करते हैं और ये किस शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों के अंदर रहता है, वो लोग ये सोचते हैं कि कबूतर को कोई भी एड्रेस बताओ और उसके बताकर उड़ा दो तो वो सीधा उसी एड्रेस पे जाके डिलीवरी करेगा कि नॉक नॉक पोस्टमैन इज हियर। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कबूतर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उड़ना आता है और वो होता है अपना घर, यानी कि होम लॉफ्ट की तरफ ही वो जाता है। कबूतर को बस इतना याद रहता है कि वो किस घर में रहा था, कितने दिन रहा था और उसके घर का एड्रेस क्या है। जैसे कि कुत्तों के अंदर होता है, आप उसे दुनिया दराज के कहीं भी कोने में छोड़ाओ, गोंडा के किसी भी इलाके में छोड़ाओ, कुत्ता सूंघता सूंघता अपने घर पहुंच जाता है। इसीलिए जब लोग कुत्ते को छोड़ने जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ जब भी छोड़ने जाते हैं तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि कुत्ता रास्ता ना देख पाए। ऐसे ही कबूतरों के साथ होता है। कबूतरों को सिर्फ अपना घर याद होता है कि मेरा घर कहाँ था, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। उनके दिमाग में कोई ट्रैकर नहीं लगा है, वो नहीं जानते कि इस चिट्ठी को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ बैठा होगा वो इंसान। तो फिर राजा महाराजा कैसे पहुँचाते थे, आया नहीं सवाल। चलिए हम बताते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। जस्ट इमेजिन आपके पास, या फिर आप एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पर राजा ए है राजा बी है। अब इन दोनों के बीच में चिट्ठियाँ भेजनी हैं तो कैसे पता चलेगा? वहाँ से राजा, यानी कि अपने महल से राजा जब भी युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे तो कबूतर को पिंजड़े में डालकर अपने साथ युद्ध के भूमि पे ले जाते थे। जब भी टेंट के अंदर वो लोग रहा करते थे और उन्हें पता था कि अब महल में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँचानी है या कुछ हमें नया पता चल गया है, तो बस उसके पैर में वो चिट्ठी बांध दी जाती थी और कबूतर को छोड़ दिया जाता था। कबूतर को ये नहीं कहा जाता था कि यहाँ से दाएं मुड़ के बाएं जाना, तीसरा घर जो होगा वो मेरा ही है, वहीं पर जाके एड्रेस डिलीवर करना, नहीं नहीं नहीं। कबूतर को सिर्फ पिंजरा खोल दिया गया है, कबूतर वहां से डायरेक्ट उड़ा है, क्योंकि कबूतर का घर वो लड़ाई का मैदान नहीं है, उस वो टेंट नहीं है। कबूतर का घर अभी तक वो 3-4 सालों से सिर्फ वहीं रहता आया है जो कि एक महल का कमरा है, वो सीधा वहीं से उड़कर उस महल में ही जाता है, वो इधर उधर भटकता भी नहीं है। अब इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कुछ सालों पहले तक लोगों को लगता था, यानी कि साइंटिस्ट को लगता था कि कबूतर के दिमाग के और चोंच के अंदर आयरन होता है जिसकी वजह से ही वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड को समझता है। बट अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है कि ये चीज कबूतर के चोंच या दिमाग के अंदर नहीं होती, ये उसके लिवर के अंदर होती है। यानी कि जो आयरन है वो उसके लिवर में मौजूद होता है और लिवर में जो आयरन है वही ट्रैक करने में मदद करता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसी है, किस डायरेक्शन में उसे जाना है।
तो भाई कबूतर कभी भी आपकी बताई एड्रेस पे चिट्ठियां नहीं डिलीवर करेगा। आप उसे घोंसले से पकड़ के लेकर आए हो और सोच रहे हो कि अब तो मैं जहां बताऊंगा चिट्ठी वहीं जाएगी, तो नहीं होगा, ये सीधा घोंसले में ही जाएगा और वहां पर उसके बच्चे उठा के देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ लिखा तो है, इंसानों ने काला काला लिखा है लेकिन समझ में नहीं आया है। खाने वाली चीजें खाने की कोशिश करते हैं, नहीं खाया गया तो थूक देंगे अलग बात है, बट कभी भी एड्रेस वहां पर नहीं पहुंचेगी आपकी चिट्ठी जहां आप उसे बता रहे हैं सिखा करके पट्टी पढ़ा करके कि भैया हमको पता है तुम हमारे वाले को देना, हमारे भैया को देना, हमारे चाचा को देना। नहीं, कबूतर सुनेगा ही नहीं क्योंकि कबूतर को पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। उसके लिए बिल्कुल वही भाषा है जैसे आपके लिए अरबिक होती है, जैसे आपके लिए होता है अब्बा जब्बा डब्बा, ऐसे ही उसके लिए भी है कि ये कुछ तो बोला है इंसानों ने लेकिन समझ में नहीं आया। खैर मुझे क्या, मैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अपना ही घर याद रखूंगा। तो अगली बार कबूतर के साथ ये चिट्ठी पैगाम भेजने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक वो कबूतर वहां से ना आया हो जहां आप उस चिट्ठी को पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी रैंडम कबूतर को पकड़ के घोंसले से निकाल करके उसे चिट्ठी बांधेंगे तो फिर आपका चिट्ठी भी गया घोंसले के अंदर। समझ गए ना जी? अगर आप समझ गए हो तो चैट बॉक्स में बताइएगा कि ये गलत फहमी आपको बॉलीवुड से लगी थी, आपको बचपन से लगता था कि कबूतर को वहीं भेजा जाएगा जहां हम बताएंगे कबूतर वहीं

अच्छा, बचपन में एक किस्सा जो बहुत आम है वो ये है कि हमारे मम्मी पापा कहा करते हैं अक्सर कि भाई तुम्हारे पास तो इतनी सुख सुविधा है, इसके बाद भी तुम पढ़ाई नहीं करते हो। हम तो नदियां तैर के जाया करते थे, हम तो पहाड़ों को कूद के जाया करते थे। लगता था ना अजीब, बट सोचो अगर ये बात सच हो जाए और सच में कोई ऐसा टीचर हो जो नदियां पार करके पहाड़ पे चढ़ के जंगल के बीचों बीच में खाली बच्चों को पढ़ाने जाए, बारिश होने पर उनके घर में रुक जाए, बिल्डिंग ना होने पर चट्टानों पर बैठ के पढ़ाए, तो उस टीचर के लिए आप क्या कहने वाले हैं? यही कहेंगे ना कि तुम्हारे मैथ के टीचर निकले। बट ऐसे हैं, एक ऐसी टीचर है जो भैया हम आपको बता दें कि वो नदियाँ तैर करके जाती हैं, वो नदियाँ पार करती हैं, वो नाव में बैठती हैं, नाव खुद चलाती हैं, फिर वो नाव से उतर कर पहाड़ों पर चढ़ती हैं, जंगल के बीचों बीच में जाती हैं और वहाँ जाकर आदिवासी बच्चों को पढ़ाती हैं। और जब तक बिल्डिंग नहीं थी उनके पास, तब तक वो चट्टानों पर बैठ के पढ़ाती थी। जब बारिश हुआ करती थी तो वो उन्हीं के घर में रुक जाती थी। आपको यकीन ना होगा, मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगा होगा भैया इतनी शिद्दत। जी हाँ, आइए बात करते हैं एक ऐसी टीचर की आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा वाले प्रोग्राम में, जो ऑफ कोर्स केरला से हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। तो हम अक्सर इस चीज़ का मीम्स बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि भाई हमारे मैथ वाले सर, अगर आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम लगता है मैथ वाले सर नहीं आएंगे, तो मैथ वाले सर तो बारिश में भी कूद के आते हैं, बाढ़ आ रही होती है उसको भी पार करके आते हैं, सारी मुसीबतों को हटा देते हैं, आग के दरिया में भी कूद जाते हैं, मतलब हर एक काम कर रहे हैं और इस बात पर हम कितने दांत दिखाते हैं। बट एक ऐसी ही टीचर हैं जो सच में ये सारे काम कर रही हैं। तो आइए उनकी कहानी को जानते हैं। फिलहाल के लिए आपका वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आज चुनौती, और ये है अब आपका इंस्पायरिंग वाला सेगमेंट।

केरला के तिरुवनंतपुरम में एक ऐसी टीचर है जो नदियों को पार करके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने जाती है। तिरुवनंतपुरम में रहने वाली उषा कुमारी बीते 17 से 18 वर्षों से लगातार केरल के एक दूर दराज गाँव के एक ऐसे इलाके में जाया करती हैं जहां कोई भी टीचर जाना पसंद नहीं करता था। हर कोई उनको मना कर देता था कि नहीं भैया, यहां हमारी पोस्टिंग ना हो, यहां ट्रांसफर ना हो, यहां हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में पड़ती थी एक बहुत बड़ी नदी जिसको पार करना पड़ता था। इसके अलावा पड़ता है पहाड़, और पहाड़ को पार करने के बाद, उस पर चढ़ने के बाद जा करके कहीं आपको बीच जंगल में कुछ आदिवासी बच्चे मिलते हैं जिनको पढ़ाना होता था। और हम आपको बता दें, उस जंगल के बीचों बीच में कोई स्कूल नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब आप सोचते होंगे कि भैया ऐसा क्यों कर रही हैं वो, क्योंकि उन्हें था शौक पढ़ाने का। वो टीचर बनी, और टीचर सिर्फ उनके लिए नहीं होते जो बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए हैं। टीचर यानी कि गुरु हर वो शख्स होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। हम आपको बता दें, नदी पार करने के बाद उषा जी पहाड़ के रास्ते से स्कूल तक पहुँचती हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना होता है। पहाड़ों पर 2-3 किलोमीटर चलने का मतलब आप समझते होंगे कि लगभग 5 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। इस स्कूल की पहली कक्षा से लेकर 4th कक्षा तक पढ़ाई करवाई जाती है। और हम आपको बता दें भैया कि वो अकेले ही सबको पढ़ाया करती हैं। सारे सब्जेक्ट वो खुद पढ़ा रही हैं, सारे बच्चों को वो अकेले संभाल रही हैं। उनके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई और टीचर वहाँ मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आना नहीं चाहता। किसी को उनकी तरह नदी पार नहीं करनी है, कोई पहाड़ पर चढ़ना पसंद नहीं कर रहा, और जंगल के बीच में जहाँ एक बिल्डिंग तक नहीं है कि बच्चे आराम से क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकें, उस बिल्डिंग में जाकर के पढ़ा सकें, वहाँ से हटकर वो पत्थरों पर बैठकर, चट्टानों पर बैठकर बच्चों को अकेले पढ़ाने का काम करती है। उषा कुमारी बताती हैं कि कई दफ़ा उन्हें स्कूल से निकलने में देर हो जाती है तो वो गांव के ही किसी स्टूडेंट के घर में रुक जाती हैं। जब तेज़ बारिश होती है और उन्हें पता है कि बारिश में नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश में जो रास्ता है वो गीला हो जाता है, नदियाँ भी ऊपर तक आ जाती हैं और मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी, तो वो वहाँ पर जंगल में ही किसी बच्चे के घर के अंदर रुक जाती हैं। सरकार ने ये स्कूल 1919 में खोला था। ये एक आदिवासियों का इलाका था, यहाँ पर सिर्फ आदिवासी के बच्चे आते थे। उषा ने अपनी मेहनत से स्कूल को चलाया हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने गाँव वालों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। एक ऐसी टीचर की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, जो नेम फेम के लिए नहीं है, जो अपना काम 17 से 18 वर्षों तक शिद्दत से करती आई हैं। उन्हें इस चीज़ की भूख नहीं है कि उन्हें आकर पहचान मिले, उन्हें कोई गोल्ड मेडल मिले। हम आपको बता दें, बच्चे ने गोल्ड मेडल तक जीता है। एक ऐसी टीचर है जो आदिवासियों को पढ़ाती है और उनके बच्चे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, गूगल में उनको नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन टीचर की कहानी का क्या? टीचर की कहानी तो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। 17 से 18 वर्षों में न जाने उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ा करके नौकरी तक पहुंचा दिया, कितने बच्चों का भविष्य सुधार दिया, कितने बच्चों को उन्होंने मेडल जीतने के लिए आगे बढ़ा दिया। बट उनकी कहानी आज भी वहीं पीछे की पीछे रह गई है। वही नदियों को पार करना, वही पहाड़ पर चढ़ना, वही जाकर बच्चों को पढ़ाना, और फिर से देर होने पर, क्योंकि जंगल खतरनाक होता है, जंगल में भालू भी है, शेर भी है, और वहीं पर किसी बच्चे के घर में रुक जाना। और ये टीचर की कहानी पिछले कई सालों से लगातार ऐसी ही चलती आ रही है और इनका नाम आज तक हमने नहीं सुना है। तो इंस्पायरिंग स्टोरी की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो यही लगती है कि भाई इसके अंदर मैं ऐसी कुछ कहानियां कवर करती हूँ जो मेरे सामने कहीं और से नहीं आती, जिनको ढूंढना पड़ता है, जो एक बड़े ही आम इंसानों की होती है, लेकिन वो आम इंसान निकल कर, हट कर कुछ बेहद खास करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इनका नाम है KR उषा कुमारी। भूलिएगा नहीं, नाम बहुत ही जबरदस्त है, काम उससे भी जबरदस्त है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजनीति, और ये है रेडियो 11.6 FM मॉर्निंग शो का इंस्पायरिंग सेगमेंट।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुंजा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशु नदी और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM कोरा शहर की धड़कन। अच्छा भैया, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ, बात बस इतनी सी है कि आपने अपने आसपास गिद्ध देखे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि होते ही नहीं अब, क्योंकि भैया हमारे आसपास गिद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी एक वक्त होने पर, लेकिन धीरे धीरे हमारे आसपास के पक्षी जो हैं वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। पहले आपको गौरैया दिखाई पड़ती थी, अब धीरे धीरे गौरैया कम होती जा रही है। पहले आपको हजारों चिड़िया दिखाई पड़ती थी, सुबह उठते ही आवाज़ कानों में जो सबसे पहले पड़ती थी वो चीची चीची पड़ती थी, यानी कि चिड़ियों की पड़ती थी, चहचहाहट होती थी, आंगन भरा होता था, कहीं कबूतर, कहीं कौवे, कभी गौरैया, कभी मैना और कुछ बहुत खूबसूरत तोते नजर आया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे इलाकों से, हमारे गांवों से चिड़िया गायब होती जा रही है। पहले गांव के पीपल के पेड़ पर आपको उल्लू के घोंसले नजर आते थे जहां उल्लू रहा करता था, अब नजर आते हैं नहीं। पहले कोयल की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, पूरे इलाके में गूंजती थी और उसको कॉपी करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन ये कोयल की आवाज अब आम का मौसम आने के बाद भी बहुत कम सुनाई पड़ रही है। ऐसा काहे? इसके पीछे की वजह हम खुद ही हैं जनाब। अब क्योंकि हमारे आसपास के इलाकों में जो हम चिड़िया का गायब होते देखते हैं तो हमें लगता है यार ये हमारा काम थोड़ी ना है, तो सरकार का काम है। बट एक ऐसा गांव है जिसने सिर्फ और सिर्फ गिद्धों को बचाने के लिए अपनी खुशियों को ही लुप्त कर दिया। अब वो ढोल ताशे या फिर बहुत बड़े बड़े डीजे नहीं बजाते, वो पेड़ पौधे नहीं काटते, इवन अपने पैसों से बाहर जा करके मांस खरीदते तक हैं ताकि चिड़िया या वो गिद्ध जो हैं वो ख़त्म ना हो। अब गिद्ध क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप भी जानते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, हमारे पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं। अगर हमारे पर्यावरण में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े, बैक्टीरिया, चिड़िया, पक्षी, जानवर ना हो तो न जाने कितनी ही जगह आपको अलग अलग बीमारियां देखने को मिल जाए, क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, उन्हें खाने वाला कोई भी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से न जाने कितनी बीमारियां पनपती रहेंगी। ऐसे ही हुआ है एक ऐसे गांव में जो अपनी शादियों में, त्योहारों में डीजे नहीं बजाता। हमें लगता है जब तक साउंड ना हो, जब तक डीजे ना बजे, हमारी खुशियां अधूरी रह गई हैं। इवन अगर हम कोई चीज़ लेने भी जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उस पर भी बहुत बड़ा बड़ा डीजे लगाते हैं। हालांकि इतना भारी भरकम डीजे बजाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ये उनके लिए ही बहुत ख़तरनाक है। न जाने कितने हार्ट के पेशेंट हैं जो डीजे की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। कितने इस बार दो बच्चों की जान भी चली गई थी। इसके अलावा किसी का घर टूट जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है और हमें लगता है कि हम तो अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी खुशियों से क्या फ़ायदा जो किसी और को नुकसान पहुंचा कर मिल रही हो। और एक ऐसा ही गांव है जिन्होंने गिद्धों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का शोर जो है वो कम कर दिया, डीजे को बंद कर दिया और जहां पर गिद्धों की संख्या सिर्फ 22 बची थी वो 22 से बढ़कर अराउंड 347 हो चुकी है। ये कहानी है महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के चीर गाँव में, जहां करीब 2 दशकों पहले तक गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी, लेकिन गांव वालों ने अपने इलाकों के इन पक्षियों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का शोर कम कर दिया। अक्टूबर 2000 में रायगढ़ के चीर गांव में प्रेम सागर मिस्त्री एक रूटीन फील्ड विजिट पर निकले थे, तब उन्होंने महसला के पास लगभग 13 गिद्धों को मरे हुए देखा, मरे हुए जानवरों पर बैठे देखा। उन्होंने गिद्धों के पीछे पीछे वो चीर गांव पहुंचे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने बताया कि कभी ये 13 गिद्ध जो अब आपको दिख रहे हैं इनकी संख्या बहुत बड़ी होती थी, ये बहुत सारे गिद्ध हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या तेजी से घट रही है। सर्वे में सिर्फ 22 वाइट ट्रम्प्ट और 6 लॉन्ग विल्ड वल्चर्स ही मिले थे। गिद्ध के पास कुछ ही घोंसले भी बचे थे। अब क्योंकि हमारे पास एक आदत है कि जब तक हमारे चीज़ों में मुसीबत ना पड़ जाए, जब तक हम पर मुसीबत ना आ जाए, हम पेड़ों को काटना नहीं रोकते। गर्मी बढ़ती जा रही है बट हमारा शौक इतना ज़्यादा है कि हम घर पे प्लास्टिक के पौधे तो लगा लेते हैं, प्लास्टिक के फूल लगा लेते हैं घर को सजाने के लिए। दिवाली आ रही है, अब आप नोटिस करेंगे कि मार्केट में झालरें बिकेंगी, बहुत बड़ी बड़ी झालर बिकेंगी, लेकिन हमारे घर में जब असल का पौधा लगा होता है, हमारे
आसपास कहीं रियल पौधा लगा होता है, हम उसे काट कर उन प्लास्टिक के फूलों से अपना घर सजाने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि प्लास्टिक के फूल ही हमारे घर की रौनक बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना जनाब। मेरे साथ भी कई दफा ऐसा होता है कि मेरे घर में लगे हर सिंगार के पौधे को काटने की बात की जाती है और वहीं दिवाली आने पर प्लास्टिक के पौधों से अपना घर सजाया जाता है। आयरनी है लेकिन ये सच है। अब गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने नोटिस किया कि गांव में बहुत तेजी से पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से गिद्ध अपना घर खो रहे थे। अब क्योंकि उनके घोंसले नहीं बन पा रहे थे, और आपको भी पता है गिद्ध, चील ये कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला सबसे ऊपर जाकर बनाते हैं। अब जब बड़े बड़े पेड़ कट चुके थे तो इन गिद्धों को घोंसला बनाने की जगह ही नहीं मिल रही थी, उनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा था, प्लस मरे हुए पशुओं को दफनाने की व्यवस्था हो रही थी, यानी कि जो जानवर मर गए हैं उन्हें खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है। अब जो पक्षी सिर्फ मांस पर जीता हो, इमेजिन कीजिए उसका खाना ही आपने दफना रखा है, वो उसे मिल ही नहीं रहा है। तो इन गांव वालों ने क्या किया होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। गिद्धों की हालत को देखकर मिस्त्री और गांव वालों ने उनकी फीडिंग शुरू कर दी। अथॉरिटी से स्पेशली परमिशन मांगी गई, जिसमें कलेक्टर साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और जितने भी रोड एक्सीडेंट हुआ करते हैं उनसे मदद मांगी गई। उनसे कहा गया कि जितने जानवर आपको मरे हुए मिलते हैं, रोड एक्सीडेंट में मिलते हैं या कहीं बाहर मिलते हैं, तो आप उन्हें दफनाने की जगह पर हमको दे दें, हमारा फीडिंग ग्राउंड है वहां पर लाने की व्यवस्था की जाए। वहां व्यवस्था की गई, ब्रीडिंग सीजन में जरूरत पड़ने पर बाजार से खुद मांस खरीद कर फीडिंग जोन में रखा गया। वॉलंटियर्स जितने भी थे वो देखते थे कि कहाँ ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, क्या इन गिद्धों के पास खाने के लिए है या नहीं है। वॉलंटियर्स खुद मार्केट से जा करके मीट खरीदने का काम करते थे। गांव के बच्चे तक नेस्ट और फीडिंग की निगरानी किया करते थे। वो नोटिस करते थे कि कोई और इंसान आ करके इन पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, इन्हें काटे ना। सिर्फ खाना ही नहीं, गांव वालों ने करीब साल 2000 से पेड़ काटने भी बंद कर दिए। हम आपको बता दें वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर SEES CAP ने अगले कुछ वर्षों में करीब 50,000 पेड़ लगाने की योजना भी बनाई। नेटिव ट्रीज की नर्सरी भी तैयार की गई ताकि गिद्धों के नेस्टिंग के लिए ऊंचा और सुरक्षित पेड़ मिल सके। गिद्धों के ब्रीडिंग हैबिटेट्स के आसपास और उनको और सुरक्षित रखने के लिए 2002 से चीर गांव में DJ लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई। त्योहार और सेलिब्रेशन में पटाखों पर भी बैन लगाया गया है। और इस तरह से इन गांव वालों ने, जो कि पर्यावरण प्रेमी कहलाते हैं, इन लोगों ने मिल करके लगभग कुछ सालों के अंदर ही उनकी मेहनत को रंग मिला। और उनकी मेहनत कुछ इस तरह से साकार हुई कि 11 से ज़्यादा एक्टिव नेस्ट बन गए। गिद्धों की संख्या 22 से बढ़कर 347 तक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत थी, वो बस गिद्धों को बचाने में लगे थे। हमारे आसपास रहने वाले पक्षी, हमारे आसपास रहने वाले जानवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप उन्हें अपने आसपास नहीं रहने देते हैं तो आपके आसपास क्राइम, बीमारी, हर एक चीज़ का खतरा बढ़ता है। आपके गली के कुत्ते जो रात में भौंकते हैं, जिसे शायद आप परेशान हो जाते हो, उनका गली में होना बहुत ज़रूरी है। न जाने कितनी चोरियां सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती हैं क्योंकि गली के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई बाहर का इंसान उनकी गली में दिखाई पड़ जाए तो। जिन जानवरों से हम परेशान हुआ करते हैं वो जानवर आपसे कुछ मांगते भी नहीं है। उन्हें आपसे आपकी पैसे, आपकी दौलत, शोहरत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी मोहब्बत और अपने घर को बचाए रखने की एक छोटी सी कोशिश है। जिस तरह आप अपने घर को बचाने के लिए हाथ पैर मारते हैं, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वो तो बेचारे कोर्ट भी नहीं जा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहते हैं कि जो पक्षी पेड़ पर रहते हैं उनकी पेड़ों को ना काटा जाए, जो गली में कुत्ते आपकी कार के नीचे बैठ जाते हैं उन पर कार ना चढ़ाई जाए, उन्हें भगाया ना जाए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसे नुकसान भी ना पहुंचाया जाए। तो ये कहानी आई थिंक आपके दिल को काफ़ी छुई होगी और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब मैं ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ कि लोग अपनी चीज़ों को छोड़कर, अपने मतलब की चीज़ों को छोड़कर पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। वो बेजुबान जानवर जो कुछ बोल नहीं पाते, जो कुछ कह नहीं पाते, अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, उनकी तकलीफ को समझना, उनकी बातों को समझना और उनके लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है।
फिलहाल इंजॉय करते रहिए आपका अपना मॉर्निंग वाला शो। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, एंड अपना फीडबैक जरूर से चैट बॉक्स में दीजिएगा। बस इस गाने के पार आते हैं आपके मैसेजेस को लेने के लिए, क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया वक्त है बाप से विदा लेने का। तो आप आज आपने कितना एंजॉय किया, प्लेलिस्ट और ऑफ कोर्स आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो कैसी लगी, फीडबैक में जरूर से बताइएगा। सुनते रहिए, बने रहिए, आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग घोटा विद राज उन्नति ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस 89.6 FM।

एलन जी और के की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे आया रे, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ आपके मैसेजेस को लेने के लिए। एंड हमारे पास जो आखिरी मैसेज हमने पढ़ा था वो ऑफकोर्स हमारे आर के श्रीवास्तव जी का था। एंड सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी अनुप मिश्रा जी ने लिखा था कि शटल कॉक में 16 विंग्स होते हैं, बिल्कुल सही जवाब था आपका। एंड इसके बाद लिखा है हमारे गौरव जी ने, आशा ऐसे रखो कि आशाओं की क्षति ना हो, एडवाइस ऐसे लोगों से मांगो जिसकी हटी ना हो, और मजा तो तब तक रेडियो सुनने में आता है जब तक माइक पर नॉन स्टॉप बोलने वाले आरजे उन्नति ना हो। क्या बात है, बहुत सही राइमिंग कर लेते हैं आप। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी लाइन्स लिखी हैं आपने। महेंद्र जी ने गाने की तारीफ की है। एंड पप्पू जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद लिखा है गौरव जी ने, शटल कॉक कहाँ बनती है ये नहीं पता, मगर कोई मजदूर ही बनाता है। और एक बात समझ नहीं आ रही, वो ये है कि जब शटल कॉक मुर्गे की पूंछ के पंख से बनते हैं तो उसे चिड़ी या चिड़िया क्यों कहते हैं? चिड़िया तो एक पक्षी का नाम है। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़का दुकान पर जाके बोला कि कोलगेट दे दो, दुकानदार ने पूछा कौन सा, फिर वो बोला पेप्सोडेंट दे दो। वैसे बात तो सही है, सोचने वाली बात है। माय लॉर्ड, इस पर बात की जाए, इसको सोचा जाए कि आफ्टर ऑल चिड़िया को चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उड़ती है, या वो सिर्फ चिड़िया के पंख से बनती है इसलिए उसको चिड़िया कहा जाता है? अब आप सोच के बताइएगा। एंड विकास तिवारी जो नाव से जुड़ गए हैं, हेलो आशे बरेली वाली मैम, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, जय माता दी, राधे राधे। एंड मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका भी वेलकम कहते हैं मॉर्निंग वाले शो में। इसके बाद लिखा है उल्बेरिया, जी हाँ सही जवाब है, लेकिन वो बेड़िया नहीं है, बेरिया है। नाइस अपडेट, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद है उन्नति जी, कबूतर अपना दाना देखा है, किसी की लेटर चिट्ठी नहीं पहुंचाता क्योंकि कबूतर बेवफा होता है। भाई कबूतर बेवफा नहीं होता, उसे सिर्फ अपने घर का रास्ता ही याद होता है, इसीलिए वो वहीं जाएगा जहां पर वो पला बड़ा है, जहां पर उसने हमेशा से वक्त गुजारा है। धर्मेंद्र मोहन जी का ये मैसेज था। एंड इसके बाद है विकास तिवारी जी का कहना कि अगर ये बात सही है तो वो गाना कैसे लिखा, कबूतर जा जा जा मेरे प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। यही बात तो हमको भी जानना है कि बॉलीवुड ने हमारे साथ ऐसा काहे किया, हमने तो नहीं कहा था, हमारे साथ धोखा हुआ है। माय लॉर्ड, हमें इंसाफ चाहिए। फिलहाल के लिए मैम, आज की प्लेलिस्ट कहां से लाए हो? अजी आज की प्लेलिस्ट बस आ गई है कहीं जादू से ढूंढ ढांड के। हालांकि बहुत ही पसंदीदा गाने, बहुत ही हिट गाने आप इंजॉय कर रहे थे, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। एंड सविता जी की तरफ से आए हैं बहुत सारे हार्ट इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्यूट है ऐसी टीचर को, लिखा है हमारे महेंद्र जी ने। जी हाँ, ये बात तो है भाई कि ऐसे टीचर बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन वो ये वही टीचर्स होते हैं जिनके किस्से आप नहीं सुन पाते हैं, इनकी कहानियाँ फेमस करने के लिए लोग आपको जल्दी नहीं मिलते हैं। फिलहाल अरविंद जी का भी एंट्री हो चुकी है, लिखा है मेरा भी स्वागत कर लो आज नदी मैम, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी, और आपका भी स्वागत करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोनिया में। बहुत ही अच्छी जानकारी, थैंक यू सो मच मैम। हम भी 6 डॉग पाल रखा हूँ, क्या बात है भाई। और डॉग पालने का मतलब ये नहीं होता है कि भैया आप उन्हें घर के अंदर ही रखें, कई बार ऐसे होते हैं कि जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो यकीन मानिए लोग आपके बारे में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप दिल के बड़े साफ इंसान हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा आज मैम, आप ही की तरह आपका प्रोग्राम रहता है क्यूट एंड स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महेंद्र दीपन जी का लिखना है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड टुडेज प्रोग्राम वाज अमेजिंग, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वंडरफुल सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच महेंद्र जी। पप्पू जी ने लिखा है गुड शो, थैंक यू सो मच। आर के श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं वेरी नाइस रियल स्टोरीज, और प्रोग्राम की क्या बात करें, आउटस्टैंडिंग योर प्रेजेंटेशन, लाजवाब मुझे तो लगता ही है, और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रस्तुति मेरे साथ सभी के दिल को छू लेती होगी। कीप इट अप आशुतोष, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल अब मुलाकात होगी आपसे मेरी 3 से 4 कॉल ट्यून गोना में, तो ख्याल रखिएगा, घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त अब आपसे विदा लेने का, तो चाहूंगी इजाजत, फिर मिलते हैं 3 से 4 आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोना शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने

0: में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: अभी रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा किरण दीदी?
1: समता मैम, आधे घंटे अभी और लगेंगे। और जिम्मी, ये लो आम का पना पियो, और देखो अब मुंह मत फुलाओ।
2: जिम्मी, तुम गुस्सा हो कि इतनी गर्मी में तुम्हें गांव ले जा रहे हैं, तो लौटते समय देखना चहक रही होगी।
0: पर आज गांव की गूंज की टीम एक पर्यावरण संरक्षक शिव कुमार मौर्य के गांव रायपुर जा रही है।
1: आज हम लोगों की कोशिश है कि लोगों को समझाएंगे कि कैसे इतनी गर्मी से बचे और धरती के टेम्परेचर को कम करने में हम सब सहयोग कैसे करें।
2: चलो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुना देते हैं, जो 5 जून को तुमने भी गाया था ना पर्यावरण दिवस पर, तब तो सबसे ज्यादा तुमने ही लोगों को शपथ दिलवाई थी।

0: यह मत सोचिए गाना सुनाकर आप लोगों ने मना लिया, हम तो आप सबसे अभी भी गुस्सा हैं। एसी चलाकर आराम से रहते, कितना आराम था।
1: सब में हमारी प्यारी जिमी को लू लग जाएगी, सनबर्न हो जाएगा, और ये सारा टाइम रूम में ही रहती है, उसी में ही खाना खाती है, एक मिनट के लिए भी रूम से बाहर नहीं निकलती है।
2: इसकी मम्मी बता रही थी कि ये किसी को रूम में आने ही नहीं देती है, कहती है कि जितनी बार दरवाजा खुलता है उतनी जल्दी गर्मी अंदर आ जाती है।
3: ये तो बहुत गलत बात है, क्या 3 महीने गर्मी पड़ेगी तो ऐसी ही पड़ी रहोगी, इससे तो बीमार पड़ जाओगी।
0: मैं भी ऊब जाती हूँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आप लोग बताएं क्या करें। किरण दी का गाना सासू लड़ेगी तो पीसन बिठाए या पूरे दिन सुनते रहते हैं।
4: अरे सासू ले

0: जिमी, हम लोग गांव की गूंज की एक टीम है और हम ही लोग भागेंगे तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि हम अपने गांव से कैसे जुड़े।
1: गांव की गूंज की कोशिश है कि लोगों को गांव से जोड़ने की। शहर में टेम्परेचर कितना था? 47। और जब हम गांव पहुंचेंगे तब वहां पहुंच के देखेंगे कि गांव का टेम्परेचर कितना है।
2: गांव में पेड़, मिट्टी के घर, वैसे कई घर पक्के बन गए हैं, पर एक घर अभी भी है जो खपड़ैल का है। वहां पर देखना, तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी।
0: ये तो हमें पता है, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जब भी शरीर को ढकना चाहिए सूती कपड़े से ढकें तो लू नहीं लगती है। देखो सब में कितनी समझदार है हमारी जिमी, हम सब के लिए कॉटन के मोजे और लंबे वाले ग्लव्स भी लाई है।
1: सिर पर जो गमछा रखते हैं उसे गीला करके रखें, स्पेशली आदमी लोग गर्मियों में।
2: खूब सारा पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और तरबूज खरबूज खूब खाएं। कच्चा प्याज लू से बचाता है, कहते हैं ऐसा।
0: देखो फ्लाईओवर बन रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के कारण ये एरिया कितना गर्म है। इस रास्ते में बहुत बड़े पेड़ थे, सब कट गए। फिर हम क्यों रोते रहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है? हम लोग तो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं।

0: इस बात पर हम सब जरूर ध्यान देंगे कि जितने पेड़ कट रहे हैं अब हम उससे दो गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: केवल नाम का वृक्षारोपण नहीं करेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि उसका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक वह पेड़ बड़ा न हो जाए।
2: रायपुर आ गया, कितनी सुंदर बगिया है इनकी। ये तो सेब और पपीता है, यहाँ तो नहीं होता, फिर कैसे?
3: यह शिव कुमार मौर्य के पिताजी का शौक था, अलग अलग जगह के पेड़ सब्जी फल लाकर लगाते थे।
0: नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये किसान भी है और साइंटिस्ट भी है।
1: अरे अरे देखो, मनीराम को बेहोश हो गया, इसे हीट स्ट्रोक पड़ा है, इसको छाया में ले चलो।
2: पहले ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोछो, कपड़े ढीले कर दो और तुम पंखा झलो, और कोई भाई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो।
3: ठीक है, अब उसके घर वाले कहते हैं दारू बहुत पीता है, जो लोग दारू बहुत पीते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक बहुत पड़ता है। किरण दी जरा समझा दो इसे प्लीज।

0: चलो चलो तुम लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखो गौरैया कितने समय बाद दिख रही है।
1: इन लोगों ने छोटे छोटे घोंसले टांगे हैं जिसमें ये गौरैया घर बनाती है। पीने के पानी के कितने सारे मिट्टी के बर्तन हैं।
2: हम लोग प्लास्टिक के परिंदे टांगते हैं ये नहीं सोचते कि पानी कितना गर्म हो जाता होगा और इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी चिड़िया कैसे पिएगी।
3: धन्य है आप लोग और आपकी अच्छी सोच।
0: मनीराम की वाइफ मायके जा रही है। किरण दीदी आप ही समझाइए तभी ये मानेगी। अरे यही तो इन पक्षियों की देखभाल करती है।
2: अरे फिर ये सब तो गर्मी में मर जाएंगी।
3: अभी देखना किरण दीदी का लोक गीत सुनकर सब झगड़े खत्म हो जाएंगे।

0: चलो इनका झगड़ा तो खत्म हुआ, चलो पीपल की छाया में बैठते हैं और बेला लस्सी लेकर आई है उसे पीते हैं।
1: देखो देखो जिमी, यहाँ उतनी गर्मी नहीं लग रही है ना, और हवाएं भी गर्म नहीं है। शहरों में तो तेजी से पेड़ कट रहे हैं, गाड़ी बढ़ रही है और एक घर में कई एसी हो गए हैं।
2: कहीं फोर लेन सड़क तो कहीं अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल, फ्लाईओवर। हम लोग खुश होते हैं देखकर कि हमारा शहर कितना मॉडर्न हो गया है।
3: हाँ सही कह रही हो, गर्मी बढ़ाने का कारण हम मनुष्य ही तो हैं।
0: पानी की परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, ये लोग बता रहे थे कि अब 100 फीट से नीचे पानी मिलता है।
1: गांव में तो शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जानवर बहुत परेशान होते हैं।
3: जितना पानी पीना हो उतना ही गिलास में लो, वेस्ट ना करें, पानी दूषित ना करें। घर पर जानवर और पक्षियों के लिए पानी के डिब्बे रखें, और हम सबको मिलकर यह जरूर करना चाहिए।

0: श्वेता, तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? क्या हुआ?
1: मेरा मोबाइल खराब हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही रुक गई है।
2: किरण दीदी, हो जाए वही वाला गाना, मेरा मोबाइल बिगड़ गयो।

0: श्वेता, तुम तो जानती हो मोबाइल से कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल खराब हो गया तो इतना दुखी मत हो।
1: सब जानती हूँ, पर फिर भी मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि बता नहीं सकते।
2: चलो चलकर मेडिकल प्लांट की बागवानी देखो, मन बदल जाएगा।
3: ये देखो एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, काली हल्दी और ये देखो ये रहा नीम।
0: यहाँ गांव में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका भी इलाज है। शुगर है तो उसके लिए कौन सी पत्ती खानी चाहिए उसको भी बताया जाता है। हर मर्ज का इलाज है। और जानवरों को कुछ हो जाता है उसकी तो अलग ही बात है।
1: लेडीज के चेहरे पर देखो कितना ग्लो है, ये ताजी सब्जियां, ताजे फल और ताजी हवाओं का असर है।
3: थैंक्स सभी को जबरदस्ती चिलचिलाती धूप में लाने के लिए और इतना सुखद अनुभव कराने के लिए। अब थैंक्स बोल दिया है तो एक गाना तो बनता है।
2: बिल्कुल जिम्मी,

0: बादल छाने लगे हैं, लगता है बरसात होगी। रायपुर में मौर्या जी के परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: पर्यावरण की रक्षा करेंगे, खूब पेड़ लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे,
2: पानी बचाएंगे और प्लास्टिक के प्रयोग की जगह पर मिट्टी के बर्तन और कांच के स्टील के बर्तन का यूज करेंगे।
3: देखना फिर हमारे आंगन में गौरैया आएगी, पेड़ पर तोता और कोयल बोलेंगे, कव्वों की काय काय सुनाई देगी।
0: किरण दी, सब लोग गौरी के घर पर खपरेल के घर के बरामदे में ढोलक के साथ इंतजार कर रहे हैं।
1: देखो कितने सुंदर प्लास्टिक के पन्नी से हाथ के पंखे बनाए हैं।
3: मालती, हमारी तरह से ढोलक बजाना। कजरी भाभी और काकी, आपको नाचना भी पड़ेगा।

0: गुड आफ्टरनून लिसनर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या, और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छी शख्स हमारी लाइफ में, जो कि कहें तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हमारे साथ हैं हमारी एक और लिसनर, पहले आप उनसे बात करिए, क्योंकि मैं तो रिवील करने वाली हूँ नहीं कि यहाँ पे कौन है मेरे साथ। तो आप बताइए कैसी हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोपहर के 12 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थिनी लाइव। मैं हूं आपकी आरजे निधि। तो आप लोग आ गए हैं ज्ञानस्थिनी लाइव में किसी की कोई सितारों के किस्से कहानियां सुनने। जी हाँ, हम भी आज ऐसी एक शख्सियत की बात करेंगे।
0: यानी निधि जी, आज हमारा टॉपिक है सितारों की दुनिया में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: यस, तो निधि जी, क्या लगता है सितारों की दुनिया? मुझे तो लगता है बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या हम लोग भी उसमें जा सकते हैं?
1: क्या संध्या जी, हम किन सितारों में चली गईं?
0: यार मैं निधि, वो अपने बॉलीवुड वाले सितारों की बात कर रही हूँ मैं।
1: मुझे लगा आप चांद तारों में तो नहीं खो गई।
0: अरे नहीं, वो तो अपने आप में एक प्लेनेट, एक स्टार है, उसमें जाने की तो पावर है नहीं, पर इनमें तो जा सकती हूँ ना।
1: जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती हैं।
0: तो निधि जी,
1: जी
0: ये बताओ, हमारे बॉलीवुड में जो हमारे सितारे हैं उनके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें और हमारे लिसनर्स को?
1: बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे।
0: अच्छा, ये बताइए निधि जी, क्या हमारे जो हीरोज, मतलब जितने भी हमारे फेवरेट हीरो हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही थी क्या?
1: जी आपको नहीं लगता संध्या जी, हमारी भी ज़िंदगी कभी एक फिल्म की तरह लगती है। कब उसमें ड्रामा हो जाए, कब क्या हो जाए, कब किसकी एंट्री हो जाए, कब कोई विलेन बन जाए।
0: सही बात है निधि जी, आपने एकदम सही बात कही। हमें तो सच में कभी कभी लगता है क्या हम इस लाइफ में ये एक्टिंग कर रहे हैं क्या? हमें भी मतलब कभी कभी

0: फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञानस्थली लाइव में। जी हाँ, हम आ गए हैं फिर से आपको बताने अपने अभिनेता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, किसी को भी देखते हैं लगता है इनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, इनका जीवन कितना आसान होगा, पर नहीं। उनके आगे के जीवन की कहानियाँ, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या क्या किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, फिर उस मुकाम पे पहुँचे होंगे। हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से संघर्ष आते हैं, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं, पर अब नहीं, अब हमें कुछ करना है। तो आइए हम एक ऐसी ही शख्स की कहानी जानते हैं मिस संध्या जी से, जो हमें बताएंगी कि जीवन में निरंतर प्रयास हमें किस तरह करते रहना चाहिए। जी संध्या जी।
1: जी निधि जी, आपने एकदम सही बात बोली है। मतलब असल ज़िंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं है, उसके पीछे का राज स्ट्रगल बहुत अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि मुझे मतलब दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं, तो सोचो उसके पीछे की मेहनत क्या रही होगी। ऐसे ही हमारे बॉलीवुड शाहरुख खान जी की बात है, जो कि उनकी लाइफ मतलब स्टाइल ऐसे यूँ कहें तो बहुत अच्छी है। हम लोग उनको एकदम लग्जेरियस पर्सन में, बिजनेसमैन में टॉप नंबर पे समझते हैं, पर हाँ उनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। तो आज हम उनको उनके बारे में आपको बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। शाहरुख खान मुंबई में बांदा स्थित एक ऐतिहासिक और शालीदार बंगले में, जिसका नाम है मन्नत। मन्नत का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि उनका जो नेम प्लेट है निधि जी, वो डायमंड से बना है। समुद्र के सामने सबसे अच्छा खूबसूरत 6 मंजिले का, उसकी कीमत मैम, निधि मैम, मान के चलो 200 से 300 करोड़ की होगी।
0: अरे वाह, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात बता दी। मतलब उन्होंने उसको बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा।
1: हाँ, और फिर 200 करोड़ 300 करोड़ हम लोग के लिए तो एज्यूम करना भी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही वो लगता है शौक वाली बात।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: और इतना ही नहीं निधि जी, उनके पास दुबई में पाप जुमेरा, लंदन और अलीबाग में इससे भी ज़्यादा बेहद आलीशान विला और संपत्तियां हैं।
0: वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई।
1: और उनकी बिजनेस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। उनका बिजनेस साम्राज्य सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, वो अपने प्रोडक्शन और BFX कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के मालिक हैं। इसके साथ वो क्रिकेट में भारी दिलचस्पी रखते हैं, इवन मतलब वो भी क्रिकेट के फ़ैन हैं।
0: जी अरे,
1: हम आप ही नहीं हैं कि MS धोनी या क्रिकेटर के फ़ैन हो, इवन हमारे हीरो जो कि शाहरुख खान जी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। और वो IPL के मशहूर टीम कोलकाता के नाइट राइडर्स यानी KKR के सह मालिक भी हैं।
0: वाह, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बता दी। मतलब आप बताना चाहती हैं कि हम उनको देखते हैं और ऐसे जज कर लेते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, पर उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा।
1: हाँ।
0: उन्होंने क्या क्या नहीं देखा होगा, निरंतर प्रयास किया होगा। वो फिल्म इंडस्ट्री में कितने बार ठुकराए गए होंगे, कितने बार निकाले गए होंगे, फिर जाके वहाँ उनको जगह मिली होगी।
1: हाँ।
0: इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमें जीवन में ऐसे कभी हार मान लेना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें भी ट्राई करना चाहिए, जब तक हमें अचीवमेंट मिले ना तब तक।
0: बिल्कुल, कभी किसी की कोई भी आप मूवी उठा लीजिए, उसमें उनकी एक्टिंग देखिए, ऐसा लगता है उनको उसी किरदार के लिए बनाया गया है।
1: और वो यहाँ मतलब वो एक्टिंग ही नहीं, मतलब वो उसको उस इमोशन को भी अपने आप में ले आते हैं, इतना ज़्यादा परफेक्टनेस उनकी एक्टिंग में है। इवन वो जब गाना कोई मतलब सॉन्ग करते हैं तो उनकी लिपसिंग मैच करिए एकदम मतलब कॉपी कर जाती है, ये लगता ही नहीं है कि हाँ ये लिपसिंग कर रहे हैं, एकदम मतलब फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, और वही हमें सिखाते हैं कि जैसे उनके जीवन में कोई भी किरदार आता है वो वैसे उसमें ढल जाते हैं, हमें भी वैसे ही मेहनत करते रहना चाहिए, और जीवन में कोई भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, बिल्कुल वैसे ढल जाना चाहिए जैसे बस ये हमारे जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, इससे हम यूं ही निकल जाएंगे।
1: और उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि BMW या सीरीज़ शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास कस्टमाइज आलिशान वैनिटी वैन भी है, जो चलते फिरते महल जैसी दिखती है। अब सोचो ये कितनी यूनिक चीज़ है।
0: जी आपने बहुत अच्छी बात कही, पर संध्या जी आप उनके स्ट्रगल के बारे में भी तो सोचिए, बचपन में ही उनके माँ बाप उनके साथ नहीं थे, उन्हें कितनी बार फिल्मों से निकाला गया।
1: लाइफ की सबसे ज़्यादा अगर टफेस्ट बात करें और पीक नंबर की, जिसके मतलब पेरेंट ना होने के बावजूद भी हमारे बीच में वो इतने टॉप नंबर के सितारे हैं, तो फिर हम क्या ही मतलब गेस कर सकते हैं कि उनके पापा मम्मी नहीं थे। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा बैकबोन होता है हर मतलब लोगों की लाइफ में अलग अलग सबका होता है, पर मेरी एक सुपीरियर थिंक ये है कि हाँ पेरेंट जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, कि वो हमारा प्रोटेक्शन हमारी केयरिंग सबसे ज़्यादा अच्छी करते हैं। और सोचो उनके ना पेरेंट थे फिर भी उन्होंने एक बॉलीवुड में सितारा बन गए।
0: जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आपने ऐसे ही बात कर दी है कि हमारे लिसनर्स को भी लग रहा होगा कि जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए। दुनिया आज उन्हें किंग खान कहती है, किंग खान ये नाम पाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा।
1: हाँ हाँ, अगर हम बात करें उनकी हैबिचुअल आदतों के बारे में डे वर्क में, किंग खान अपनी रातों को काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं, मतलब हम लोग ये होता है, हम लोग की माइंडसेट होती है कि अगर हम कोई वर्क कर लिए हैं तो चलो ठीक है, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम चलो सोते हैं फिर सुबह कर लेंगे। लेकिन उनका ये मसला नहीं, वो सोचते हैं कि जो काम करना है उन्हें करना है, इवन रात में भी वो अपना हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। इतना वो अपने काम को लेके मतलब जैसे कहते नहीं है कि इंसान पागल रहे, तो वो अपने काम को लेके पागल नहीं इतना ज़्यादा।
0: वाह ये बहुत अच्छी बात बताई। और संध्या जी जैसा मैंने भी सुना है कि शाहरुख खान के जब आप घर में एंट्री लेते हैं तो उनके घर के जस्ट सामने आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है।
1: लाइब्रेरी
0: जी मतलब आप सोचिए उनको मतलब अच्छा, स्ट्रगल हाँ। के दौरान उन्होंने सीखा कि पढ़ना कितना जरूरी है।
1: जरूरी है, एकदम सही बात कह रही हैं आप।
0: और ऐसा नहीं आप कोई तैयारी कर रहे हैं तभी पढ़ाई करिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर बहुत सी आदतें होती आती हैं जो शायद आपको जीवन में कभी निरंतर प्रयास करते हुए वो नहीं आ सकती, वो क्षमता, वो सहने की बातें। कुछ बातें हमें किताबें सिखाती हैं, ये बात सच है, और शायद उनको ये पता चला इसलिए उनके घर सबसे पहले आपको वो लाइब्रेरी दिखती है और वो इंसान पढ़ता रहता है।
1: ये बात तो आपने सही कही कि मतलब एक बॉलीवुड के सितारे होते हुए भी उन्हें एजुकेशन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो फिर हम लोग को भी उनसे तो एटलीस्ट कुछ समझना ही चाहिए। माना कि उनकी एक्टर हम लोग नहीं अचीव कर सकते, पर उनकी जो स्किल्स हैं, जैसे कि वो मतलब लाइब्रेरी रखे हैं तो इसका मतलब उनके पास लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब उन्हें एजुकेशन से अटैचमेंट है, पढ़ने में उनको मतलब इंटरेस्ट है, तभी तो उन्होंने लाइब्रेरी रखा है। अदरवाइज सबके घर में तो लाइब्रेरी मतलब कुछ को छोड़ के बाकी सबके घर में तो लाइब्रेरी होती नहीं है।
0: जी आपने बिल्कुल कही, और मुझे लगता है कि हम लोग के भी जीवन में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। सीधे मंजिल तक पहुंच जाना मतलब मुझे नहीं लगता ज़िंदगी की यही एक वो होना चाहिए कि आपने कोई प्रयास किया और आप सफल हो गए तो वो मज़ा नहीं आता है। आपको एक बार असफलता का सामना करना ही चाहिए।
1: एकदम सही बात बताई आपने, एकदम सही बात बताई। और यही नहीं, हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं, हमारे शाहरुख खान जी, वो एक चेन स्मोकर भी रहे हैं, जो अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए मतलब सख्त डाइट और जिम शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो हाँ, जिम शेड्यूल तो आप बहुत लोग हमारे लिसनर भी जिम करते होंगे, पर देखिए हमारे बॉलीवुड के सितारे भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनकी लाइफ स्टाइल यूँ कहें तो, एक शब्दों में कहें तो बहुत टफ भी रही है, पर दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत अच्छी भी है अब।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ आगे की बात जानने के लिए मिलते हैं हम छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक आप इंजॉय करते रहिए ये प्यारा सा गाना।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञानस्त्री लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निधि जी। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं शाहरुख खान जी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में तो अभी हम जाना, पर अब हम बात करते हैं कि उनकी फिल्म और उनकी एक्टिंग कितने अच्छे अंदाज में वो करते थे। निधि जी, आपको कोई शाहरुख खान का मूवी पसंद है तो उनका नाम बता दीजिए हमें।
1: जी, मुझे पसंद है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: अरे वाह, ये तो सबसे ज़्यादा मतलब रोमांटिक फिल्म, और अगर मैं ये कहूँ तो मतलब पूरे भारतीय सिनेमा की इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली रोमांटिक फिल्म थी।
1: जी, शायद इसीलिए मुझे पसंद है।
0: जिसमें शाहरुख खान जी ने राज का किरदार निभाया था, सिमरन, याद है आपको?
1: जी बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है अभी।
0: जिसकी वजह से उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये यूँ कहें तो हम बहुत अच्छी फिल्म, इवन सबको पसंद आने वाली फिल्म है, हमारे पापा को भी और मुझे भी, और अब तो हमारी निधि को भी पसंद है आज उनकी। मैं ये और कौन सी मूवी निधि जी आपको पसंद है उनकी?
1: जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंद है मुझे, और एक है कुछ कुछ होता है, आपने देखा है उसको?
0: कुछ कुछ होता है, हाँ मैंने भी देखा, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म है। और अगर हम बात करते हैं कि एक मूवी उनकी है स्वदेश, जो कि 2004 में आई थी, इस फिल्म में शाहरुख खान नासा के एक साइंटिस्ट का किरदार निभाया था, जो कि अपने गाँव में वापस लौटता है। शाहरुख खान के करियर का सबसे बेहतरीन और संजीदा परफॉर्मेंस माना जाता है कि वो एक नासा का साइंटिस्ट वाला रोल प्ले किए हैं।
1: और आपने मोहब्बतें देखी हैं संध्या जी?
0: अरे बात क्या कह रही हैं, लव का मतलब एकदम पीक मूवी है मैम।
1: वाओ।
0: हाँ, और फिर उसमें इतने अच्छे अच्छे गाने हैं कि क्या ही बताऊँ, लेकिन उसमें ये चीज़ तो दिखा दी कि हाँ लव लव होता है।
1: बिल्कुल होता है, क्यों नहीं भाई।
0: और फिर अपने चलते ही वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और बच्चों को लव और म्यूजिक सिखाता है।
1: जी,
0: और वहाँ के प्रिंसिपल जो कि हमारे कौन है, अमिताभ बच्चन जी, जो कि उन्होंने भी बहुत एकदम डिसिप्लिन प्रिंसिपल का वो और मैनेजमेंट का मतलब किरदार निभाना है, वो तो बहुत अच्छा करते हैं, ऑब्वियसली अच्छा करते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आप ऐसे ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए ज्ञानस्थली लाइव, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है ज्ञानस्थली लाइव।
0: जी,
1: मैं हूँ आपकी होस्ट निधि और हमारे साथ हैं संध्या जी।
0: तो फिर अब एक बात मुझे और याद आई,
1: जी
0: बता दो निधि जी।
1: बिल्कुल बता
0: दीजिए, एक मूवी है उनका चक दे इंडिया, जो कि 2007 में आई थी, एक
1: अच्छा?
0: देशभक्ति और स्पोर्ट ड्रामा फिल्म, जिसमें उन्होंने महिला हॉकी टीम कि कोच कबीर खान की दमदार भूमिका निभाई थी। इवन अगर वो मतलब जिस जो भी किरदार उनको जो भी करेक्टर मिलता है निधि जी, वो उसमें मतलब ऐसे करते हैं कि ये फील ही नहीं होने देते कि वो एक्चुअल में एक्टिंग कर रहे हैं, वो मतलब एकदम से उसी का बिल्कुल रियल लाइफ परफॉर्मेंस करते हैं।
1: अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी संध्या जी। और संध्या जी आप ये बताइए, आपको शाहरुख खान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? मतलब कोई उनका डायलॉग होगा या कोई उनके स्टाइल होगी, कुछ तो आपको अच्छा लगता होगा।
0: हाँ, उनकी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, इवन जब वो रोते हैं तो मतलब ऐसे रोते हैं कि मतलब क्या ही बता दूँ, आप तुम मूवी देखी होंगी, उनके रोने की एक्टिंग मतलब आँख और नाक दोनों शुरू हो जाते हैं उनके, और आँखें एकदम रेड रेड करके, क्या ही मतलब मैं बताऊँ उनके रोने वाली एक्टिंग से। और निधि जी,
1: सब बात तो अपनी जगह है संध्या जी, पर उनका जो ये हैंड वाला मूवमेंट होता था ऐसे बाहें फैला करके, वो तो आपने हर जगह किसी ना किसी को करते हुए देखा ही होगा।
0: जी निधि जी बिल्कुल, वो वाकई में बहुत अच्छा करते हैं, जब वो अपने हाथ फैला के ऐसे करते हैं वाकई में बहुत अच्छा लगता है।
1: और हमारे लिसनर्स के पास भी ऐसी दो चार पिक्चर उनकी गैलरी में जरूर पड़ी होंगी जो उन्होंने ऐसे कभी ना कभी लिया होगा या उनके पापा ने लिया होगा, क्योंकि भाई किंग खान का फैन कोई ना हो ऐसा हो नहीं सकता है।
0: तो हमारे लिसनर्स आप बताएं उनको शाहरुख खान की कौन सी मूवी पसंद थी।
1: जी बिल्कुल, तब तक हम जाते हैं और फटाफट आते हैं
0: और आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि ढोल ना सॉन्ग से है, और फिर हाँ तब तक आप हमें वो शाहरुख खान की जो भी आपकी फेवरेट मूवी रही होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: जी आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ज्ञान स्थली लाइव में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि और हमारे साथ मौजूद हैं संध्या जी। अभी हमने सुना बहुत सी बातें जानी शाहरुख खान के बारे में, पर क्या आप उनके डायलॉग मिस कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल मिस कर रहे होंगे, पर हम मिस नहीं करने देंगे क्योंकि संध्या जी डायलॉग्स लेके आई हैं कुछ ऐसे जो सुन के शायद आपकी यादें फिर से ताज़ा हो जाएं। आपको याद आए आपने कभी वो मूवी देखी थी किसी के साथ कहीं। तो चलिए हम संध्या जी से जानते हैं कि संध्या जी आप और क्या बताना चाहती हैं हमारे लिसनर्स को।
1: निधि जी, लिसनर्स को तो मैं बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपकी जो फेवरेट मूवी थी उसके डायलॉग के बारे में बात
0: अरे
1: करूंगी।
0: वाह संध्या जी, आप हमारी भावनाओं का बहुत ध्यान रखती हैं।
1: बिल्कुल निधि जी, अब हम बात करते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में ये मूवी आई थी, जिसमें उनका हमारे शाहरुख खान जी का जो डायलॉग है, जो कि राज का किरदार निभाए हैं। राज,
0: वाह वाह,
1: अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो पलट कर देखेगी, पलट पलट पलट।
0: क्या वो पलटी थी?
1: हाँ बेशक पलटी थी।
0: अरे वाह संध्या जी, बिल्कुल पलटी होगी, प्यार की बात है तो इसमें पलटना बहुत ज़रूरी होता है।
1: जी निधि जी, आपको ये बात और हमारे लिसनर्स को ये बात समझना चाहिए, जो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक है, जो प्यार के भरोसे को दिखाती है।
0: अरे कौन सी सीन है?
1: यही पलट पलट पलट।
0: अरे वाह, तो ये संध्या जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। और भी बात बताइए संध्या जी, जो शायद मुझे सुन के कुछ याद आए।
1: अब हम बात करते हैं ओम शांति ओम, जो कि मूवी 2007 में आई थी, उसका डायलॉग ये था, इतनी शिद्दत से मैं तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। अब किसी भी चीज़, जब वो चीज़ हो, आपका सपना हो या आपका प्रेमी हो, कुछ भी हो, अगर आपने सच्चे मन से उसे चाहा है तो पूरी कायनात आपके पीछे ज़रूर लग जाती है कि बस इसको ये दिलाना है तो दिलाना है। पर अगर आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहना छोड़ दें, आपको शिद्दत से चाहना है।
1: मतलब ये डायलॉग जो है सच्चे प्यार की ताकत और डेस्टिनी, भाग और विश्वास को बयां करती है।
0: अरे वाह संध्या जी, ये बात है हमको।
1: लेकिन अभी भी हम जेंजी के जनरेशन में ये चीज़ें फॉलो तो करती है, पर किसी किसी की जो मतलब पार्टनर होते हैं या तो वो सपोर्ट नहीं करते, और अगर पार्टनर भी सपोर्ट कर रहा है तो फैमिली एग्री नहीं करती। पर उनका प्यार बहुत शिद्दत वाला सच में होता है।
0: जी अब संध्या जी इन सब बारे में ज़्यादा जानती हैं।
1: अरे नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मूवी एंड डायलॉग्स के अकॉर्डिंग।
0: जी हम भी यही कह रहे हैं कि संध्या जी ज़्यादा जानती हैं। मतलब संध्या जी,
1: थैंक यू सो मच, अगर मेरी आप तारीफ कर रही हैं तो।
0: बिल्कुल आपकी तारीफ कर रहे हैं, और हम अपने लिसनर से भी जानना चाहते हैं कि आप भी बताइए अगर आपने कोई ऐसा डायलॉग याद किया हो कभी कहीं किसी के साथ,
1: या किसी स्पेशल के लिए याद करके रखा हो तो हमें ज़रूर बताइए।
0: हम लोग जैसे कहते नहीं हैं छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उस मूवी से ये लिया होगा या सुना होगा, चुराया होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा जिसको पसंद करते हैं उसके जैसा बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं।
1: अच्छा नहीं दीदी,
0: इनके जैसा रहें।
1: क्या आपके मन में या लाइफ में ऐसा कुछ है?
0: जी नहीं, अब शाहरुख खान जैसा कोई है नहीं, तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं। जिस दिन ऐसा हुआ पहले मैं आपको ही बताऊंगी संध्या जी।
1: तो निधि जी, मैं क्या कहते हैं, एक मूवी है कुछ कुछ होता है।
0: अरे वाह, आप नहीं समझेंगी, कुछ कुछ होता है।
1: अच्छा,
0: ये डायलॉग है मैम, डायलॉग है इस मूवी का।
1: ये हाँ, उसमें ये है, प्यार दोस्ती है, अगर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती बिना प्यार तो होता ही नहीं, जैसे कि सिंपल।
0: जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि दोस्ती बिना प्यार तो होता ही नहीं है, और प्यार के रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्ती। तो पहले हमें दोस्ती रखनी पड़ती है, और दोस्ती ऐसी नहीं कि हमें इनसे प्यार है तो दोस्ती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है।
1: जैसे एक गाना नहीं है, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई।
0: जी बिल्कुल सही
1: तो मतलब ऑब्वियसली लाइफ में पहले दोस्ती होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे प्यार तो हो ही जाता है।
0: जी बिल्कुल, और प्यार भी जो है उसको एक दोस्त की तरह रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ दोस्ती रहती है वहाँ सब कुछ आपका बचा रहता है, संभला रहता है।
1: हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये, इस डायलॉग का मतलब ये है कि हमारे एडल्ट्स को सिखाया जाता है कि सच्चे प्यार की शुरुआत हमेशा गहरी दोस्ती से होती है, और वो प्यार हमेशा जीअप बीअप वाला नहीं होता है। कभी कभी वो प्यार मम्मी पापा के बीच, या सिस्टर्स के बीच, भाई बहन के बीच, या फिर फ्रेंडशिप वाली जैसे कि मेरी और आपकी है।
0: जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, और हम सबसे यही आशा करते हैं कि आप जहाँ जिससे भी दोस्ती रखें, प्यार रखें, उसको यूं ही बरकरार रखें,
1: लेकिन उसे शिद्दत से निभाएं, उसमें मतलब कोई कंप्रोमाइज ना करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल संध्या जी, ये तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है कि कौन कैसे क्या निभा रहा है।
1: और फिर देवदास मूवी तो जिन्होंने देखी है उन्हें तो एक्चुअल बात पता है कि हाँ सच में क्या होता है प्यार।
0: जी बिल्कुल। आपका क्या राय है उस मूवी को लेके?
1: मेरा क्या राय है? मेरा राय यही है कि सच में प्यार एक अच्छी चीज़ होती है, मिले या ना मिले, शादी उससे हो रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो रही है फिर भी ये नहीं है कि हाँ वो प्यार कम हो जाए, ये गलत बात है।
0: जी हाँ, तो शाहरुख खान जी हमको सिखाते हैं कि हमें दोस्ती, प्यार, रिश्ता, या किसी मूवी में देखा होगा वो बहुत अच्छे बेटे हैं, किसी में बहुत अच्छे फादर हैं, और किसी में बहुत अच्छे भाई हैं, तो हमें अपने रिश्तों को ऐसे ही निभाना चाहिए। और बात शाहरुख खान की हो रही थी, और हमने देखा कि उनकी लाइफ का स्ट्रगल, उनका जो जीने का नज़रिया है, उनका जिम, उनका खाना, पढ़ना और रिश्ते, उन्होंने कैसे बैलेंस करके रखा है। और इतना सब बैलेंस करने के बाद जब एक इंसान इतना उभर के सामने आता है तो हमारी नज़रों में ऐसे एक सितारे की तरह चमकता है, और हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे शाहरुख खान जी जो कि रिस्पेक्टिव है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, इवन हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हाँ लाइफ कितनी टफफुल क्यों ना हो, लेकिन लास्ट में अगर आप उसी पे एकदम चलते जा रहे हो, उसको गिव अप नहीं किए हो, तो सक्सेस मिलना ही मिलना है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और हमें ऐसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलेगी।
1: निधि जी
0: जी,
1: मोहब्बतें के बारे में तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा।
0: जी बिल्कुल देखा है और बिल्कुल सुना है।
1: उसका एक डायलॉग याद है आपको? वो लाइक पोएम टाइप का था, फिर गाना था।
0: जी संध्या जी, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे,
1: मैं बता दूं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे यही तो जानना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, आप बटन लगाने भी एक्सपर्ट हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा, तो हमारे लिसनर्स बताएं क्या उनके फ्रेंड भी उन्हें बटन लगाते हैं जैसे कि मेरी निधि जी मुझे लगा रही हैं?
0: जी नहीं, फ्रेंड्स कभी बटनिंग नहीं करते हैं संध्या जी।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो हम बताते हैं मोहब्बतें मूवी से एक डायलॉग था, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पर वो मरती थी, नजरें झुकाकर शर्माकर गलियों से गुजरती थी, कुछ कहना था शायद उसको, पर ना जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे यही पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है और ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। क्या
0: क्या संध्या जी, क्या
1: वही आंखें खुली हो या हो बंद?
0: वाओ, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी के साथ हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक आप जाइएगा नहीं, सुनते रहिए ज्ञानस्थली लाइव।
1: Stay tuned.

0: आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपकी आरजे निधि। तो अब टाइम हो चुका है अलविदा लेने का, फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली। संध्या जी
1: बाय बाय लिसनर्स। यस बिल्कुल।

0: एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए की इस खास पहल को, जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की है, जिसके अंदर बात करते हैं आपके सेहत की, आपके स्वास्थ्य की। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज का हमारा विषय था, आज का हमारा टॉपिक था जर्नल फिटनेस, यानी कि वो फिटनेस जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिटनेस में खाना क्या चाहिए और क्या।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश यही रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम ही दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी ललिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललिता जी।
1: जी, थैंक यू मैम।
0: जब कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवारजनों के मन में डर और सवाल होता है, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से, जिससे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब भी देंगे। तो हमने बहुत सारे सवाल वैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे भी, यानी कि हम उन सवालों को रखेंगे और उसके बाद में हम जवाब प्राप्त करेंगे अपनी ललिता जी।

0: वनस तक इसे पहुंचाया जा सके और अगर सही समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
1: अच्छा तो ये बात है। अब एक सवाल और है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है?
0: जी अखांसा जी, बिल्कुल सुरक्षित है। यह दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगाने के बाद हाथ में हल्का दर्द, हल्की सूजन, बुखार, सिर दर्द, चक्कर आ सकते हैं, ये सामान्य बातें हैं और आमतौर पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
1: मतलब ये सारी जो भ्रांतियां हैं कि HPV का जो टीका है वो सुरक्षित नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं।
0: जी ये केवल अफवाहें हैं।
1: जी अब आपसे एक और सवाल करूंगी मैं ललिता जी, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी होता है?
0: आकांक्षा जी, गंभीर दुष्प्रभाव तो दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें और कोई चिंता हो तो आशा, ENM, CHO या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके बात कर लें।
1: अच्छा अब एक और सवाल है ललिता जी आपसे कि ये जो टीका है बच्चियों को ही क्यों लगाया जाता है?
0: जी ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने।
1: जी
0: क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण न बन सके, ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए यह टीका लगाया जाता है।
1: काफी जरूरी है इसका मतलब।
0: जी
1: अब बताइए कि क्या इससे भविष्य में जो सबसे बड़ी अफवाह है हमारे समाज में देखी जाती है कि भविष्य में माँ बनने पर कोई असर पड़ता है?
0: नहीं, HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। यह कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये खाली अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें।
1: अब ये बताइए कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं?
0: हर बात सही नहीं होती
1: जी,
0: कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें।
1: अब आखिरी सवाल आपसे मैं रखूंगी, टीका कब और कहां लगेगा?
0: इसके लिए आप अपनी आशा, ENM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललिता जी।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और हाँ, सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
4: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक

0: हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
1: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
0: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
0: अच्छा।
1: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
0: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
1: बहुत सारी,
0: जैसे?
1: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
0: जी।
1: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
0: और बाकी?
1: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
1: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
0: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
0: जी
1: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
0: जी।
1: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
0: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
1: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस NBSU।
0: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी। लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
1: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
1: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
1: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं

0: आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
1: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
0: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
0: जी,
1: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
0: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
0: जी
1: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
0: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
1: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
0: जी।
1: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
1: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
0: जी।
1: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
0: जी,
1: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
0: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
1: जी जरूर
0: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
1: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
0: जी।
1: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
0: जी,
1: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
0: जी।
1: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
0: जी,
1: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
0: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
1: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
0: जी।
1: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
0: जी।
1: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
0: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
1: देखिए आकांक्षा जी
0: जी,
1: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
0: जी,
1: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
0: जी,
1: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
1: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
0: जी।
1: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
0: बिल्कुल,
1: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
0: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
1: जी आकांक्षा जी।
0: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
0: जी,
1: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
1: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
0: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: मेरा संदेश बहुत साफ है।
0: जी,
1: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए।
0: जी,
1: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: एग्जैक्टली आ गई है आपकी आरजे समता और साथ में हमारे हैं निधि यानी आरजे निधि। तो हम दोनों लोग आ गए आपकी अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
0: बिल्कुल सुन सहेली में हम दोनों लोग आ गए हैं और देखिए क्या तो धूम मची है। माता की चौकी का आयोजन यानी कि भजनों की भेंट का आयोजन शुरू कर चुके हैं हम सभी लोग। तो जो हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है आजकल जो हमारी चेंज हो रखी है जो माता की धुन के नाम पर होती है आप सभी को पता ही है। तो कैसा चल रहा है सभी का नवरात्रों का दिन, नवरात्रि के दिन यानी कि व्रत पूजा अर्चना आराध्य अपने आराध्य देवता को याद करना, अपनी माता रानी को याद करना। तो चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और एक ही साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग बोलेंगे जय माता दी और प्यार से सभी को शुभ दोपहरिया।
1: जी शुभ दोपहरिया।
0: और निधि जी कैसी हैं आप?
1: जी मैम मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
0: कैसा बीत रहा है आजकल आपका भी जो ये दिन है नवरात्रि के दिन?
1: मैम नवरात्रि सबकी अच्छी बीतती है और जब माता रानी आए तब तो सबका दिन अच्छा ही जाता है। अब देखिए नवरात्रि में मैं आपको मिल गई, आपके लिए कितना अच्छा हुआ।
0: हाँ ये तो बात सही है, आप हमें मिल गई
1: और आप मुझे भी।
0: आप अच्छा मैं भी आपको मिली हूँ।
1: मैम मतलब अकेले कोई किसी को नहीं मिलता है।
0: हाँ ये तो बात सही है, एक दूसरे की इच्छाओं से ही मिलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मैंने चाहा आपको, आपने चाहा मैंने चाहा तूने चाहा, वो गाना सुना है ना? बस तो फिर वो मुलाकात हो गई। तो चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम की सबसे पहली औपचारिकता हमारी यही होती है कि हमारा आज का दिन यानी कि हमारी नवरात्रि का आज है चौथा दिन।
1: यस मैम।
0: तो हमें आप निधि बताएंगी कि वो आज का दिन हमें किस माता को समर्पित है और आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो हमें निधि बताएंगी। कि उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि आज की औपचारिकता जो है वो पूरी कर लेते हैं, पहले पोयम सुना देते हैं एंड उसके बाद में फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल मैम। और पोयम भी मैं सुनाऊंगी कुछ ऐसा जिसे सुन के आपको लगेगा ये क्या। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस दुनिया की शान है नारी, हर मुश्किल का समाधान है नारी, घर आंगन को महकाती है जो, घर आंगन को महकाती है जो, वो मीठी सी मुस्कान है नारी। त्याग दया और ममता की मूरत, त्याग दया और ममता की मूरत, ईश्वर का वरदान है नारी। आज छू रही है वो आसमान को, सारे जग का सम्मान है नारी। ऐसी ही कविता हम मैं आपको सुनाती रहूंगी और चीज़ें बताती रहूंगी। तो मैम आपको कविता कैसी लगी?
0: बहुत अच्छी। और मैं तो क्या ही बता दूं, मतलब मेरा तो मन जैसे कहते हैं ना कि आज के दिन की जो कविता है और वाकई में आज का दिन जो है ना वो पूर्ण से पूर्ण महिलाओं को समर्पित है और महिलाओं के समर्पित होने के साथ साथ आज जो नवरात्रि का भी दिन चल रहा है।
1: जी मैम
0: ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में भी हम आज का शो पूर्ण रूप से करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बता देते हैं कि आज है बुधवार यानी कि 14 अक्टूबर।
1: यस मैम। और आज कुष्ठमांडा माता का दिन है, आपको पता ही होगा। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है।
0: हाँ
1: तो ऐसे ही जैसे हमने आपको अभी तक बताया है कि क्या कैसे होता है, कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या हमको फलाहार खाना चाहिए, क्या हमें कैसे उपवास रखनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, तो हम इस बारे में आज भी आपको बताएंगे ज़रूर। तो सब दिन की पूजा अर्चना अलग अलग होती है और कुष्मांडा माता के उन्हें आपको पता होना चाहिए कि उन्हें फलाहार में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। आप सोच भी नहीं सकते, उनको सबसे ज्यादा मालपुआ।
0: ओह माय गॉड,
1: आपने मैम सुना है?
0: हाँ मैंने खाया है। सुना क्या है, मैंने खाया भी है मालपुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई।
1: वाओ, उनको ये मतलब इतना ज्यादा पसंद है कि आप सोच ही नहीं सकते। और उनको भोग लगाने से आपकी जो बुद्धि होती है और निर्णय लेने की शक्ति होती है वो बढ़ती है, ऐसा हमारे उसमें मान्यता है।
0: जी जी जी जी। तो मैंने तो लेकिन आज पता है खजूर का भोग लगाया था
1: मैम, वो भी मीठा ही है। हाँ। शायद भगवान मीठा चढ़ाना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ भी ये तो नहीं बना है, मतलब जो एक मान्यता है।
0: आज खजूर का भोग लगाया था क्योंकि मालपुआ तो खैर मैंने नहीं बनाया।
1: जी
0: पर मैंने खजूर का।
1: और आज पूजा करते समय आपको एक सरल मंत्र का जाप करना है, ओम ओम देवी कुष्मांडाय नमः।
0: यानी कि आज है माँ कुष्मांडा का दिन। हमारी चौथी नंबर पे जो माता आती है हमारी, वो आती है कुष्मांडा
1: जी।
0: तो आज है बुधवार 14 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन। इस दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास बातें, ठीक है? बता दूं
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: जब चारों ओर घना अंधकार था, अंधेरा था, तब कोई भी सृष्टि में नहीं था
1: जी,
0: तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। समझ में आया?
1: ओ, मतलब माँ दुर्गा के इतने सारे रूप हैं जिनके बारे में बस हम जानते हैं रूप हैं, पर उनके बारे में मैम बता रही हैं हमें।
0: एंड इनका तेज जो है वो प्रकाश सूर्य के समान अत्यंत दिव्य और सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की क्षमता केवल इसी में है, इन्हीं में है, मतलब इन्हीं माता में। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के समान तेज।
1: मैम इनका नाम भी तो आप देखिए,
0: कुष्मांडा,
1: मतलब
0: हाँ, मतलब बहुत ही तेजस्वी जो
1: जी,
0: नाम होता
1: जी
0: है।
1: जो तेज से बना हो,
0: बिल्कुल। एंड माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के सभी रोग, शोक और संकट दूर होते हैं तथा आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है।
1: वाओ, मतलब हम सबको आज बहुत ही सच्चे मन से आराधना करनी भी चाहिए। और भाई कल हमारी पंचमी है।
0: और जैसा कि अभी निधि ने बताया कि कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। उनको मालपुए का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, मतलब मीठा आप कुछ भी बना सकते हैं तो मालपुआ उनको बहुत पसंद है। तो इसके इनके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी भी देंगे। एंड इनकी आज इनकी पूजा कैसे की जाती है, क्या है, उसको सब बताएंगे। लेकिन हम, मुझे लग रहा है कि एक सॉन्ग हम सुन लेते हैं पहले, क्यों?
1: जी मैम बिल्कुल
0: सुन लें।
1: बिल्कुल सुन लें मैम, इसमें भी नवरात्रि में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बस सुन लेनी चाहिए।
0: नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप बोले तभी मैं चलाऊं, वरना नहीं चलाऊं।
1: बस मैम चला दीजिए।
0: चला दे
1: बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली। हम मिलेंगे फिर से आपको सुन सहेली प्रोग्राम में।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: जो लड़कियां हैं जो नई नई शादी कर रही हैं, जो लगता है कि मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि अभी उसकी शादी हो गई है कि नहीं हो गई है।
1: जी मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही।
0: ये बात है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कई औरतें हैं जिनको ना ये बिछिया हो गया, मंगलसूत्र हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, ये
1: टीका
0: हो गया, या फिर सिंदूर हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये सब पसंद नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इन सबको पहनना क्या कुछ लॉजिक है कि मतलब ऐसे लोग फैशन से पहनते थे?
1: नहीं मैम, पहले चीज़ें जो पहनी जाती थी उसके पीछे एक लॉजिक होता था। अगर जो महिलाएं बिछिया पहनती हैं आजकल, तो पहले पहनने का ज़माना था, आजकल सबसे पहले उतार ही दिया जाता है। वो बिछिया की बात करें तो जो बिछिया होती थी वो चांदी की, आपकी बिछिया जो चांद से रिलेट करती है, जो आपके मस्तिष्क को ठंडा रखने में, और जब वो धरती में छूता था और वो पैर आपके पाँव में रहता था, फिर बिछिया आपके पैर से, फिर आपके शरीर में जो एनर्जी जाती थी वो बहुत पॉजिटिव रहती थी माना जाता है। चांदी, आपने सुना होगा चांदी के गिलास में पानी पीना, रिंग धारण करना, बिल्कुल चांद से रिलेटेड, तो उससे महिलाओं के अंदर जो बहुत शांति और उनका दिमाग ठंडा रहता था, मानना है कि वो बहुत स्वस्थ भी रहती थी इन सारी चीज़ों से। कभी कभी हमारे माना गया, हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो नदियों में सिक्का फेंकने की परंपरा थी, तो उसके पीछे एक लॉजिक था। वो सिक्के पानी को साफ करते थे, क्योंकि वहाँ गाय भैंस पशु और हम सब भी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं तीर्थ स्थल पे, तो वहाँ का पानी ज़रूर से ज़रूर पीते हैं। और ऐसे ही बात करते हैं मांग टीके या बिंदी की, तो यहाँ मांग टीका लगाते हैं वहीं हमारा आज्ञा चक्र होता है। वह जब चंदन या कुमकुम का टीका लगाने से दिमाग को ठंडक मिलती है, जो आपके सोचने और समझने की शक्ति होती है सबसे ज़्यादा तो वो बढ़ती है। जब हमारा ध्यान किसी चीज़ में नहीं होता, हमारे राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे युद्ध पे, तो एक टीका लगा के उन्हें भेजा जाता था, तो माना था वो टीका तुम्हारा आज्ञा चक थी, तुम्हारी सारी एक्टिविटी जो अंदर की, ऐसे टीका रखो तो पूरा दिमाग शांत होके जैसे पूरा ध्यान चला जाता है, हाँ हमें ये काम बहुत सशक्त रूप से करना है।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मतलब और मंगलसूत्र का क्या वो था?
1: मंगलसूत्र मैम, जो मंगलसूत्र है ऐसा माना जाता है कि अगर गोल्ड की चीज़ें कहीं आपसे शरीर से बार बार टच हो रही हैं, तो कभी आपको बीपी बढ़ने वाली समस्या नहीं होगी।
0: इसीलिए पहले की महिलाओं का बीपी, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम एंड मानसिक संतुलन उनका सब ठीक रहता था।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और
0: क्योंकि वो हमेशा से कोई ना कोई ऐसा वस्त्र, कोई ना कोई ऐसा आभूषण जो था वो धारण किए रहती थी, कभी मतलब उनके शरीर से कभी बिछिया नहीं हटती थी। पायल का अपना एक महत्व था।
1: जी मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। और अभी आपने हाल ही में ये सारी ब्रेस्ट कैंसर वैंसर की चीज़ें सुनी होंगी, पहले मंगलसूत्र ऐसे आपके हृदय पे रहता था, उससे आपका बीपी और ऐसी समस्याओं से बचाव रहता था।
0: एक्जेक्टली, मतलब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अभी आज निधि, इस चीज़ को तो मैं भी मानती हूँ, एंड कुछ औरतें आज भी पहनती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी इतनी मॉडर्न हो गई हैं।
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल।
0: मुझे लगता है कि जो औरतें जो जॉब में रहती हैं ना, उनको इन सबसे ज़्यादा थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है।
1: जी मैम बिल्कुल, उनका मानना है बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पर मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं हम अपनी संस्कृति भूल जाएँ, अपनी सभ्यता भूल जाएँ। और आपने कभी हमारी देवी देवताओं को देखा है क्या? वो हमसे कितना मॉडर्न होंगे, हमसे कितने पहले आए और अभी भी वो हमसे कितने पहले का जानते हैं।
0: अभी तुम जो दर्शन हर जगह लगाए जाते हैं
1: जी
0: माँ के,
1: जी
0: तुम उसमें उनकी रौनक देखती हो? रौनक मतलब उनकी, उनके चेहरे की रौनक और आभूषणों से लदी हुई। और सोचो अगर ये माँ बिल्कुल सिंपल सी आए, कोई भी गहना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हालांकि वो सुंदर तो लगेंगी, कहने का सेंस केवल यहाँ पर है कि वो आभूषणों से जब पूरा पहनी हुई होती हैं, तो उनकी सुंदरता में 4 नहीं 12 नहीं लाखों चांद लग जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, एक एक एक भाव आता है कि मतलब कितनी सुंदरता मतलब बढ़ जाती है। तो यही स्वरूप एक औरत का भी होता है।
1: जी मैम, और आपने अभी देखा होगा कि अब बाल पे बात कर लेते हैं, खुले बाल ऐसा नहीं माना, खुले बाल माना जाता है कि राक्षस प्रजाति बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, या बुरी शक्तियाँ या निगेटिव चीज़ें, ऐसा माना जाता है। फिर आपने
0: ज्यादा
1: जी आप पे ज्यादा, और

0: आपका दिमाग भी संतुलित नहीं रहता है, आपका दिमाग नहीं जी, मतलब जिन लोग बाल, नो मैम नो, जो बाल छोटे करवा के रखती हैं, आपने देखा होगा जो महिलाएं बाल बांधे रहती हैं, चोटी किए रहती हैं, उनके अंदर ऐसी कोई वो भावना नहीं थी। आपने माँ काली को जब रौद्र रूप,
1: चिड़चिड़ापन नहीं रहता है
0: जी, माँ काली का रौद्र रूप जब देखा होगा तो उनके खुले बालों में ही देखा होगा। और कभी गौरी का रूप आपने देखा है?
1: हाँ।
0: तो उनमें बाल कभी खुले देखे आपने? तो हमारी संस्कृति की यही मान्यता है, जो महिलाएं चोटी किए रहती हैं, बाल बांधे रहती हैं, उनका दिमाग, और हमारे घर में एक ऐसी लड़की चाहिए होती है हमें हमेशा की, जो शांति बनाए रखे, ना कि हमें रौद्र रूप चाहिए।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत ही सही जानकारी अभी हमको आज निधि ने दी है। तो निधि, हम चाहते हैं कि आप ब्रेक ले लेते हैं।
0: जी मैम,
1: और ब्रेक में सुना देंगे एक प्यारा सा भजन। लेकिन आज हमारे भक्तगण पता नहीं कहाँ हैं, वो अपनी अर्जी नहीं दे रहे हैं। तो भाई भक्तगणों से मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी अर्जी लगा दें। और एक स्पेशल बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कल आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रही हूँ, जो कि है रिकॉर्डेड, एंड मैं ही बोलूँगी, बट मेरे साथ है आरजे निधि। बट कल का प्रोग्राम रहेगा चैट बॉक्स से, हम आपकी जो कि रहेंगी आपकी जो सॉन्ग्स होंगे, जो अर्जी होगी, वो हम लोग नहीं ले पाएंगे। कल हम लोगों का प्रोग्राम रिकॉर्डेड रहेगा, कल का प्रोग्राम जो है वो सॉन्ग्स हम लगा देंगे। ऑलरेडी माता के सॉन्ग्स लगे रहेंगे माता जी के, बट हम लोग चैट बॉक्स से सॉन्ग्स को नहीं ले पाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हमको करनी थी। एंड फ्राइडे अगेन एंड अगेन फिर से आपका लाइव प्रोग्राम हमारा सुन सहेली जाने वाला है।
0: जी बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। और आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: हाँ आइए, हमारी पहली अर्जी आ गई है और ये अर्जी है अरविंद जी की तरफ से, तो चलिए सुनते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और नेक्स्ट जो अर्जी है वो मैंने लगा दी है आशु जी की। एंड अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा टॉपिक है कि भाई आज का जैसे विमेन सेंटर प्रोग्राम में जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय चल रहा है नवरात्र, तो नवरात्र के दिनों में महिलाएं कुछ व्रत रख के थक जाती हैं और उनकी एनर्जी को किस तरीके से वापस लाना है ये छोटे से नुस्खों से आज हम आपको बताएंगे। जी निधि
1: जी बिल्कुल मैम, और इस दौरान आप ज़्यादा समय ले लेते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो ऐसा
0: आप पता है निधि कुछ लोग तो ना बिल्कुल सुबह अपने काम में लग जाती हैं, उसके बाद पानी पीने के बाद में उनको लगता है कि अच्छा अभी ये काम कर लें अब दोपहर में इकट्ठा ही खाना खाएंगे।
1: जी मैम बिल्कुल,
0: एसिडिटी बनती है।
1: जी आपने सही कहा, और कुछ लोग तो बस फलाहार पे रहना चाहती हैं। जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है,
0: बिल्कुल
1: आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप केला, सेब, पपीता या दूसरे मौसमी फल, ये नहीं आप केला ही खा रही तो 9 दिन आप केला खा रही, सेब खा रही, जी नहीं, आप अलग अलग फल खाइए। इससे आपके शरीर में ऊर्जा समय पे प्राप्त होती रहेगी। और ये नहीं आपने सुबह, ज़्यादातर होता है मैम कि हम लोग फल कब खाते हैं, सुबह खा लिए, इसके बाद हम लोग सोचते हैं फिर शाम को कुछ खाएंगे। ज़्यादातर महिलाओं की यही दिक्कत होती है, उन्होंने सुबह फल खा लिया, पूरे घर के लिए वो काम करेंगी और करेंगी, पर अपने लिए बस अपने लिए वो नहीं बनाएंगी। पर ये अगर आप सही रहेंगी आपका परिवार सही रहेगा तभी, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार को कौन देगा।
0: एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ में ना अपनी एनर्जी को भी बूस्ट करते रहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप दही खा लीजिए, साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू सिंगाड़े के आटे की पूड़ी, आलू उबाल के, मूंगफली, और भी बहुत सी चीज़ें आप खा सकते हैं जो व्रत में आपके यहाँ खाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कुट्टू के आटे की वो बात होती है, और आलू को उबाल के भून दिया जाता है, तो उसमें आप नमक डाल के खाते हैं, इससे आपका BP लो हाई नहीं होता है।
0: नहीं होता है। और पता है निधि, मैं तो जब व्रत रखती थी ना तो मेरा तो BP लो हो जाता था, तो इसी वजह से फिर हमने बहुत ही मतलब कम रखते हैं व्रत। लेकिन लगता है कि हाँ, मन तो करता है कि रखो, पर लगता है कि जैसे अगर कुछ नहीं खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाने की भी आदत नहीं होती है कुछ लोगों को, तो तुरंत वो अपना आपका क्या करेगा, आपका BP पे असर कर देता है।
1: जी मैम ये असर कर देता है। जैसे हमारे शहर में, हमने तो आपसे कह दिया कि फल खाती हैं, तो चलिए फल से ताल्लुक हमारी शहर की महिलाएं रख लेती हैं। गांव की महिलाएं 1 कप चाय और थोड़े से आलू में अपना पूरा दिन निकाल
0: दिन बिता लेती हैं।
1: जो ये बिल्कुल सही बात नहीं है मैम महिलाओं के लिए, उनकी एनर्जी इतनी डाउन पे चली जाती है, फिर 9 दिन के बाद ऐसा होता है उनकी सेहत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है कि हम नवरात्रि में अच्छा अच्छा खा रहे हैं तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, पर नहीं, आप वैसे नहीं खा रही जैसे आप रोज जिस तरह आप भोजन करती हैं उस तरह नहीं खाती हैं। आपने सुबह पूरा पूर्ण भोजन, आपकी पूरी थाली में सब कुछ रहता है, खाती हैं, उसके बाद दोपहर में भी आपका कुछ मन करता है, और शाम को तो आप कुछ ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल।
1: और नवरात्रि के दौरान आपके खाने में जो अंतराल रहता है उसके तहत आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो आपको मौसमी फल खाने चाहिए, और चाय 1-2 बार सही है, पर ये नहीं आप
0: कि मतलब कंटिन्यू आप चाय पी रहे हैं।
1: जी ज़्यादातर चाय भूख को मार देती है मैम, ये आपको पता होगा। एक कप चाय आप पी लेती हैं, 3-4 घंटे आप बिना कुछ खाए ऐसे ही निकाल देती हैं। जो
0: लिसनर्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कल शायद प्रीति जी का सॉन्ग छूट गया था, उन्होंने अर्जी लगाई थी बट पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमारा शो अगर प्रीति जी सुन रही हैं तो आप भेज सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कल जिनकी अर्जी नहीं हुई थी हम उनकी अर्जी भी लेंगे, तो प्लीज़ आप अगर आपको भेजना है तो आप बिल्कुल भेज सकती हैं। जी
1: हाँ, और इसी के दौरान आपको नींद भी पूरी करनी है, आप माता का जगराता करते रहिए, बिल्कुल करिए 9 दिन, पर आपको भरपूर नींद लेती रहनी है, उससे आप स्वस्थ रहेंगी, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जगराते होते रहेंगे। एक बार की बात है, मैम ने ऐसे ही कुछ कहा था, हमने कहा मैम चलिए जल्दी जल्दी कार्यक्रम होने वाला, कह रही है निधि अगर मैं ठीक रहूँगी पानी पी के तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हम जीवन भर करते रहेंगे। मैम आप ही ने कहा था,
0: बोला था मैंने,
1: मैम कल छात्र परिषद के चुनाव के दौरान याद करिए।
0: हाँ, exactly.
1: मैं बातों को नहीं भूलती हूँ, मैम भूल गई होंगी शायद।
0: तो अंशिका मेरे मुंह में आ रही थी निधि, मैं चाहती हूँ कि और फटाफट एक सॉन्ग हम सुना देते हैं जो कि आशु जी का है, जो मैंने लगा दिया है, ओ मैया सिंगार तेरा लाल है। एंड प्रीति जी अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज आप सॉन्ग को भेजिए। एंड नेक्स्ट सॉन्ग जो हमने प्ले किया हुआ है वो है सुरेंद्र जी का जी, फिर प्रमुख जी का भी बात
1: जी, बिल्कुल मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो एंड प्रमुख जी और सुरेंद्र जी की जो अर्जी थी वो एक ही अर्जी थी और अब मैंने लगा दी है अर्जी, बस एक ही मेरे पास बची थी, वो है महेंद्र जी। तो महेंद्र जी आपका सॉन्ग हम जरूर बजाएंगे, लेकिन उसके पहले आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि आज की हम मॉरल स्टोरी की ओर चलते हैं जो कि स्पेशली महिलाओं पे।
2: जी बिल्कुल। एक बार एक आदमी इस बात से बहुत दुखी था कि उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं। वह भगवान को कोसता हुए मंदिर जा रहा था कि भगवान मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, तुमने मुझे फटे हुए जूते दिए। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे पे पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक भिखारी बैठा था जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। उसे देखते ही उस आदमी का रोना बंद हो गया। उसे समझ आ गया कि जूते फटे होना तो बहुत छोटी बात है, भगवान ने उसे चलने के लिए सलामत पैर तो दिए हैं। उसने तुरंत ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और मंदिर चला गया। मैम, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमारे पास जो है जितना है जी, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। भगवान जानते हैं हमें क्या कब कैसे देना है।
1: एग्जैक्टली। तो आज की स्पेशली ये महिलाओं को समर्पित ये वाली स्टोरी है कि हम महिलाओं में क्या होता है निधि की, हमेशा से ना हम लोग सोचते हैं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, किसी और को देख लेते हैं तो हम लोग तुरंत भावुक हो जाते हैं कि भाई हमको ये भी लेना है ये भी करना है, पर हम कभी ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसमें ही संतुष्ट क्यों नहीं रहे।
2: जी, अक्सर महिलाओं में ये हुआ है, मैम के पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं, ये वाली भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए,
1: पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
2: जी, हो सकता है मैम के पास कुछ ना हो मेरे पास हो और मेरे पास कुछ ऐसा हो जो मैम के पास ना हो।
1: बिल्कुल। तो दोनों बार आपने एक ही बात बोली वैसे, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो निधि के पास नहीं हो वो मेरे पास हो, और ऐसा भी हो सकता है जो मेरे पास नहीं हो वो निधि के पास।
2: जी बिल्कुल,
1: है ना। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो हम दोनों के पास नहीं हो और किसी के पास।
2: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है।
1: तो हमें बिल्कुल भी कभी भी एक दूसरे को देख करके आपको वो भावना नहीं डालनी है कि भाई मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। तो खास करके विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम एंड जो कि अभी हमारा नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, तो उसमें भी हम सभी को यही सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें एक दूसरे को देख करके कोई लालच की भावना या संभावना नहीं रखनी चाहिए।
2: जी मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात कही और हमारे इस भावना की वजह से हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां भी आ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो निधि, हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक में जल्दी जल्दी ब्रेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक सॉन्ग अभी हमारे उसमें है और बहुत देर से मैं चाहती हूँ कि सॉन्ग ये प्ले हो जाए, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट महेंद्र जी की ये अर्जी है और मैं चाहती हूँ कि ये अर्जी उनकी भी हम लोग ले लें। तो महेंद्र जी, आइए सुनते हैं आपकी अर्जी को और हम दोनों लौटेंगे आपसे चर्चा।
2: जी बिल्कुल, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: तो हम मिलेंगे अब कल, यानी कि से अभी कल नहीं, कल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हम चैट बॉक्स से आपकी अर्जियों को कल नहीं ले पाएंगे, यानी कि आपको सॉन्ग्स माता जी के सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो भी आपके प्लेलिस्ट में। तो परसों यानी फ्राइडे को फिर लाइव प्रोग्राम में हम सभी लौट करके आएंगे आपकी अर्जियों को लेने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय माता दी,
1: जय माता दी।
2: पाददशकं देवे महाकालिका यामस्तौ स्वपि देहरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्।

क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0526460।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9819817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
8: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
9: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी।

हां जी, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून. घड़ी में वक्त हो चला है 3:07 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 11.6 एफएम पर. आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनति मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के कॉल ट्यून गोंडा, यानी कि आपके फरमाइशों वाला कार्यक्रम. तो अपनी फरमाइशें करने के लिए बस करना आपको इतना है कि उठाना है अपना फोन, डायल करना है 6393316429. अपनी फरमाइश के साथ साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर बताइए और अपनी फरमाइश को एंजॉय कीजिए मेरे साथ मिल करके 3-4 आपके अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून गोना में. फिलहाल के लिए ट्यून करते हैं हमारी पहली फरमाइश, जो हमारी मुशीब जी की है और वो एंजॉय करना चाहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहारा. मेरी जिंदगी का एंथम गाना है किशोर दा की आवाज में, अंदाज फिल्म से. एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार अगली फरमाइश पर. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.

किशोर दा की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे जिंदगी एक सफर है सुहाना, मशीफ जी की फरमाइश थी। और अगली फरमाइश की ओर बढ़ने से पहले आपके चैट बॉक्स को पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ मैसेजेस आ चुके हैं। अरविंद जी लिख रहे हैं, हेलो मैम, वेलकम बैक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरविंद जी आप बताइए आप कैसे हैं। थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए, और आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोड्डा में। ज़ारा खान जी हमारे साथ जुड़ गई है, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। ज़ारा जी आप बताइए आप कैसी हैं। एंड आज आपने ये कहते कहते कि मैम मेरा गाना जल्दी प्ले करो बहुत लेट में कॉल किया है। एंड महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, गुड आफ्टरनून आर्जुनती मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। और आप बताइए आप कैसे हैं। एंड नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू। ज़ारा जी ने लिखा था, भैया गाना जल्दी बजाओ, जल्दी कॉल भी किया करो ना भैया। इसके बाद लिखा है वृत्ति मैम जी, मैं सुन रहा हूँ लेकिन व्यस्त हूँ, नमस्ते आपको। प्रमुख कुमार जी की तरफ से मैसेज आया है, ऑल राइट, आप इंजॉय करते रहिए। एंड नमस्ते आपको भी, आपका वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। इसके बाद मोहम्मद मशीफ जी का मैसेज है, गुड आफ्टरनून डियर आर्जुनती मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मशीफ जी, आप बताइए आप कैसे हैं। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू नाजिया जी। एंड रति मैम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। नासिफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद से, आपका भी वेलकम करते हैं। गोरिया गोल गप्पे खाने चली, ओ माई गॉड, कौन से खट्टे मीठे तीखे चटपटे हैं, मतलब गोलगप्पों का स्वाद ही अलग होता है। जो कोई कह भी देता है ना कि गोलगप्पे खाने चले हैं तो मुझे टेस्ट आने लग जाता है कि वाई मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं चल रही। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं, गुड आफ्टरनून टू यू पप्पू जी। एंड इसके बाद लगातार आप ही के मैसेजेस हैं। रोशनी रावत जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, उन्नाव से हम भी आ गए, आइए आइए आप आए, रोशनी आई बाहर आई, कैसी हैं आप? एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू रोशनी जी। अरविंद जी का लिखना था, मैम मेरा सॉन्ग डेडिकेटेड रहेगा। भाई डेडिकेटेड गाना हम तब बताएंगे नामों को जब हम आपके गाने को प्ले करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरीबा शेख जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेलो गुड गुड आफ्टरनून मैम, गुड गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है सुनील जी की फरमाइश पर, इतना हसीन चेहरा ये इतनी प्यारी आंखें, इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे आपकी अगली फरमाइश पर। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद्राज उन्नति, और ये है रेडियो 89.6 FM। अपनी फरमाइशें करने के लिए बस 6393316429 पे कॉल कीजिए।

और आप इंजॉय कर रहे थे हमारे सुनील जी की फरमाइश दिलवाले फिल्म से। 1994 में इस गाने को रिलीज किया गया था, समीर साहब के लिखे बोलते, नदीम श्रवण का संगीत, कुमार सानू की आवाज, और फिल्माया गया था अजय देवगन रवीना टंडन पर। बहुत ही प्यारा सा नगमा, और इस नगमे के बाद ओके तो प्रमुख जी का मैसेज आया है, अगर समीर साहब मिल जाए तो इस गाने को लिखने के लिए मैं उनको कुरकुरे खिला दूंगा। ओके ओके ओके, यानी कि 5 वाला 20 वाला वैसे बाय द वे। एंड इसके बाद सुरेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ गौरा चौकी से, आपका भी वेलकम करते हैं। और आपने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मंडा रूपेण संस्था, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। आज चौथा दिन है हमारी, आई थिंक चौथा दिन ही चल रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि भैया मुझे ना सिर्फ इंतज़ार होता है कि कब मूर्तियाँ रखी जाएंगी, कब मैं उन मूर्तियों के पास जाकर के दर्शन कर पाऊँगी, और स्पेशली कब मैं लखा के गाने सुन पाऊँगी, और ये मुझे मिल नहीं रहा है आजकल। थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है, क्योंकि बचपन से हमेशा 9 दिन के लिए माता रानी आती थी, उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी, बट अब ऐसा हो गया कि या तो पंचमी पर रखी जाती है, या तो लोग आखिरी के 2 दिन रखते हैं और उसके बाद हटा देते हैं, और ये हमको बहुत बेकार लगता है, क्योंकि हमको पूरे 9 दिन बहुत ही खूबसूरत दर्शन देखने होते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक मूर्ति देखनी होती है, अलग अलग जगह जाना होता है, और मैं 8वें दिन तो सब जगह नहीं जा सकती ना, तो इसीलिए हो सके तो कहिए अपने आसपास वाले लोगों से कि जरा पंडाल सजाया जाए और हमें बुलाया जाए। एंड इसी के साथ अंबर जी का स्वागत कर लेते हैं, और आपने आते ही कहा है मेरा स्वागत नहीं किया आज। अजी आप दिखे नहीं हमको, तो हमको कैसे पता चलता। फिलहाल आपका स्वागत करते हैं, और अभी हमने कर लिया है आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और अगली फरमाइश आई है देवी प्रसाद जी की, बिन साजन झूला झूलूं। तो देवी प्रसाद जी आप झूला झूलते रहिए कुमार सानू साधना संगम की आवाज में। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारी गुलाब शाह जी की फरमाइश को। स्टे ट्यून्ड।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश थी, बिन साजन छूला छूलू मैं वादा कैसे भूलू। कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में दामिनी फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे समीर साहब के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत। और रही बात इसकी कि मैं उड़ के गगन को छूलू, ये गाना तभी लाइन मिलने सच होती है जब मेरे मुंह के अंदर बहुत टेस्टी खाना होता है, लाइक पानी पूरी होती है, लाइक डोसा होता है, लाइक बिरयानी होती है, चॉकलेट होता है, तभी मेरा मन करता है कि मैं अब जाके उड़ के गगन को छूलू। और जैसे ही मुझे भूख लगती है मैं सारे वादे भूल जाती हूँ। तो आपके साथ ऐसा होता है क्या? भूख लगती है तो रोना आता है, रोना आता है तो गुस्सा आती है, गुस्सा आता है तो और रोना आता है। फिलहाल मेरे साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट हाँ होता रहता है। वेरी नाइस सॉन्ग लिखा है हमारी गुलशन जी ने, थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप लोगों के लगातार मैसेज है, ₹5 वाला कुरकुरा खिलाएंगे समीर साहब को, ठीक है? तो हम आप तक समीर साहब का ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि वो नहीं आने वाले हैं, वो ₹20 का खाएंगे। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास जो है वो है हमारी गुलशन जी की, और गुलशन जी ने फरमाइश की है आज एक तड़कते भड़कते हरियाणवी गाने की। तो आइए इंजॉय करते हैं और देखते हैं भाई इस गाने को सुनने के बाद अब कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि ये गाना है काजल स्पेशल है, तेरी आँखियाँ का यो काजल। और काजल तो मैं लगाती ही नहीं गुलशन जी, इसीलिए माफी चाहूंगी एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को डेडिकेट करने के लिए।

और ये फरमाइश थी हमारी गुलाबशाह जी की, और हमारे आसिफ जी का कहना है कि रेडियो सुन रहे हैं, अस्पताल के बाहर कोई डीजे बज रहा है। फिलहाल आप अस्पताल में क्यों है? क्योंकि आपको बुखार आ गया है। भाई ख्याल रखिए लिसनर्स, आजकल मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते मौसम में हर दूसरा इंसान, हर दूसरा शख्स हमारा परेशान है कि बुखार बहुत हो रहा है, जुकाम बहुत हो रहा है। नहीं करना है बुखार, नहीं होना है जुकाम, कुछ नहीं करना है, अपना ख्याल रखना है। एरिना शर्मा जी आप बताइए, उत्तराखंड की ठंड का क्या हाल है? क्या वहां पे बर्फ गिर रही है? अगर गिर रही है तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के वहां शिफ्ट होने की तैयारी कर लूं क्या? वैसे अगर मैं वहां आ जाऊंगी तो मेरा यहाँ पे शो कौन करेगा? फिलहाल ये बताइएगा जरूर, क्योंकि हमारा बहुत मन है आजकल बर्फबारी देखने का। वो अलग बात है कि बर्फ देखने की चाहत में हमने ओले जरूर देख लिए हैं जो हमको नहीं देखने थे। रीना शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं गोंडा में, यानी कि उत्तराखंड से आपका वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और पेश करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला सॉन्ग सुमित नौटियाल की आवाज में है, अमित कुमार जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते रहिए, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून 99.6 FM रेडियो ज्ञान स्लीपर।

मनोज मुंतशिर के लिखे हुए बोल हैं और बहुत ही प्यारा नगमा या फिर कहें तो बहुत ही प्यारा भजन आप सुन रहे थे हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश पर। जुबिन नौटियाल की आवाज़ है और जो गा रहा है वो भी उत्तराखंड से रहने वाला, मतलब देहरादून का रहने वाला है और ऑफकोर्स बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और हमने पूछा था कि उत्तराखंड का माहौल कैसा है, हमको नहीं बताया गया, लगता है हमको नहीं बुलाने का आइडिया है फिलहाल। कोई बात नहीं दोस्तों, तो हमको रीना शर्मा जी उत्तराखंड में इन्वाइट नहीं कर रही है बर्फबारी देखने के लिए, तब तक के लिए आइए गाने पर ही बढ़ते हैं, गाने को ही इन्जॉय करते हैं। क्योंकि अगली फरमाइश हमारे आसिफ जी की आई है हैदराबाद से और हमने सुना है कि हैदराबाद की बिरयानी भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि हमारे आसिफ जी की शादी तो यहीं होने वाली। कोई बात नहीं, सपना टूटा है तो दिल अभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन चलता है, एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। और क्या बात है, हॉस्पिटल से हमारे पास क्या ही बढ़िया नगमा आया है, बहुत ही प्यारा हाई बीट एनर्जेटिक गाना, से एंजॉय करते रहिए। तबीयत चाहे कैसी भी हो, मूड अच्छा होना चाहिए।

अनुराधापुर बस सुरनियम की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे समीर साहब के लिखे बोल निखिल और विनय का संगीत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश को पूरा करते हैं जो कि हमारे पास आई है राजस्थान से हमारे अपने महेंद्र जी की फरमाइश है और बहुत ही प्यारा रोमांटिक एंड 90s का नगमा उन्होंने आज बोला है प्ले करने के लिए। तो आइए एंजॉय करते हैं कुमार सानू साधना संगम की आवाज में अगेन समीर साहब के लिखे बोल है आनंद मिलिंद का संगीत। एंजॉय करते रहिए दिल पर तेरे प्यार।

और ये फरमाइश थी हमारे महेंद्र दीपन जी की। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंड यहाँ तो भाई रसगुल्ला बटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये बट क्यों रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि हमारे श्रेया यदुवंशी जी की फरमाइश आई है, अक्सर इस दुनिया में धड़कन फिल्म से आप इंजॉय करने चाह रहे हैं। एंड ये गाना डेडिकेट किया गया है महेंद्र जी को, लखनऊ से आप इंजॉय कर रही हैं, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। एंड आपका वेलकम करते हैं श्रेया जी हमारी ज्ञान स्थली रेडियो की फैमिली में, अलका जी की आवाज़ में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर साहब के लिखे बोल।

और ये फरमाइश थी हमारे श्रेया यदुवंशी जी के, लखनऊ से आप एंजॉय कर रही थी, बहुत ही प्यारा सा नगमा था अलका जी की आवाज में। आप बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना है हमारे अरविंद मौर्य जी का, और वो एंजॉय करना चाहते हैं। यार बदलना चाहना मौसम की तरह, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, लेकिन बदलना किस किस को नहीं है ये भी हम आपको बता देते हैं। मुशीब भाई आप मत बदलना, बाबू अंसारी जी आप भी मत बदलना, आसिफ जी आप भी मत बदलना, महेंद्र जी आप भी मत बदलना। और अब बात करते हैं हमारी फीमेल्स की, अरिबा जी, गुलफशा जी, रोशनी जी, धर्मेंद्र भाई आप भी मत बदलना, और मैं भी नहीं बदलूंगी। तो भैया इतने लोगों से हमारे अरविंद जी का कहना है कि यार बदलना जाना मौसम की तरह, समझिए ना।

भाई भले ही बोल हमारे समीर साहब ने लिखे हैं, लेकिन कहना तो अरविंद जी का था कि बदल नहीं जाना, और मैंने जिससे कहा है आप लोग बदलना नहीं, बिल्कुल नहीं बदलना, नहीं तो हमारे अरविंद जी नाराज हो जाएंगे। एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं राज मौर्या जी फ्रॉम गोंडा, और आपने लिखा है कि अनजाने कभी मिल भी सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप हमसे मिले हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारी जारा जी का है, ऐसी वैसी बात नहीं है भाई, और जारा जी ने बहुत रोमांटिक गाने की फरमाइश की है। लेट्स सी आज उनके गाने को कितने लोग पसंद करते हैं। हालांकि मुझे पता है बहुत लोगों को पसंद आने वाला है, और गाने का नाम है तू मेरा जानू है, हीरो फिल्म से अनुराधा जी की आवाज में।

और ये रोमांटिक गाना मुझे लगता है जारा जी ने अपने अपने जीवन साथी को डेडिकेट किया होगा। यहाँ तक हम अपना ख्याल लगा लेते हैं, इसके बाद हमारी जारा जी खुद ही बता देंगी। फिलहाल आइए पेश करते हैं आपके लिए हमारा अगला सॉन्ग। अगला सॉन्ग जो है वो किसी और के नहीं, हमारे पप्पू जी का है। एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश में, जो कि रमेश कुमार जी की है, एंड हर किसी को नहीं मिलता। इसके बाद है हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश एंड निशा की फरमाइश।

और ये स्वैग कोई और नहीं, मुन्ना माइकल बना रहे थे। हम आपको बता दें, कुमार सानू सबिर खान का लिखा हुआ गाना है। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना आपके लिए पेश करते हैं, हर किसी को नहीं मिलता क्या नहीं मिलता, ये वाला गाना नहीं मिलता जो हम ढूंढ के लेकर आए हैं आपके लिए। हमारे महाराष्ट्र से फरमाइश आई है रमेश कुमार जी की, एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे हमारे दो आखिरी के गानों को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और क्या बात है, मैं खुद के लिए तालियां बजाकर आती हूँ जारा जी इसी बात पर।

बात है भाई, अरिजीत सिंह नीति मोहन की आवाज हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंड आपने लिखा है कि आपके हस्बैंड का नाम जीशान है, क्या बात है, मेरे दोस्त का नाम भी जीशान था लेकिन वो अब दोस्त ना रहा मेरा, क्योंकि अब वो मेरा क्लासमेट बन चुका है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और पेश करते हैं हमारा अगला गाना। अगला सॉन्ग है तेरा भवन सजा जिन फूलों से, लखा की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए फूल पौधे। और बहुत ही प्यारा सा भजन है, हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश पर जो कि 90s का है, फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया लेकर के।

और ये फरमाइश थी हमारे सुरेंद्र यादव जी की फ्रॉम गौरा चौकी, और बहुत ही प्यारा सा भजन था। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी गाने की तरफ। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें मैं खो गया, तो इंजॉय करते रहिए। एंड ये फरमाइश है हमारे निशा जी की इसी गाने के साथ। अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए 3 से 4 आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से या फिर एप्लीकेशन से, बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये गाना जाते जाते आप सभी को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है, जिसमें हमारे राजमार्या जी शामिल हैं, इसके अलावा हमारी अरीबा जी शामिल हैं और भी वो लिसनर जो लगातार बने हुए हैं लेकिन फरमाइश नहीं कर पाए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को ये गाना डेडिकेटेड है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। उन्नति मैम, प्यार मिलता नहीं, कमाना पड़ता है, जैसे आप कमा रही हो अपनी ऑडियंस का प्यार। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है ये, और मुझे भी अपनी ऑडियंस से उतना ही प्यार है जितना वो मुझे देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप सभी के मैसेजेस के लिए, आप सभी की तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंजॉय करते रहिए, ख्याल रखिएगा, अब मुलाकात होगी आपसे मेरी परसों, तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हम चलते हैं, बाय बाय बॉस, टाटा, करिए अपना देखभाल। देखा तो मैं हम

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बिलसर रोड, गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: घड़ी ने इशारा कर दिया है और आपके शो यानी कि गोधूली का वक्त हो गया है। भाई, हर शो में हम किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ हाजिर होते हैं जो अपने एरिया के होते हैं एक्सपर्ट, और बहुत सारी बातों के साथ साथ वो अपनी जिंदगी के कुछ किस्से भी हमसे साझा करते हैं। इससे होता कुछ यूं है कि हमको ये पता चलता है कि ये लोग अलग से नहीं आते, हमारे और आपके बीच के ही होते हैं। बस शायद काम करने का तरीका इतना अलग होता है कि कहीं ना कहीं उस एरिया में एक्सपर्ट की तरह हम सभी लोगों के लिए, समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। मगर आज पहली बार मैं इस स्टूडियो से ऐसा कहूंगा कि मैं जिस शख्स के साथ आज बैठा हूं, मैं जमीन के अंदर से और चांद और अंतरिक्ष तक पहुंच गया हूं। वजह धीरे धीरे आपको साफ होती जाएगी कि मैं ऐसा आखिर क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत सच है कि आज जो पर्सनालिटी बैठी हुई है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दरअसल आज हम साथ में बैठे हैं हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर GS श्रीवास्तव सर के साथ। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: ये बहुत बड़ी बात है कि रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में आप आए हैं, और आपका वक्त मिलना, आपसे बातचीत करना, ये हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि अभी तक जिंदगी में आपका जैसा भी सफर रहा उसको आप बता करके आशीर्वचन हम सभी को सौंपे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस प्रोग्राम की, और चलते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि यानी हमारे गेस्ट की तरफ। सर का पूरा नाम हमने बताया, डॉक्टर GS श्रीवास्तव है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI से। सर, हम चाहेंगे कि पहले अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय आप दे दें ताकि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में जान सकें।
2: मेरा जन्म रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ, और मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई, और कालांतर में मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा रायबरेली ज़िले से किया, और उसके बाद फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जियालॉजी विभाग में मैंने एडमिशन लिया। तो मेरा जो ग्रुप था वो जियालॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स था।
1: ओके।
2: तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में नहीं गया और जियोलॉजिस्ट बन गया।
1: ओके सर, आपने ये बताया तो है कि आप जियोलॉजिस्ट बन गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक सफर होगा, मतलब कहीं से तो जिंदगी दिशा देती है, सभी की अपनी अपनी दिशाएं होती है, आपकी क्या रही, कैसे हुआ ये?
2: मैं पढ़ने में अच्छा था, और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और इसलिए मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह मिला और तुरंत ही एडमिशन हो गया। और किसी वजह से केमिस्ट्री में मुझे 75%, उन दिनों इसको कहते थे डिस्टिंक्शन मार्क, तो वो नहीं आ पाए। तो फिर ये हुआ कि केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है और बाकी करेंगे।
1: जैसे हम लोग के साथ होता है कि जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक महसूस होता है इसको छोड़ देते हैं, तो वही आपके साथ भी हुआ।
2: जी।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ सर?
2: और फिर कुछ डेस्टिनी कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, हम लाइन में खड़े हुए थे और एक सज्जन पीछे खड़े हुए थे, तो ऐसे ही बात हो रही थी कि भाई जियोलॉजी और फिजिक्स के साथ में फिर और क्या हो सकता है केमिस्ट्री के अलावा। तो उन्होंने कहा कि स्टेटिस्टिक्स, मैं कहा भाई ये क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये भी गणित जैसा ही है, तो मैंने स्टेटिस्टिक्स लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर मैथमेटिक्स जैसा है तो फिर थोड़ी देर में फिर पूछा मैंने कहा और फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो बोले कि जियालजी होता है। मैंने कहा जियालजी क्या चीज़ है, तो बोले कि पहाड़ वगैरह में आप जा सकते हो। तो जो आई वॉज सो फैसिनेटेड, तो मैंने उसको काट करके जियालजी लिख दिया और पैसा जमा कर दिया। एक बार फीस अगर जमा हो गई तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते
1: जी।
2: और

0: यानी मानचित्र बनाता है
1: जी,
0: जो कि एक दूसरा विभाग है सर्वे ऑफ इंडिया
1: जी,
0: तो वो एक बेस मैप बना के हमें देता है। बेस मैप का मतलब है कि जहाँ पर हाइट और कौन सा क्षेत्र वन से आच्छादित है, कौन सा कृषि से है, कौन सा वगैरह इस तरह का
1: जी।
0: लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसी मैप पर भूविज्ञान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता
1: है। सर, जहां तक हमने भी सुना है इस डिपार्टमेंट में होता ही है कि आप जमीन के नीचे बहुत सारी चीजों को निकालते हैं, खोजते हैं। कॉमन मैन ने कभी आपसे कहा नहीं कि कभी आपने खुदाई की हो, सोना वगैरह निकल आया हो?
0: नहीं, इस तरह का होता है कि जब हम लोग मैप करते हैं
1: जी,
0: तो ये नहीं रहता कि यहाँ क्या मिलेगा
1: जी।
0: फिर हम वो मान लीजिए चट्टान हमने देखी
1: जी,
0: तो उसकी जब एनालिसिस होती तो मालूम होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए उन दिनों काफी अन्न का संकट था और खाद वगैरह की बात हो रही थी, तो ये हुआ कि हम लोग फास्फोराइट ढूंढे
1: जी।
0: तो किसी राख में गए, किट वगैरह रहते हैं, तो वहां से पहले सैंपल लिया जिसमें रहता है कि हाँ इसमें फास्फोराइट है, तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसकी उसका मानचित्रण होता है और फिर वो बनता है। इस तरह से मसूरी फास्फेट करके एक नई कंपनी खोली गई थी आजकल उत्तरांचल कहलाता है, उन दिनों उत्तराखंड था
1: जी,
0: तो वहां पर हुआ। तो इसी तरह के और भी बातचीतें होती रहती हैं। सोना भी किसी कई नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं, तो लोग उसको हम लोग प्लेसर गोल्ड बोलते हैं, यानी कि बालू छानते जाइए
1: जी जी
0: तो छोटे मोटे कण मिल जाएंगे, कई बार कोई लकी होते हैं तो बड़ा कण भी
1: बड़ा
0: मिल जाता है। तो इस तरह के भी बहुत सारे, जैसे पन्ना में भी ऐसी संभावना है
1: जी,
0: तो पन्ना में भी लोग ऐसा खोदते रहते हैं और छनाई करते रहते हैं, तो उसमें हीरा वगैरह मिलता है पन्ना में, जबकि और जगहों पर सोना मिलता है।
1: ओके सर, सभी के साथ होता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं या साइट पे जाते हैं तो कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं
0: जी जी,
1: तो हम चाहेंगे कि जो भी आपके लिहाज से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हो जो आज भी आपको याद हो, प्लीज हमारे श्रोताओं से बताइए।
0: मैं ओएनजीसी में था इसके पहले
1: जी,
0: तो ओएनजीसी का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उन दिनों यही नाम था। तो जो तेल और गैस की खोज करता है, तो शुरुआत के 2 साल हम वहीं थे गुजरात में पोस्टेड, और अंकलेश्वर फील्ड नया हुआ था
1: जी,
0: तो वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कुएं में आग लग गई,
1: अरे,
0: और वो बड़ा मुश्किल काम है कि उसको, लपटें चल रही है, मई का महीना। बहरहाल पहला काम होता है कि हम मानचित्र बनाएं, तो हम लोगों ने दूर से फिर उसका धीरे धीरे करके चारों तरफ का मानचित्र बनाया, और फिर एक जगह ढूंढा कि यहाँ से तिरछा अगर होल करें तो मुख्य होल में वो मिल जाएगा और इस तरह से शायद कंट्रोल हो जाए। तो फिर ऐसा ही किया गया, 2 दिन में ये काम भी पूरा कर लिया गया और वो चल रही लपटें। फिर ये देखा गया कि बीच बीच में लपट उठती है, फिर कम हो जाती, फिर उठती है कम, तो इसका अंदाजा लगा करके जब कम हुई तो उसी समय एकदम से उसके अंदर मड, पानी, ये सब चीज़ें एक साथ ही अंदर भेजी गई मशीनों के द्वारा
1: जी।
0: तो जब वहाँ पहुँचे तो सडनली वो आग भक से बुझ गई, और जब वो बुझ गई तो इसको कंट्रोल कर लिया गया उसमें वाल्व लगा करके, और अब दोनों कंट्रोल हमारे पास थे और सब लोग बड़े खुश, मतलब जुबिलियंट थे, एकदम नाच रहे थे कि हम लोगों ने जंग जीत लिया।
1: सही बात, मतलब जहां तक अभी हमने कई बार न्यूज में देखा है, इवन रोड पे चलते टैंकर्स हादसे का शिकार हो जाते, मुझे लगता है कि आपके करियर में और आपके डिपार्टमेंट में सबसे भयावह स्थिति यही होती है
0: जी जी,
1: कहीं अचानक से इस तरह की घटना हो जाना
0: जी। मैंने बहुत सारी इस तरह की घटनाएं और संस्मरण अपनी किताब पेजेस फ्रॉम डायरी ऑफ ए जियोलॉजिस्ट में संकलित किया है। अगर जो बच्चे, जो छात्र इसमें रुचि रखते हों वो जा सकते हैं। ये टाटा मैग्रा हिल ने इसको पब्लिश किया है, आप अगर अमेज़न में जाएंगे तो मिल सकता है।
1: बिल्कुल। तो सर ने जैसा कि हमने कहा था ना कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। देखिए अब जमीन से हम लोग शुरू कर चुके हैं, सर ने अपना ONGC का एक्सपीरियंस हमसे साझा किया है और अभी हम नासा तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी बीच का और सफर है। सो सर ने बताया है कि बुक अगर जो भी

0: बच्चे जो भी स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो इस बुक को पढ़ें, उनके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपने बताया कि ऑनलाइन अमेज़न पे भी अवेलेबल है
1: जी,
0: ये बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे सर की लिखी हुई बुक आप तक पहुंच जाएगी। सर ONGC में आप थे
1: जी,
0: GSI में आए
1: जी,
0: ये ट्रांजिशन कैसे और क्यों?
1: GSI में मैं एक UPSC द्वारा एक एग्जाम होता है, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन
0: जी,
1: तो जो बच्चे जियोलॉजी में MSc कर लेते हैं वो इस इम्तहान में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, और आजकल बहुत जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो बैठ सकते हैं, और फिर वो जब उनका चुनाव हो जाता है फाइनली तो फिर वो एज ए गजटेड ऑफिसर Class 2, Class 1 हो जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे कि और जगहों पर भी है कि IAS या एलाइड सर्विसेज के लोग वो शुरुआत में Class 1 लेवल से शुरू करते हैं, फिर सीनियर जूनियर एंड सो ऑन।
0: ओके, तो इस तरह से आपका ये ट्रांजिशन रहा। कभी आपने सोचा नहीं कि आपके इस जॉब नेचर की वजह से आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई?
1: मुझे कुछ इंटरेस्ट था कि बाहर घूमना और जाना, और मुझे कभी बर्डन सब नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि इस बहाने हम भारत के हर किसी कोने में जा सकते हैं। और मेरी बहुत जगह पोस्टिंग रही, लाइक हैदराबाद, जयपुर और साउथ में, तो इस तरह से मैं ज़्यादातर एसोसिएटेड रहा कि मैं ट्रेनिंग देता था। विकास, शुरुआत में मैं जब 4-6 साल JNK में काम किया, पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू कश्मीर में हुई।
0: क्या बात है।
1: और एक्सपीडिशन बेसिस पर हम लोग जाते थे
0: जी,
1: तो उसमें लगता था कि 6 महीने आप अपने घर से दूर हैं और कोई संपर्क का साधन नहीं, सिर्फ चिट्ठी पत्री द्वारा होता था। और हमारा एक डाक रनर लाता था
0: जी,
1: एक बार जाता था 3 दिन वापस आता था, फिर एक दिन स्टे करता था, उन दिनों 2 रुपए उसकी प्रतिदिन की मजदूरी होती थी।
0: अच्छा।
1: तो मैं कभी अपनी पत्नी को लिखता था कि तुम्हारा एक ही चिट्ठी आई है और ये सरकार को 14 रुपए पड़े हैं इस काम के लिए।
0: सही बात है, वो मतलब दौर क्या था, आज तो हम कुछ भी होता है व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, और बहुत सारे ऐसे अब तो माध्यम हो गए हैं इंटरनेट के जरिए, लेकिन आपके दौर में बड़ा चैलेंजिंग था।
1: बहुत अच्छा,
0: लेकिन कहीं ना कहीं मैं सच कहूं तो बड़ा फैसिनेटिंग सोच के लगता है कि वो दौर भी बड़ा फीलिंगफुल था।
1: जी जी,
0: वो इंतजार का मजा जिसे कहते हैं।
1: जी जी।
0: तो सर अभी आपने कहा कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कई कई जगहों पे हुई, कोई ऐसी जगह की कोई बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है, वो जगह, वो प्लेस, वो स्टेट, कुछ भी ऐसा शहर जहां आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा जुड़ी और बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस रहा वहां का?
1: मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 4-5 साल जब वहां इस तरह से किए, बहुत सारी उसमें घटनाएं मैं जिक्र कर सकता हूँ। जो दूसरी बुक है हमारी उसमें बहुत सारे इस तरह के संस्मरण हैं।
0: सर दूसरी बुक का नाम?
1: नहीं, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एलिमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एक हमने टेक्स्ट बुक लिखी है
0: जी जी,
1: तो वो MSc लेवल के बच्चों के लिए है
0: जी।
1: और मैं पढ़ाता भी चूंकि रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस में
0: जी,
1: तो कुछ उसमें भी है। और एक और बुक है जो थोड़ा अलग से है, वो हिंदी में है और हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियां अवधि में।
0: तो सुनने में ही बिलीव नहीं हो पा रहा है, कहां हम इतनी बड़ी बुक्स साइंस पर बेस्ड देख रहे हैं और कहां आप बता रहे अवधि में, ये क्या क्या कैसे क्या हुआ?
1: तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मुहावरे, आजकल के बच्चे शायद इस बात को नहीं समझेंगे, बट बहुत छोटे में कोई बात कह दी जाती है और उसका मर्म समझ में आ जाता है बिना किसी और को, तो उसको मुहावरा बोलते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मान लो ये कहा जाए कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा,
0: आंगन टेढ़ा,
1: तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि सब लोग समझ जाएं कि हाँ इनको कोई खास पता नहीं है, ये नखरे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
0: सही बात है।
1: तो ये बजाय डिस्क्राइब करने के छोटी सी बात में हो गया। और इसी तरह लोकोक्तियों में थोड़ा बहुत ज्ञान की बात भी रहती है, जैसे कि हमारे एक घाघ कवि हुआ करते थे जिनको कि मौसम के बारे में बहुत ज्ञान था, तो उनके बहुत सारे इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं कि जैसे जब भुइलोट चले पुरवाई तब जान्यो बरखा ऋतु आई, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की हवा होनी चाहिए, 80% 90% ह्यूमिडिटी, और पूरब से हमको मानसून मिलता है, हमको मतलब अवध प्रांत या आसपास, क्योंकि पहले मानसून तो साउथ वेस्ट से आता है, तो वो बर्मा तक जाके वापस टर्न करता है, तो फिर पहले बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता है, तो पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, तो तब हमको इस तरह से। तो वो कहते हैं कि भूइनलोट का मतलब है कि जमीन से थोड़ा बिल्कुल ऐसा लगे कि धूल उठा रही है, यानी कि बहुत मॉइस्चर है, और उसके बाद फिर पूरब से हवा चलेगी तो समझो कि बारिश है, जो बहुत सही है मौसम विज्ञान की वजह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
0: सर मतलब ये कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि ये एक अवधि लोकोक्ति है और उसके अलावा साइंटिफिक बात है इसमें।
1: जी जी जी बहुत,
0: मतलब परफेक्ट यही होता ही है ऐसा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसमें जो बुक में बहुत सारे इस तरह के हैं, मैंने उसका तब ये भी लिखा कि ये मुहावरा है या ये लोकोक्ति है और इसका क्या मतलब है। बात यह कि और दूसरे लोग हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में समझते हैं, अवधि वाले तो अवध प्रांत के ही लोग समझेंगे, जैसे गोंडा रायबरेली वगैरह।
0: जी जी।
1: तो और लोग के लिए हिंदी में फिर उसका हमने विवेचना किया कि इसका ये मतलब है, और फिर साइंटिफिकली उसको जोड़ा कि जो मौसम विज्ञानी है उसकी निगाह से इसका क्या मतलब है। तो बहुत बहुत अच्छा है। हमारे जो पुराने लोग थे, जो अनुभवी थे
0: जी,
1: वो सचमुच बहुत ज्ञानी थे,
0: बहुत ज्ञानी थे
1: जी, ऐसा कहा जाएगा
0: बिल्कुल। तो सर ये बुक ये कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अवध के
1: ये, ये, ये प्रभात प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है
0: जी,
1: और ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है।
0: क्या बात है सर। किस नाम से आपने बताया, अवधि के मुहावरे एवं लोकोक्ति।
1: हाँ,
0: और आपका नाम।
1: जी जी।
0: By Dr. G.S. श्रीवास्तव।
1: हाँ, हाँ,
0: क्या बात है, Amazon से आप मुझे लगता है ये मैं बुक लेने वाला हूँ पक्का, क्योंकि
1: जी, जी,
0: इस बेल्ट का मैं भी हूँ
1: जी,
0: और इस वक्त आपको सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग
1: जी,
0: इस बात के लिए कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि अवधि जिस भाषा को हम आज भी बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं
1: जी जी,
0: बहुत पहले आपने इस पे एक बुक लिख दी।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत सर करबद्ध निमन आपको सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सर हम अगर आगे बढ़े तो बहुत सारी बातें तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं इसमें, और वापस से आते हैं, क्योंकि हमने कहा ना सर ने जमीन से आसमान तक का सफर किया है, तो जमीन की बात हमने की, अब हम चलेंगे बादल से होते हुए आसमान की तरफ, यानी नासा के साथ आपने जो काम किया है, इंडिया से बाहर आप गए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, फिर वापस से आप क्यों इंडिया आए इसकी भी वजह हम जरूर जानना चाहेंगे, और कैसी रही आप आज अपनी जिंदगी को पूरी अगर उठा कर देखते हैं तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, सारी बात हम करने वाले हैं बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562। ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जी, तो एक बार वापस से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के शाम के शो गोधुली में, आपके अपने आरजे अतनान। और आज हमने बताया, हमारे साथ आज डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जी एस श्रीवास्तव सर हैं, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। सर, हम बातचीत कर रहे थे लगातार और आपने बताया किस तरह आपकी पैदाइश रायबरेली में हुई, कैसे केमिस्ट्री में कम नंबर आने की वजह से, कुछ नया पैटर्न होने की वजह से आपकी, मतलब कह सकते हैं, डेस्टिनी वहां से बदली। आज जो कुछ भी है आप, वो उस दिन की घटना बहुत बड़ी जिम्मेदार है और उसके बाद इतना सब कुछ हुआ। अभी हमने श्रोताओं से बताया था कि सीबीएसई में भी आपका काफी योगदान रहा है और सर आपने नासा के साथ काम किया। सर, इसको हम जरूर आपसे प्लीज अब जानना चाहेंगे।
1: तो मैं जब 5-6 साल जम्मू कश्मीर में काम कर चुके, तो एक बार मुझे बस ये हुआ कि हमको डिप्यूट कर दिया गया कि आप जाइए इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, उन दिनों आईपीआई कहलाता था, देहरादून में
0: जी।
1: तो फिर वहाँ वहाँ भेजा गया और ये नीदरलैंड्स सरकार से पोषित था और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कभी नीदरलैंड गए तो उस समय एक प्रोफेसर स्कर्मर हॉर्न, जो कि इसी विधा के ज्ञाता थे, वो इंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और उनसे फिर जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जो विकसित होने हो रहे हैं देश, उनके लिए बहुत अच्छा है
0: जी।
1: इस तरह से आईपीआई की स्थापना हुई। तो मैं वहाँ जब गया तो अपने बैच में मैंने उस वहाँ पर भी बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन दिनों फेलोशिप नहीं हुआ करती थी। तो फिर ये हुआ कि वो लोग कह रहे थे कि आप इसी में ही आ जाइए एज ए प्रोफेसर, लेकिन मैं जीएसआई छोड़ नहीं सकता था, मुझे बड़ा लगाव था कि ये हमारा पुराना पेरेंट डिपार्टमेंट है।
0: सही बात।
1: तो फिर वहाँ पर जब तक अभी हो रहा था तो पता चला कि नहीं, 5 साल के लिए फिर से कुछ फेलोशिप शुरू हो गई, तो मुझे फेलोशिप मिली। तो मैं नीदरलैंड्स के लिए 1 साल की फेलोशिप पर चला गया और वहाँ पर इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है एम्स्टरडेम के पास में, तो वहाँ पर हम लोग ये हो गए। और फिर नया इंस्टीट्यूट एक एंस्केडे करके जगह है जो जर्मन बॉर्डर पर है
0: जी,
1: तो नए इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुँच गए और वहीं पर फिर मैंने पूरा ये काम किया। एक नासा का प्रोजेक्ट था जो स्काई लैब से संबंधित था और उसका डेटा हम एनालाइज कर रहे थे कि जो फोटो से आता है या जो डिजिटल डेटा है, वो दोनों पर मैंने काम किया और वो बहुत अच्छा काम था। और मेरा फील्ड वर्क स्पेन में था, तो हमारे प्रोफेसर हमारे साथ गए और बहुत जगह पर घूमते रहे और उनका आखिर में कमेंट था बराबर में, वो पूछते थे मैं कहाँ हूँ, मैं बताता यहाँ, वो ऐसे पूछते रहे। तो आखिर में एक जगह पर उन्होंने कहा कि आपको किसने जियोलॉजिस्ट बनाया तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा ना हो कि तो कुछ गलती हुई,
0: गलती तो नहीं होगी
1: हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड हैव बीन नेविगेटर, यानी कि आप किसी एयर कंपनी में नेविगेटर हो सकते हैं क्योंकि लोकेशन एक बार भी गलत नहीं हुई,
0: नहीं हो रही।
1: तो हमने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पहला काम यही बताया जाता है कि आप कहाँ पर हैं,
0: कहाँ पर
1: मैप पर।
0: वाओ।
1: तो बहरहाल दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस तरह से फिर मैंने साल भर वहाँ काम किया और तब तक एक अपने देश में करीब करीब 74 की बात है तो एक एटम बम यहाँ पहला पोखरण वाला हुआ
0: जी जी जी,
1: जिस पर कि पूरे यूरोप में प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी कि आपके पास खाने का नहीं है और आप एटम बम क्यों बना रहे हैं। तो मैं सिवाय इसके कहने के कि हम तो शांति कार्य के लिए इसको कर रहे हैं, ये एटम बम नहीं है, हम बिजली बनाने के उद्देश्य से इसको हम विकसित कर रहे हैं, जैसे कि भाभा, आपको याद होगा भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये काम पहले से शुरू हो रहा था और हमें वो परमाणु कार्यक्रम इसी बात के लिए था कि हम आगे चल करके बिजली बनाएंगे, लेकिन वो किसी के गले उतरी नहीं, बहरहाल काफ़ी फजीहत रही और तो लेकिन उसके बाद सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जब आगे चल के आर्यभट्ट 1975 में आर्यभट्ट गया पहला सैटेलाइट
0: जी,
1: तो फिर उन लोगों ने बहुत इसको प्रशंसा किया कि भारतीय काफ़ी होशियार हैं और बिना किसी की मदद के, सिवाय इसके कि हमने रशियन कॉस्मोड्रोन से इसको छोड़ा था, बाकी टेक्नोलॉजी हमारी थी, तो उससे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि नहीं आप अब यहीं आ जाइए और हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हो जाइए। बट मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने देश में वापस जाऊंगा, क्योंकि ये जो ज्ञान हमने अर्जित किया है इसको हम इस काम में अपने देश के कार्य में लगाएंगे। तो फिर मैं इस तरह से वापस आ गया।
0: मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, ज्यादातर यूरोप कंट्रीज के नाम पर है, पर अगर उनको करने वालों को देखे तो इंडिया से कई लोग गए,
1: बहुत गए, बहुत गए।
0: और ऐसे ही एक आपको भी ऑफर दिया गया
1: जी,
0: कि आप उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, जहां से मैंने सीखा और ये ज्ञान अगर हमें अपने ही देश में लगाया जाए तो बहुत अच्छा। सर ये देशभक्ति वैसे एक शब्द तो है, बोला तो जाता है बहुत अलग अलग तरह से।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे जानना चाहिए। और उन लोगों ने फिर बाद में जब मेरी थीसिस सबमिट हो गई तो हमारे प्रोफेसर का और जो रेक्टर वहाँ, यानी कि आप कुलपति कह सकते हैं
0: जी,
1: तो उनका ये रिमार्क था कि ये थीसिस आईटीसी को $1 मिलियन लाएगी।
0: ओके।
1: यानी क्योंकि वो नासा का प्रोजेक्ट था और $1 मिलियन में वो हो रहा, जबकि हम लोगों को 800 गिल्डर मिलते थे। गिल्डर का मतलब उन दिनों 4 रुपए या 4.5 रुपए होता था
0: जी,
1: लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि इस बहाने हमको सीखने को मिला और एक नया ज्ञान मिला, और इसलिए हमको इस काम को अपने देश में के विकास में इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
0: वाह, क्या बात है। मतलब आपने पहले सीखा और आपने फिर सोचा कि भाई इस ज्ञान को क्यों ना फिर अपने ही कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी भलाई के लिए। सर बहुत बड़ी बात है, नासा तक हम पहुंच गए, फिर आप वापस से आए
1: जी
0: इंडिया और GSI में आए आप, लेकिन साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। और इवन हम बता दें कि रिटायर होने के बावजूद आज भी आप
1: जी
0: ऐसी खिदमत कर रहे हैं, आप कॉलेजेस में जाते हैं।
1: उसमें इस तरह से हुआ कि UGC से मैं काफी संबंधित रहा
0: जी,
1: क्योंकि वो उनकी जो बहुत सारी ग्रांट्स वगैरह आती थी तो उनको इवेल्युएट करने के लिए, स्पेशली जियालजी वाली जो मामला रहता था तो उसमें मैं जानने लगा, तो मेरा इवेल्युएशन काफ़ी ठीक ठाक रहता था। इस वजह से उन्होंने हमको करीब करीब पकड़ लिया और फिर ये कहा कि बहुत सारे वीमेंस हॉस्टल के लिए ग्रांट्स चाहिए होता है
0: जी,
1: और आप जाइए। तो पहली बार मैं उड़ीसा गया और वहाँ काफ़ी अंदर, बिल्कुल उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पर गया
0: जी।
1: तो लोगों ने जो वहाँ के प्रोफेसरान थे कि बाकी जो UGC के आते हैं वो लोग तो यहीं से बैठ के देख लेते, मैं कहा नहीं मैं तो वहाँ तक जाऊँगा और वहीं देखूँगा। तो फिर उन लोगों को भी सबको जाना पड़ा और वहाँ गए और यथा योग्य जो हमको लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो मैंने उसमें किया, और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और कई बार पत्रकार लोग आके बताते थे कि साहब यहाँ वो धांधली हुई फलाना, मैं कहा मैंने धांधली के विवेचना के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मुख्य बात यही देखना है कि हॉस्टल है कि नहीं और उसमें अच्छे से बाथरूम वगैरह ये सब हैं कि नहीं, और अगर पूरा है तो हम तुरंत अगला ग्रांट दे देते जो करोड़ों में होता था। लेकिन मैंने कभी, कई बार लोगों ने इस तरह का कुछ किया कि यहीं बैठ के कर लीजिए और हम लोग सब आपका सब साधन और कुसाधन मुहैया करा देंगे।
0: जैसे कहा जाता
1: हाँ, मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए,
0: क्या बात,
1: और आप कतई नहीं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, बस अगर सब सही है तो मैं तुरंत ग्रांट कर दूंगा। तो इसी तरह से मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो गया और जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण की, और आप लोगों को याद होगा कि एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी कि जो छात्र दे रहा है इम्तहान वो इम्तहान लेने वाले से अच्छा है, और उनको 100 नंबर में 101 नंबर दिए गए। ये प्रतिभा राजेंद्र प्रसाद की थी
0: जी।
1: तो जब वहाँ पर हॉस्टल में गए तो हमने देखा कि कमरा वैसा ही है, तो पूरी टीम ने, ऑफ कोर्स उस समय मैं चेयरमैन नहीं था UGC कमेटी का, कोई और थे बट मेंबर था, तो हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि हम लोग 200 करोड़ की ग्रांट देंगे और इनको कहेंगे कि ये पूरा हॉस्टल रिनोवेट किया जाए, और सचमुच ही इस तरह हुआ। बहुत, फिर इस तरह से वेस्ट बंगाल में भी बहुत जगह गए, बिहार में गए, किशनगंज वगैरह बहुत इंटीरियर इलाके में, वहाँ भी इसी तरह के थे कि भाई यहाँ साथ में कोई टाइप करेगा, कोई ये करेगा। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाई हैंड लिख लेता हूँ और फाइनल रिपोर्ट उसी दिन दूंगा। जब एक फाइनल डिनर होता था, कुलपति देते थे
0: जी,
1: तो उसी में मैं दे देता था। इसके पहले किसी को भनक नहीं लगती थी कि क्या उसमें
0: इवैल्यूएट किया।
1: हाँ, और बहुत सारे लोग इस तरह के प्रलोभन रहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा मैं किसी प्रलोभन में नहीं आया।
0: क्या बात है, मतलब ये कहते हैं ना कि हर शख्स अगर अपना काम ईमानदारी से करे,
1: जी जी जी,
0: उससे ज्यादा बड़ी देशभक्ति और राष्ट्रहित में कोई चीज नहीं होती। कि आप जिस पोजीशन, जिस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
0: बहुत प्यारी बात सर, मतलब ये बात जान करके, क्योंकि इससे पहले हुई बात में ये बात सामने नहीं आई थी।
1: जी जी,
0: अभी आपने बताया तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है। सर, आप GSI में भी वर्क कर चुके हैं, ONGC में भी, NASA के लिए भी एक प्रोजेक्ट में आप गए थे, इतनी सारी चीजों को किया। आज का भी सिनारियो आप देख रहे हैं, जमाना बहुत बदला है।
1: जी
0: तब से
1: जी, बहुत।
0: आप एक स्टूडेंट लाइफ भी जी चुके हैं, अब जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहें?
1: मैं तो ये कहूंगा ऑल द बेस्ट, क्योंकि देखिए बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। हमारे अपने टाइम के अपने गुण दोष थे, कम्युनिकेशन नहीं था, चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी, टेलीफोन बहुत कम लोगों के पास था वगैरह। फिर धीरे धीरे क्रांति आती गई, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिर सब चीज़ें मुहैया हो गई। लेकिन मैं ये छात्रों को कहूँगा कि प्लीज़ अपने ऊपर टेक्नोलॉजी हावी ना होने दें, आप जो है अपने खुद के मालिक रहे। इससे जो हम अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, गूगल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी के साथ बहुत ख़राब चीज़ें भी हैं। तो कृपया अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और हताश मत होइए। पहली बात, हमारे बच्चे आजकल बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, और जो कि उसका एक कारण है कि आप किसी से शेयर नहीं करते, और माँ बाप को कई बार फुर्सत नहीं रहती, दोनों कमा रहे होते हैं, कहीं दोस्तों कोई अच्छे दोस्त नहीं होते जिनसे आप शेयर करें। तो मेरा कहना है कि कई दोस्त बनाइए, कई अपने माँ बाप से शेयर करिए, और ऐसा मत समझिए कि फेल्योर का मतलब है कि आप लटक जाएं फंदे में, ये बिल्कुल गलत बात है। आप हताश मत होइए और अच्छी अच्छी बातें गूगल से लीजिए और अपने ऊपर हावी ना होने दें, ऐसा मेरा कहना है।
0: बहुत प्यारी बात, जैसे आपकी जो बातचीत है उसमें मैंने भी एक बात निकाली कि आप नासा तक जैसी संस्थान के साथ काम कर चुके हैं जिनके लिए हम सिर्फ पढ़ते हैं, और इसके बावजूद आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हावी ना होने दें। फिर मुझे आपका वो पार्ट याद आता है, अवधि के मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो इतना बढ़िया फ्लेवर है इस जिंदगी का आपकी, इतना अच्छा टेक्सचर मिल रहा है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ लिटरेचर है, तीसरी तरफ अपने देश के लिए आप वापस भी आए, अपनी फैमिली के लिए आपने डिसीजंस लिए। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ के जो अलग अलग आयाम थे, आस्पेक्ट्स थे, सभी को आपने अपना 100% देने की कोशिश की। मतलब सभी रोल में आप नजर आए, एक पिता के रोल में भी, एक पति के रोल में भी। क्या बात है, बहुत प्यारी बात सर। चूंकि अब तो बस लगभग समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा कि डॉक्टर GS श्रीवास्तव सर की जो जिंदगी है, अगर मैं कहूं कि उनके मूल्य हैं जिंदगी के अपने, तो वो क्या है?
1: मैं समझता हूं कि आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करिए, ईमानदारी से करिए, और ईश्वर हमेशा आपकी हेल्प करता है। अगर आपके अंदर कोई और किसी तरह का, आप फोकस्ड रहिए अपने काम के प्रति और ईमानदार रहिए, बस ये दो मूल मंत्र जो हैं वो आपको बहुत दूर ले जाएंगे। हमारे बच्चों में भी शायद ये बातें आई हैं, वो लोग भी बहुत अपराइट हैं, और
0: क्या बात,
1: कोई दाएं बाएं कोई नहीं कर सकता
0: नहीं कर सकते,
1: और इसलिए वो बड़े बड़े ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं ईश्वर की कृपा।
0: बिल्कुल, कहते भी हैं कि असर होता है, और जब परवरिश इतनी बेहतरीन हो तो साफ नजर आता है। और बड़ी ही प्यारी आपने बात कही कि ईमानदार रहे और फोकस्ड रहे, ये चीज उनको लाइफ में हर वो चीज देगी जो उन्होंने सोचा है, और उससे बढ़कर भी देगी जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं है। बहुत प्यारी बात कही सर। बात करने को कई दिन आपसे अगर मैं करूं तो सच कहूं वो भी कम पड़ जाएंगे
2: जी,
0: क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। बस जितनी बातें हमने की मुझे लगता है हमारे श्रोताओं तक साफ तौर पर पहुंच चुकी हैं, और कहीं ना कहीं हमारा बातचीत का अंश ये था कि अगर आज के युवा कोशिश करते हैं, आप रायबरेली जैसे बहुत छोटे से शहर से निकले और आप नासा के प्रोजेक्ट तक साथ में काम करने गए, आप इतने बड़े डेजिग्नेशन पे भी रहते हुए ना आप अपनी चीजों को भूले, आप जमीन से जुड़े रहे, आप साहित्य से जुड़े रहे, आप अपनी जिंदगी के मूल्यों से जुड़े रहे, और आज आपके बच्चों में भी वो चीज आ रही है, तो मैं कहूंगा कि सर आपने एक सफल जिंदगी जी है। और शायद आज जब आप वापस मुड़कर देखते हैं पूरे सफर को तो कहीं ना कहीं एक दिल में सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है। और मुझे लगता है एक लाइफ के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता कि जब मुड़कर देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मिले।
1: जी धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच सर। और हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि भाई आपको ये आज का टॉक शो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए। डॉक्टर जीएस श्रीवास्तव सर से हमने बातचीत की, जो कि बताया आपको कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड रह चुके हैं GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और एक बार वापस से हम अपने तरफ से इस पूरे FM स्टूडियो के तरफ से और साथ ही साथ गोंडा की तरफ से लिसनर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। सो दोस्तों जैसा भी लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं, और हाँ सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: पशु में

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 9.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9816-9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018-935-94 और 8072-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन
1: और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
9: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
10: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ipbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
11: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान

हवा में अगरबत्ती की खुशबू, ये सब एकजुट होकर हमें हमारी दुर्गा माँ से जोड़ने का काम करते हैं। चाहे माँ की भावनाओं से जुड़ने की बात हो, चाहे हमारा आत्मीय प्रेम हो, माँ का हर रूप हमें हर समय ऊर्जा देता है। जब भी आप खुद को अकेला पाते हैं, माँ पास में बैठकर हमें साहस बढ़ाती है। ना सिर्फ साहस बढ़ाती है हमारा, अपितु हमें अपनी छवि के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करती है।

माँ दुर्गा के पहले अध्याय का दिन है और मैं आज आप लोग के समक्ष चमनलाल भारद्वाज की किताब से काव्य रूप में सप्शती का अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कुछ ही देर में हम लोग शुरू करेंगे अंताक्षरी, लेकिन आज की अंताक्षरी भी पूरी डिवोशनल वाइब से भरी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर भी वो ऊर्जा बरकरार है और ध्यान से सुनिएगा।

तो अभी कुछ ही मिनटों में आज मैं शुरू कर दूंगी आज की पहले अध्याय की जो कड़ी है, जिसे काव्य रूप में जो सप्शति में 13 अध्याय दिए हैं उन्हीं पूरे 13 अध्यायों को हम लोग हर संध्या में एक एक दो दो अध्याय करके पूर्ण करेंगे और वो काव्य रूप में होगा जो सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले जैसे कहते हैं ना कि श्री गणेश करना चाहिए, तो मैं आज अपनी आवाज़ में नहीं लेकिन हाँ आज एक प्यारे से गीत के साथ वंदना शुरू करते हैं। आई होप आप सभी इस गीत को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे।

तो बस इसी ऊर्जा के साथ चलिए आरंभ करते हैं अध्याय को, और जल्दी से इस अध्याय को सुनने के बाद हम अंताक्षरी की ओर रुख करेंगे, और जिसकी शुरुआत हो चुकी थी

जब भी पृथ्वी पे पाप बढ़ता है, किसी भी तरह की आपदा आती है, तो माँ दुर्गा अपने रूप अनेक धारण करके उस पाप को दूर करती है। तो पहले अध्याय की शुरुआत कुछ इस प्रकार है।

बखाना, संत सुनई लावे निज ध्याना, सवरा चुप नामक मनवंतर, सूरत नाम राजा जग भर में, राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई, राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा, सचिवन बाट्यो सभी खजाना, राजन मम मर्म ये वन में जाना, सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा, भटकत आयो एक

विचारा, करमन वश पायो दुख भारा, रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विध नामो हे भयो विपरीता, निज दिन रहू विपिन भय भीता, देव करोगे कबहु सहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई, सोचत सोच रहो भुलावा, आयो वैश एक तेही काला, तिन राजा को कीन प्रणामा, वैद्य समाद कहो।

वैश्य कष्ट मन कह सब डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन ले ओ धन संपत्ति मोरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खाकर आए, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन तब त्यागे, सब दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हर दम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीच का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल ऐसा। चलो दोनों दुखिया मनु ऋषि आश्रम आए, चरण सिर नाव वे वचन सुनाए।

कर किया है, छीन लिया है धन सर्वस्व जो होगा, किया खाने तक से भी बेबस हो जो। ये मन में जो क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है,

तो ये आत्म का ज्ञान क्या था? ये दोनों राजाओं को बताने के लिए, एक वैश्य और एक राजा को बताने के लिए, मेधा ऋषि ने अपने प्राचीन, कहते ना कि इतिहास को उकेरा। जब भी हमें कोई एग्जाम्पल्स देने होते हैं उसके लिए हम अपने, कहते ना, प्राचीन इतिहास में जाते हैं। तो इतिहास में जाने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाग जाइए और उठ जाइए और अपनी जो भक्ति भावना है उसको जगाते हुए चलिए हम लोग भी डांडिया की ओर बढ़ते हैं। और इसका अंश जो है इस गाने के बाद आपको सुनाती हूँ मैं, और तब तक के लिए आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा, ठीक है? और जितने लोग अंताक्षरी के लिए रेडी हो चुके हैं फटाफट से चैट रूम में आ जाएं। कुछ ही देर में, जैसे ही आप लोग, मतलब लड़के लड़कियों की दोनों की टीम आ जाएगी, हम लोग शुरू कर देंगे अंताक्षरी। अभी तो मुझे लड़कों की टीम से अरविंद दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग जहां जहां जैसे जैसे बैठे हैं उठ जाएं फटाफट से, और देखते हैं नवरात्रि में आप लोग का रंग कैसा जमता है। और आज के लिए आपके पास छूट है, आप किसी भी तरह का देवी भजन गीत यूज़ कर सकते हैं अंताक्षरी में। एंड यस, एन्जॉयमेंट होगा फुल बीट्स पे, क्योंकि हम सुनने जा रहे हैं ये गाना आपके रिक्वेस्ट।

आखिर मुनि ने क्या बताया? आखिर ऐसा कौन सा भेद है जो मुनि बताने जा रहे हैं?

ज्ञानियों के मन में हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। ये शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंस जाती है।

इसी प्रकार जब भगवान विष्णु निद्रा में थे तो उस समय उनके कानों से मैल, कहते ना कि जो था उससे दुष्ट जन्म लिए, और फिर उनका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को जगाया जाने लगा, क्योंकि उनकी आंखों में निद्रा रूप में भगवानी माता जी थी। तो उनको जगाने के लिए बड़ी स्तुतियां की गईं, और फिर भगवान विष्णु जन्मे तो बहुत क्रोध में आ गए और उनके शरीर से शक्ति निकली, और वो शक्ति माँ दुर्गा का रूप बनी, और उसी के साथ साथ सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक किया और माँ दुर्गा का रूप बनाया। फिर माँ दुर्गा की शक्ति से भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के साथ कई हजारों साल तक युद्ध किया, पर वो दोनों भगवान से ही जन्मे थे, भगवान के अंश थे, तो इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं था। भगवान के अंश हैं तो ऑब्वियसली शक्तिशाली भी होंगे। तो महामाया ने उन दोनों दैत्यों को, जो मन को, वो क्या किया, भरमा दिया। जैसे कहा ना अभी कि चाहे बेटा कितना भी माँ बाप को परेशान करे, लेकिन माँ बाप के अंदर उनके लिए क्या होती है, ममता ही होती है। तो वैसे ही माता रानी ने उनके मनों को भरमा दिया, और भरमाने के साथ ही वो लोग अहंकार में आके भगवान विष्णु से बोले कि एक काम करिए, आपसे, आपके युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, मांगिए कुछ। तो भगवान विष्णु ने भी फायदा उठाया और कहा कि ठीक है, मुझसे खुश हो तो मेरे हाथों से मर जाओ। अब वचन दे चुके थे, आजकल की तरह थोड़े ना कि वचन देने के बाद भूल जाएं। तो तुरंत ही ये जो कहते ना कि स्थिति थी, ये चेंज हो गई। उन्होंने भी थोड़ी सी चालाकी दिखाई दोनों दैत्यों ने, और कहा कि अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो देखिए चारों तरफ जल है, ऐसी जगह मुझे मारिएगा जहाँ जल ना हो। उन्हें लगा कि जल कहीं होगा ही नहीं, सब जगह तो जल ही है। तो भगवान विष्णु ने दोनों को अपनी जांघों पर लिटाया और उनका खात्मा कर दिया। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हुआ, और दूसरा अध्याय जो है उसके बारे में कल बात करेंगे, उसके बारे में कल बताऊंगी, क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग की अंताक्षरी भी शुरू करनी है। और शुभ संध्या, और बहुत खूबसूरत, मतलब ये मैंने बचपन में पढ़ना शुरू किया था और मेरे पास पुस्तक रखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, आप लोग भी मतलब कुछ नई चीज़ें सुने, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन हमें कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी लिगेसी को बरकरार रखना चाहिए। तो जल्दी से उठ जाइए लड़के लड़कियों की टीम, और सबसे पहला जो लेटर मैं देने वाली हूँ लड़कों की टीम को देने वाली हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा का तो टाइम ही चल रहा है, तो देखते हैं वो लोग माँ से आके क्या गाना गाते हैं। तो लड़कों के लिए शब्द है, देखते कौन कॉल करता है। वैसे कॉल कोई भी टीम कर सकती है, लेकिन गाना आपको माँ से ही गाना है। तो चलिए हम लोग भी इस शाम को रंगीला बनाते हैं इस प्यारे से गाने के साथ।

0: तो इस गाने को अभी सुनते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पहले आवाज देखते हैं किसकी है, किसकी टीम से कौन है। हेलो,
1: हेलो मैम, जय माता दी।
0: जय माता दी, कैसी हैं आप आशु जी? आपकी आवाज पहचान पा रही हूँ अभी फिलहाल, कहाँ आप विराजमान हैं?
1: मैं तो लखनऊ में ही हूँ।
0: तो माँ से क्या गाएंगी आज?
1: मैम माता रानी को परेशान सुनाऊंगी।
0: वाह क्या बात है, मतलब पूरी डिवोशनल अंताक्षरी होने वाली है, स्वागत है।
1: माता पे कट हो दूर संकट हो, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी, हम पे भी हो जाए तेरी मेहरबानी, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी खूबसूरत सी जो कहते हैं ना कि शुरुआत की है, आई होप आगे ये जो अंताक्षरी और मज़ेदार होगी। ना से आपने दिया है लेटर, चलिए देखते हैं कौन गाता है। तो चलिए आशु जी ने गाना गा दिया है और ना से अक्षर दे दिया, देखते हैं कौन गाता है। और हम गाना सुन रहे थे चलिए, लेकिन गाने के पहले ही कॉल और आ चुका है, लगता है किसी लड़के या लड़कियों की टीम से कोई है। हेलो,
2: हेलो,
0: गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
2: अविनाश।
0: सो अविनाश, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। त्रिपुरा से आप हमें सुन रहे हैं।
2: जी।
0: आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजे बीना, आपके फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 एफएम पर, और मैं चाहती हूँ ना से आप गाना सुनाएं।
2: जी ठीक है, सुना देते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं करो जरा, नहीं नहीं अभी नहीं करो जरा, इंतजार थोड़ा इंतजार।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना आपने ढूंढ के बहुत पुराना गाना सुनाया और लिरिक्स थोड़ी ऊपर नीचे थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू।
2: अंताक्षरी के लिए काम चल जाएगा।
0: यस यस ऑफ कोर्स। तो चलिए, हमारे अविनाश जी ने त्रिपुरा से कॉल किया और देखिए लड़कों की टीम आज मजबूत होती नजर आ रही है। और गाना था नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार, ये दिल बेकरार, कुछ ऐसा करके मुझे भी नहीं लिरिक्स याद है। वेल चलिए, फर्स्ट राउंड में कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन हाँ मैं अभी इस बार ये डिस्क्लोज कर देती हूँ कि आप गाना बीच से नहीं गाएंगे, गाने की शुरुआत जो है, मुखड़ा जो है वो लेटर से होना चाहिए। ये से नहीं कि मतलब आपने किसी गाने का स्टेंजा उठाया और वो लेटर से हो, इसके लिए आपके पॉइंट्स कट जाएंगे, ठीक है? तो ये मुझे आइडिया मेरी पिछली दो टीमों ने ही दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको एम्प्लाई करना चाहिए। चलिए सुनते हैं गाना फ्रॉम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, और गाना देखते हैं कौन गाता है। फिलहाल एक और कॉल वापस से आता नजर आ रहा है, देखते हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, अगेन आपकी आवाज़ मुझे सुनने को मिल रही है अविनाश।
2: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ, र से गाना गाना है, आप ही ने अपना लेटर छोड़ा है और आप खुद ही गाने आ गए हैं।
2: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गा देते हैं। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। जी
0: क्या बात है, और सुनाया ना जाएगा,
2: और सुनाना है तो आप बोलिए।
0: नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, रीकॉल आपको करना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू। तो अविनाश ने फिर से अपनी टीम के लिए कॉल कर दिया है, और भाई ये क्या मतलब देख रही हूँ मैं। तेज नारायण जी ने कहा है कि हाँ ये उनकी भाषा में अगर देखें तो हमारी जो कहते हैं ना कि दुर्गा सप्शती है संस्कृत में, उसमें है, लेकिन ये जो अनुवाद है ये काव्य रूप में एक लेखक हुए हैं, बड़े अच्छे लेखक थे, चमनलाल भारद्वाज, उनकी एक किताब है जो कि ज़्यादातर दिखती नहीं बाज़ार में, पर हाँ उन्होंने इसे काव्य रूप में किया है और सरलता से किसी को भी समझ में आ सकती है और कम समय में इंसान इसको पूर्ण कर सकता है। तो चलिए अगला कॉल देखते हैं किसका है। हेलो
3: हेलो मैम, गीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग गीता जी, स्वागत है आपका, कैसी हैं? सबसे पहले जय माता दी, नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। तो ये बताइए ग से गाना सुनाना है आपको।
3: किससे मैम?
0: ग से।
3: ग से मेरा नाम ही, ग से गीता।
0: हाँ ग से।
3: जी मैम
0: क्या
3: गोरी
0: करें,
3: गोरी गोरी गोरी
0: क्या करे, कोइंसिडेंस हो गया
3: जी मैम। गा रहे गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तू मिला करो प्यारी प्यारी भक्ति भक्ति किया करो पर यू ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी।
0: जी हाँ, जैसे आप मुझसे मिलती हैं 89.6 FM पे, ऐसे किसी और से मत मिलेगा। थैंक यू
3: मैम। कोई भी और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, केवल मौका मिलता तो आप पे आते हैं, नहीं तो फिर काम में रहते।
0: क्या बात है, थैंक यू,
3: थैंक यू मैम।
0: यू ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। ओहो, ऐसा कोई मतलब अगर डेडलाइन दे दे तो क्या हो, क्या बात है। गीता जी ने एकदम मजे ला दिए। और चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका होने वाला है। और आज तो लग रहा है कि सब एकदम फॉर्म में हैं और आज कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाला। हेलो
4: हेलो
0: हेलो, वापस अविनाश। अविनाश आज त्रिपुरा से पूरी मतलब एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और वह से गाना सुनाना है आपको। क्या बात है।
4: मैं तो देखिए 7:15 तक हूँ, उसके बाद तो अब मेरे दायित्व, उसके बाद मैं दूसरे किसी को ऊपर छोड़ने चला जाऊंगा। क्योंकि
0: अपने उत्तराधिकारियों को बोल के जाइए, आपके जाने के बाद कौन संभालता है आपका साम्राज्य।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किससे गाना है?
0: व से।
4: व से,
0: व व व से वाणी, व से।
4: अच्छा हाँ ठीक है। बंगला गाड़ी झुमके
0: बनी व व व से विष्णु। व
4: विष्णु हाँ, तो बस ही तो बंगला। देखिए बस आता है ना,
0: ब से बंगला, लेकिन विष्णु ब से होता है। व व व व से वक।
4: अच्छा वाह।
0: वी फॉर वैन। व व व से बहुत गाने हैं।
4: वो कौन है, तेरा नाम क्या, ये गाना होगा
0: शुरू। ये वैसे ही होता है ना
4: जी।
0: स्वागत है।
4: वो कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली तेरा नाम क्या, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूंगा नहीं तो बच्चे तू निकल ले, ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सच में अक्षय लग रहे हैं आज। फॉर्म में है, क्या बात है। चलिए अब अगले कॉल को मौका देते हैं। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। श से गाना सुनाने के लिए कौन है हमारे साथ? हेलो
5: मैम,
0: गुड इवनिंग अगेन, स्वागत है आपका। अशु जी, श से गाना सुनाना है आपको।
5: चा से मैम।
0: श श से शलगम। अक्षय अक्षय श श
5: से। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है।
0: क्या बात है, ये ख्याल मेरे मन में भी आ जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्या गाना है। हेलो
4: हेलो
0: अविनाश जी, आज मतलब अपना पूरा मोर्चा उठा के बैठे हैं। चलिए सुना दीजिए ह से गाना।
4: ह से ठीक है, सुना देते हैं। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर, कैसी दूरियां कैसे फासले।
0: क्या बात, थैंक यू। तो अविनाश ने ल छोड़ा है और ल से गाने के लिए देखते हैं लड़कियों से कौन आता है। हेलो
6: हेलो मैम,
0: गीता जी ला
6: ला से गाना। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले से ली अब कसमें हमारी खाएंगे।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए अगले कॉल को मौका देते हैं, कौन आ रहा है गह से गाने के लिए और आवाज़ सुनते हैं। हेलो
7: हेलो
0: हेलो,
7: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, आपका नाम?
7: निशा।
0: निशा कैसी हैं आप, आपकी आवाज़ का स्वागत है। और निशा ने
7: स्वागत है, लेकिन
0: गाना है बताइए। गाना है जी,
7: गोरी है कलैया सहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया,
0: अपना बना ले
7: मुझे बानवा। गोरी है कलैया,
0: क्या बात है,
7: सहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बानवा। गोरी है कलैया काली है कलैया बस।
0: ओके थैंक यू। तो चलिए अगले कॉल को भी मौका देते हैं, मतलब बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं। हेलो
8: हेलो हेलो मैम।
0: हेलो, गुड इवनिंग। लड़कियों की टीम ने तो आज एकदम रंग जमा रखा है, एंड फाइनली हमारी अगली कंटेस्टेंट प्रीति जी बन के आ गई हैं। क्या बात है प्रीति जी, स्वागत है पहले तो। जय माता
8: दी।
0: तो आपको गाना सुनाना है, यह से गोरी है कलाइया जी। या

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ, लेटर छोड़ा है हमारी प्रीति जी ने। और इसी के साथ लड़कियों की टीम के पॉइंट यार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लड़कों की टीम थोड़ा सा स्लो है। हेलो,
1: हाँ जी, कौन सा गाना है?
0: हाँ से गाना है, हाँ से।
1: अच्छा, हाँ से
0: जी।
1: हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम।
0: दुनिया चाहे बदलती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सा गाना आपने सुना दिया। शाम बन गई हम लोग की। तो अविनाश जी ने गाना सुना दिया और इस राउंड को अभी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अब हम शुरू करते हैं अगला राउंड, यानी कि वर्ड राउंड, एक गाने के ब्रेक के बाद। और उस गाने के बाद मैं वर्ड राउंड जो शुरू करूँगी, वर्ड्स इस बार मैं खुद दूंगी। मतलब हर बार क्या होता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अभी के लिए इस राउंड पर हम लोग लगाते हैं विराम। अगला गाना सुनिए और शुरू करते हैं अभी की शाम। और देखते हैं अभी कौन सा गाना हम लोग सुनने वाले हैं। वैसे तो अगर बात करूँ, नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो हाई बीट्स गाने ही हम लोग सुन रहे हैं। और चलिए अगला गाना ये आप सभी के लिए, आई होप आप सभी को मज़ा आ जाएगा सुनने के बाद।

तो इतना अच्छा सा गाना सुनने के बाद आप लोग के मन में तो भाव आ ही रहे होंगे कि आज आरजे बीना इतने सुंदर सुंदर गाने क्यों सुना रही, क्योंकि आज आप लोग भी अपने फॉर्म में है ना, और ऐसे फॉर्म में है कि हर इंसान एक नए रिदम के साथ आ रहा है। तो पहला जो शब्द है वो है धुन, और वो शब्द है लड़कों की टीम के लिए। गुड इवनिंग दीपक, कैसे हैं, स्वागत है आपका। तो धुन से गाना सुनाएंगे लड़के, जिसको भी आता है जल्दी से कॉल करें और अपना गाना हमारे नाम करें।

0: तो चलिए अब फाइनली किसी का
1: हेलो।
0: कॉल आ चुका है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग।
1: राहुल बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से।
0: ओह गुड इवनिंग राहुल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप राजस्थान से सुन रहे हैं।
1: मैंने
0: आपका
1: अभी अंताक्षरी 2 नहीं किया। मैम, मेरे को कुछ आपके नियम रेगुलेशन मतलब कैसे क्या होता वो कुछ मालूम नहीं है। मैंने पहली बार ही कॉल किया आज।
0: ओके, पहले तो वेलकम है आपका, और वेलकम के साथ साथ आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भी है। आपकी चॉइस का गाना इसके बाद प्ले करूंगी मैं। तो अभी अंताक्षरी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, जो कि लेटर राउंड था। लेटर जिस गाने का लेटर जिस लास्ट लेटर से गाना खत्म होता है, उससे नेक्स्ट टीम को गाना था। फिलहाल लड़कों की टीम से आपने कॉल किया है, लड़कियों की टीम को मैंने अभी शब्द दिया नहीं है। तो अभी वर्ड राउंड चल रहा है, तो आपको धुन से गाना सुनाना है लड़कों की टीम के लिए।
1: मतलब धुन सा मतलब समझा नहीं, कोई
0: धुन
1: ट्यून?
0: धुन मतलब शब्द, जैसे गाने में धुन शब्द आए, जैसे दिल आता
1: अच्छा
0: है, दिल ने दे ये दिया है दिल तुमको, ऐसे करके
1: अच्छा
0: धुन शब्द आपके लिरिक्स में होना चाहिए।
1: अच्छा ठीक है। धुन से अच्छा, बीच में कहीं भी आना चाहिए ना।
0: हाँ हाँ बीच में कहीं भी।
1: ठीक है। सुन सुन सुन बरसात की धुन, सुन बिजली कड़की लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट गए हम, सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन। जी मैम।
0: क्या बात है, और आपने एकदम सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाना सुना दिया। थैंक यू सो मच। एंड चलिए
1: थैंक
0: आपकी
1: यू।
0: टीम को
1: नेक्स्ट
0: आप
1: में, नेक्स्ट राउंड में क्या करना है मैम?
0: अभी ये वर्ड जो है मैं नेक्स्ट टीम को भी दूंगी, यानी कि गर्ल्स की टीम को। और ये राउंड 6 6 टाइम्स मतलब चलेगा, मतलब टोटल 6 बार शब्द दिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो राउंड है वो 1 मिनट राउंड है। 1 मिनट में दोनों ही टीमों के एक एक कंटेस्टेंट को कॉल करना होगा। 1 मिनट में जिसकी टीम मैक्सिमम गाने गाएगी ऑब्वियसली उसकी टीम जीत जाएगी। और अभी इस गाने को गाने के लिए आपको 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं। थैंक यू। वैसे राहुल ने तो गाना अपना बताया ही नहीं, लेकिन चलिए राहुल के लिए मैं गाना खुद ही प्ले कर दूंगी। अभी लड़कों की टीम के हो जाते हैं 260 पॉइंट्स, नॉट बैड। अब लड़कियों की टीम को देना चाहती हूँ मैं वर्ड, और शब्द है घूमर। घूमर से गाना आपको सुनाना है, एंड यस चलिए देखते हैं कौन सुनाता है। तब तक के लिए मेरी तरफ से गाना सुन लेते हैं राहुल के लिए, और देखते हैं ये गाना राहुल को पसंद आता है कि नहीं।

तो चलिए सुनते हैं राहुल मीना के लिए ये प्यारा सा गाना जो हमें झुंझुनू से सुन रहे हैं राजस्थान से। एंड लड़कियों की टीम के लिए शब्द है घूमर। आप कॉल करिए, आपकी टीम इंतज़ार करिए। गुड इवनिंग सविता, कैसे हैं आप?

0: चलिए देखते हैं अभी लड़कियों की टीम से किसने कॉल किया है। हेलो
1: हेलो हेलो मैम।
0: प्रीति जी स्वागत है। घूमर
1: जी मैम। कनक प्रीति के सर पे उड़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, फूलल किली पर सब जग के छोड़ घूमर घूमर घूमे, घूमर घूमर घूमे।
0: चलिए आपने एक टफ सॉन्ग सुनाया और थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू। तो चलिए अब लड़कों की टीम की तरफ चलते हैं। लड़कियों की टीम ने भी गाना सुना दिया है। अगला जो शब्द है कवाली, आपके गाने में कवाली शब्द आना चाहिए। लड़कों की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कवाली शब्द से जो भी गाना हो आप सुना सकते हैं, जो जहाँ जहाँ से सुन रहा है, त्रिपुरा, शिमला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, मुंबई, जहाँ जहाँ से, मालदीव से भी लोग सुनते हैं। हमारे एक लिसनर है जो अभी गए हुए हैं, तो सभी का स्वागत है। नहीं, मलेशिया गए, मैं सॉरी मालदीव बता रही हूँ, मलेशिया गए हुए हैं। और बाकी सारे लिसनर्स के लिए भी है कि जो लड़कों की टीम से है वो अगर कवाली शब्द से गाना जानता है तो वो फटाफट से कॉल करें। और अभी हम लोग एक डेडिकेटेड सॉन्ग सुन रहे थे, लेट्स एन्जॉय इट।

0: लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना।
1: भाई लड़कों की टीम ने कव्वाली शब्द से गाना नहीं गाया है तो उनका वर्ड जो है अब पास नहीं होगा। मैं लड़कियों की टीम को मौका दूंगी, अब लड़कों का कॉल भी आएगा तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लड़कियों की टीम के लिए जो शब्द है वो है, ध्यान से सुनिए, रंगीला। आपके गाने में रंगीला वर्ड आना चाहिए और आपको सुनाना है। दीपक जी, चैट रूम में गाना लिखने से आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा और अगर आप गाना सुनाएंगे तभी आपको पॉइंट मिलेगा। लिखते हैं दीपक की, जगत जननी माँ जगदम्बा इस पावन 9 दिनों में एक दिन हमें अपनी जननी के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जननी स्वयं ही उस जगत जननी माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए देखते हैं रंगीला शब्द किसके गाने में आता है। कॉल भी आ चुका है, लड़कियाँ एकदम फास्ट चल रही हैं। हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते और स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी।
2: मैं गोड़ा से बात कर रही हूँ, अभी फिलहाल लखनऊ से अभी आई हूँ।
1: सविता जी,
2: गोड़ा में ही हूँ मैं। सविता जी,
1: सविता जी शुभ संध्या। आपको रंगीला शब्द से गाना गाना है
2: तो मैं शुरू करूँ?
1: जी जी जी, स्वागत है।
2: याई रे जोर लगा के ना चोरी, चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रंग रंगीला।
1: क्या बात है। एंड इसी के साथ लड़कियों की टीम आगे बढ़ते और जीतने की कगार पे महसूस हो रही है और अब आ जाता है टीम ए का, मतलब जो पॉइंट्स देने का टाइम। और लड़कियों की टीम के 360 पॉइंट हो चुके हैं और लड़कों की जो टीम है वो अभी बहुत स्लो चल रही है क्योंकि वो गाना नहीं गा रहे हैं। तो अगला शब्द है लड़कों के लिए धड़कन। धड़कन से गाना सुनाने के लिए चलिए देखते हैं अभी कौन जो है ना आने वाला है हमारे सामने। फिलहाल चलिए इस गाने के साथ इंतजार करते हैं लड़कों की टीम की आवाज़ का। जी हाँ, एक गाने का वेट करती हूँ मैं। गीता जी, इस गाने के दौरान वो कॉल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टीम की बारी आ जाती है। शब्द है धड़कन। और मुझे लग रहा लड़कों की टीम ने भी थोड़ा सा एनर्जी बना लिया और कॉल देखते हैं किसका है। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: गुड इवनिंग। या गुड,
3: राहुल बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग मैम।
1: ओके राहुल जी, स्वागत है आपका वापस से। अभी आपको धड़कन से गाना सुनाना है।
3: जी मैम, ठीक है, करते हैं।

0: आंसू से कहते हो कहते हो। जी मैम।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: लेकिन मैम आपने कव्वाली शब्द दिया था ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। ऐसे थोड़े वर्ड, कई यूनिक वर्ड होते हैं जिन पे गाने गाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उस पे क्या गाए उस पे?
1: अगर आप ट्राई करते तो आपको गाने, आपके जो चैट रूम में अभी मुझे लग रहा है आपने चैट रूम इंस्टॉल नहीं किया, आप ही के टीम के दो तीन लड़कों ने बताया था कव्वाली शब्द से गाना, तो आप चैट रूम में चेक करेंगे। हाँ, उन्होंने गाया नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच राहुल, और अगले वर्ड का इंतज़ार करें। तो चलिए अगला शब्द लड़कियों के लिए जो है वो है, ध्यान से सुनिएगा, ज़रा देर ना करिएगा और जल्दबाजी भी मत करिएगा, शब्द थोड़ा अलग है। जलेबी से गाना सुनाना है लड़कियों को, जलेबी से गाना आता है तो जल्दी से सुनाइए। हाँ, ये बात तो सही लिखी गीता जी ने कि राहुल ने गाना बहुत अच्छा गाया, सो स्वीट, और मतलब बहुत अदाकारी के साथ गाया आपने, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जलेबी से गाना गाने के लिए, मुझे लग रहा है लड़कियों की टीम से कोई कॉल भी करा, लेकिन कॉल आई थिंक सो डिसकनेक्ट हो चुका है। दोबारा से इंतज़ार करते हैं कॉल का, और ये गाना आप लोग के लिए, लेट्स एंजॉय।

0: हेलो, ओ माय गॉड, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम,
0: अगेन आपका स्वागत है। प्रीति जी, गाना आपको गाना है जलेबी से।
1: जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, सब पूछते मुझसे तू कौन देश से आई, नाम क्या? जलेबी बाई, हा हा जलेबी बाई।
0: क्या बात है, मुझे तो लगा आप गाएंगे अफगान जलेबी माजूक परे भी।
1: नहीं मैम, ये फंक्शन में हुआ था तो मैं याद था जलेबी भाई वाला।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जलेबी से भी गाना बन चुका है और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनसे आप लोग गा सकते हैं, जलेबी, फेविकोल, आलू। फिलहाल चलिए, लड़कियों की टीम के पॉइंट्स लगातार बढ़ते हुए इसी के साथ लड़कियां हो जाती हैं 420, यानी कि 420 ही करने के लिए इनके पॉइंट्स भी 420 हो जाते हैं। अगला जो शब्द है लड़कों की टीम के, ये लास्ट शब्द होगा, इसके बाद आपका 1 मिनट राउंड शुरू हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो है इश्क। लड़कों की टीम को मैंने एक आसान सा शब्द दिया है, इश्क, और इश्क से गाने अपरंपार हैं। चलिए देखते हैं कौन सा गाना गाते हैं लड़कों की टीम के मेंबर्स। अभी के लिए ये गाना आप लोग के लिए।

0: तो चलिए देखते हैं लड़कों की टीम से कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, एंड आपका नाम?
1: अमित कुमार।
0: अमित, ये वेंसडे आज जाने वाला था लेकिन आपने पकड़ लिया और अपनी जो अटेंडेंस है वो लगा दी सही टाइम से। आपको इश्क से गाना सुनाना है।
1: मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं।
0: इतने से पॉइंट्स कैसे मिलेगा आपको? कोशिश करिए, इश्क से तो बहुत सारे गाने हैं।
1: मैं याद सुना रहा हूँ। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच अमित, बरकरार रहिएगा, आपके बिना आपकी टीम अधूरी है। तो लड़कों की टीम से अमित ने आके अपनी जो प्रेजेंस है वो बना ली और पॉइंट्स भी दिला दिए, और अब ये राउंड यहीं पे समाप्त होता है। और ये गाना आप लोग सुन लीजिए और इसके बाद एक मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो भी टीम मतलब चाहे वो पहले कॉल कर सकती है, और एक मिनट में आपको मैक्स टू मैक्स गाने गाने होंगे। तो एक मिनट वाले राउंड के लिए दोनों ही टीमें, वैसे लड़कियाँ तो बहुत तगड़ा तैयार होंगी, लड़कों की बात करें तो लड़कों की टीम में हमें दिख रहे हैं राहुल, हमें दिख रहे हैं अविनाश, हमें दिख रहे हैं अमित, और हमें चैट रूम में तो बहुत सारे लोग दिख रहे थे, दीपक हैं, दीपक के साथ साथ हमारे लिसनर कौन कौन है, अरविंद जी हैं, बहुत दादा जी हैं, तेज नारायण जी हैं, लेकिन कॉल करने वालों की थोड़ी कमी थी। लेकिन चलिए ये गाना सुन लीजिए, एक मिनट राउंड के लिए आप लोग खुद को तैयार कर लीजिए।

0: तो चलिए एक मिनट राउंड के लिए देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो हेलो हेलो जी आशु जी, आज आपने कॉल लगा ही दिया है टाइम से, तो चलिए अगर आपकी अनुमति है तो आपका टाइमर शुरू कर दें। एक मिनट के टाइम के लिए आपका जो टाइमर है वो शुरू होता है और देखते हैं कि आप अपनी टीम को जिताने के लिए कितने पॉइंट्स अर्न करती हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
1: कहो ना प्यार है ना तुम जाने नाम हमको, हमी से चुरा लो अखियां खुली होया हो बन प्यार किया है तुम्हें से, बोले चूड़ियां सुगा छुआ मरियम कभी खुशी कभी गम, डोला रे डोला बेरी पिया कोई मिल गया एक लड़की को देख तू मचा ले तुम, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना आशिक बनाया कजरा रे भीड़ी गले रे ये इसके हाये तेरे मस्त मस्त दो मैं इन्हीं बदनाम हुई पानी दार रंग देख के फूल फूल कहीं बन जाए ना अंगारा फूल मांगू ना बहार मांगू पारो फूल बरसाओ फूल आहिस्ता के कोई फूलों की रानी तूने दिल मेरा तोड़ा इस लड़की को देखा ले जाएंगे यशोमती मैया से मैया रे माई रे माई दुनिया बनाने वाले चले दुनिया से दूर हाय हाय मजबूरी वादा ना
0: स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप 30 31 32 33 34 35 36 37 38 गाने आपने गाए, क्या बात है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने गा गा के अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। आने वाले समय में ऐसा ना 60 सेकंड में 60 गाने आप लोग गा दें। थैंक यू। तो भाई लड़कियों की टीम ने 380 पॉइंट कमा लिए हैं। अब देखते हैं लड़कों की टीम से कौन आता है दावेदार बन के और अपनी टीम को दिलाता है ढेर सारे पॉइंट्स। 420 में हम जोड़ देते हैं 380 पॉइंट और आपको पता है हो जाते हैं 437 यानी कि 800 पॉइंट। क्या कहने। तो लड़कियों के 800 पॉइंट्स हो चुके हैं, अभी बारी है लड़कों की टीम की। अब लड़कों की टीम क्या गुल खिलाती है ये तो हमें गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा। वेल आपके लिए हमारे लिए ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक कॉल लड़कों का तो आना ही चाहिए तभी तो हम इस गेम को कंप्लीट मानेंगे। बहरहाल ये मैं कहना फिर से ज़रूरी समझूंगी कि लड़कों की टीम थोड़ा सा कैजुअल हो जाती है, फिर अगर आप लोग ऐसे कैजुअल होंगे तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी कर दूंगी कि आपकी जो ये जो कैजुअल बिहेवियर है वो थोड़ा कहीं दूर हो जाएगा। देखते हैं लड़कों की टीम से शायद कॉल है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम।
0: आपका नाम?
2: दिवांशी।
0: दिवांशी, लड़कियों की टीम से गाना गाया जा चुका है तो इसलिए इस टाइम के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू
2: मैम। लड़कों की तरफ से गा सकते?
0: लड़कों की तरफ से तो ऑब्वियसली लड़के गाएंगे ना, अभी कोई लड़का नहीं आता है तो हम आपके कॉल को कंसीडर कर लेंगे। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
3: हेलो गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: अगेन राहुल वेलकम।
3: अच्छा जी मैम, ये एक मिनट का राउंड है लेकिन इसमें मैम गाने गाए नहीं जाते, गानों को पढ़ा जाता है तो उसका क्या पता?
0: मतलब ये गेम है तो गेम में तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब ये अंताक्षरी होती है तो वो जीतने और हारने और आपकी कैपेसिटी को देखने के लिए होती है कि आपको कितने मैक्सिमम गाने आते हैं।
3: लेकिन थोड़ा बहुत कई गाने मिक्स भी हो जाते हैं। ठीक ओके गाता हूँ मैम।
0: आपका टाइम शुरू करूँ मैं?
3: जी मैम।
0: 1 2 3 स्टार्ट।
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आजा सनम मधुर चांदनी मैम, ये जो मोहब्बत है कोई सहरी बाबू दिल लग जा गले फिर ऐसी रात, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा कोरा कागज था ये मन मेरा, जाने कैसे कब कहाँ मिल गए, जिंदगी की ना टूटे लड़ी एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, जिंदगी का सफर कैसा सफर बाहों में चले आओ, मेरी भीगी भीगी भागी सी रहती रातों में जागी, मुसाफिर हूँ यारो एक प्यार का नगमा मेरे नैना सावन भादो, मेरा चांद सा रोशन चेहरा तूने पुकारा और हम चले आए, रूप तेरा मस्ताना रातें लंबिया लंबिया गेरुआ पानी दा रंग देख के आज दिन चढ़िया, ते मैं तेनु समझावा इस कवाला लव बहती हवासा था वो जूबी डूबी पंपारा, और इसके अलावा जब भी मेट के हैं कई गाने मोजा ही मोजा एक प्यार का नगमा है। ठीक है इतनी गाऊंगा मैम, कोई इसमें कोई, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका ये राउंड क्योंकि इसमें गाने ना तो ढंग से गाए जाते हैं तो
0: सो आपने टोटल 30 गाने गाए हैं और ये देखिए एक्चुअली ये राउंड सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए कि आप
3: लेकिन मैम गानों को इसमें थोड़ा बहुत गाए ना तब उसका पता चले ऐसे गाने क्या है कि उनको बोलने से उनका थोड़ा वो मजा नहीं आता थोड़ा सा एक वर्ड में क्या बोलने उनको कई गाने एक जैसे होते हैं
0: यस ऑफ कोर्स और नेक्स्ट टाइम हम लोग सोचेंगे इस बारे में और मैं चाहूंगी कि वेंसडे को इस बार एक मिनट के राउंड को थोड़ा सा गा के किया जाए ओके थैंक यू सो मच बट फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया और बहुत बेहतरीन कोशिश थी मज़ा आ गया तो 300 पॉइंट्स के साथ लड़कों की टीम और आगे बढ़ती है एंड यस लड़कों की टीम के पॉइंट्स 320 पहले से थे और इसी के साथ 620 पॉइंट्स लड़कों की टीम के हो जाते हैं नॉट बैड बट स्टिल मैं ये कहूँगी लड़कों की टीम ने टोटल जो सपोर्ट किया वो एक या दो पीपल पे डिपेंडेंट थे यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे राहुल और अमित एंड मैंने स्टार्टिंग में अविनाश का नाम लिया इन्हीं की आवाज़ें सुनने को मिली और बाकी सारे के सारे सो गया ये जहां सो गया ये समा यही वाला चल रहा था और थैंक यू सो मच मैं बस यही कहूँगी जब

आज की विनर गर्ल्स रही हैं। गर्ल्स के 800 पॉइंट्स थे, नॉट बैड। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में माता की आराधना की जाती है और लड़कियां औरतें माँ का स्वरूप हैं, तो इनकी विजय की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वेंसडे हम राहुल की बात को भी कंसिडर करेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा सा एक मिनट में थोड़ा गुनगुना के, मतलब एटलीस्ट मुखड़ा जो है वो आप गाएं और गानों को और अच्छे से सुना जाए, क्योंकि कुछ ऐसे होती है ना चीज़ें जिसको सुन के मन करता है कि हाँ यार ये बदलाव करते हैं। तो चेंजेस हमेशा अच्छे होते हैं, थोड़ा सा अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशु, थैंक यू प्रीति, थैंक यू गीता जी एंड अवे, मतलब जिसका भी नाम ले सकूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, आपकी फरमाइश नहीं हो पाएगी। बट हाँ, सब ने आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। आरजे बीना की तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड टुडे। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला, विद योर फेवरेट आरजे बीना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून।

0: एक्सक्यूज मी, ये है इनविटेशन फॉर द गरबा नाइट। हम सब फ्रेशर्स ने मिलके सारी अरेंजमेंट्स की है, प्लीज कम। सी यू।
1: तो उठा ढोल।

सो क्या हाल चाल है पब्लिक, कैसे हैं आप सब। और बहुत ही शिद्दत के बाद फाइनली मैं आप सभी से मिल पाई हूँ। पता नहीं क्या हमारे होस्ट माइक के साथ में इशू आ रहा था और उसकी वजह से मैं बार बार रिपीट एंड रिपीट आप लोग से कांटेक्ट करना चाह रही हूँ, आप लोग से बात करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग तक मेरी आवाज़ जा रही थी अभी तक कि नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही थी। तो अगर नहीं जा रही थी, अगर जा भी रही थी, उस हिसाब से आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल एक बार फिर से स्वागत करना चाहेगी आप सभी का। सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सविता दुबे जी, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी जी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, विजय रावत, दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, एडवोकेट सुनील मझारा आपका भी स्वागत है, गुलफसा जी आपका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो गुलफसा जी आपका भी स्वागत है, धर्मेश त्रिपाठी स्टेट्यून सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। और बिना किसी देरी के एंजॉय करेंगे अब हमारी आज की पहली फरमाइश। चलिए दोस्तों, देर आए एटलीस्ट दुरुस्त तो आए ना, मुझे तो लगा था कि आज का ये फरमाइशी प्रोग्राम तो करना पड़ेगा कैंसिल। भैया कैंसिल होता चाहे नहीं होता, आप लोग की फरमाइशी गीतों को डेफिनेटली आपकी आज सिंपल आप सभी तक पहुंचाती, लेकिन शायद आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की इस नॉन स्टॉप खट्टी मीठी बकबक को आप लोग बहुत सारा इतना सारा मिस करते कि मैं क्या ही बताऊं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है। और फिर अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश को। एंड हाँ दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश है आशा मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशा मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना सच्चा है तेरा दरबार। सो एंजॉय करते हैं नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये सुपर डुपर डुपर हिट डिवोशनल सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ आशा मिश्रा जी की फरमाइश पर, लखबीर सिंह लखा जी की आवाज में। और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन स्टेडियम।

गायक है ये, बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा लखबीर सिंह लखा की आवाज में, हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। और पढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, सो अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना बंगला दिया गाड़ी दी। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से लखबीर सिंह लखा की आवाज में नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये सुपर डुपर हिट नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, किशन बदवलिया आपका स्वागत है और नागेश्वर धाकर जी स्टेट ही उन वेलकम इन योर शो।

बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, हमने एंजॉय किया लखबीर सिंह लखा की आवाज में। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। सो ये तो फरमाइश थी जग्गू दादा की, और अगली फरमाइश चलिए देखते हैं किसकी है हमारे पास में। सो दोस्तों अगली फरमाइश तो हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है फिर से लखबीर सिंह लखा जी की आवाज में नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से नगमा। जी हाँ दोस्तों, हम इंजॉय करने जा रहे हैं मोहित की फरमाइश पर, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। और इसी के साथ में वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, विशाल बेदर्दी, आपका स्वागत है। इसी के साथ में विशाल बेदर्दी का कहना है कि गुड इवनिंग एंड सलाम आर जे सिंपल, कहते तो हो कि यू आर नॉट सो सिंपल, बट हु नोज, माय फैमिली नोज, माय वेल विशर्स नोज, एंड ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली गॉड नोज। Stay tuned, विशाल बेदर्दी, और enjoy करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। बोलिए सच्चे दरबार की जय, और सच में तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है और जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। पता नहीं क्यों इधर उधर लोग अपने गिले शिकवे जो भी होते हैं लोगों से कहते हैं, एक बार सच में ऊपर वाले से कह के देखो ना, एक फ्रेंडशिप उनसे करके देखो ना, दिन भर में 10-15 मिनट उनसे बात करो ना, देखो सब चीज का समाधान निकलेगा। एंड बी पॉजिटिव।

मिश्रा की आवाज में हमने एंजॉय किया है मोहित की फरमाइश पे, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। ये गाना एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट हाउ लवली हाउ रोमांटिक दीवाना पिक्चर का गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनम धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से, और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का दोस्तों कुछ कहना भी है। क्या कहना है इनका सुनिएगा जरा। धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि लोग कहते हैं कि हम टीवी देखकर वक्त गवाते हैं, उन्हें क्या पता कि हम आरजे सिंपल के साथ गानों पर ठुमके लगाते हैं। मेरी पसंद का गाना बजाने के लिए थैंक यू जी, अब हम जोर शोर से आपकी वाहवाही के नारे लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फरमाइश पूरी करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फरमाइश पेश करने के लिए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है गाना, सुनिए जरा देखिए ना। अच्छा जी, सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर।

सुनिए जरा देखिए ना, हमने एंजॉय किया लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड सुनहरा सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। एंजॉय करते हैं निबर जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

मुझे प्यार कर दी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निबर जी की फरमाइश पर, जो की है रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के सामने कुछ अर्ज करना चाहती हैं। सो इरशाद इरशाद जरूर करिएगा। मेरा कहना है कि सब्र ने टाके लगाए सब दुआओं के बगैर, सब्र ने टाके लगाए सब दुआओं के बगैर, जख्म भी बढ़ने लगे अब दवाओं के बगैर। भीड़ से जंगल नहीं बनता ये हकीकत है, शेर ही होता है राजा गुफाओं के बगैर। घिस घिस कर खुद को चमकाया है मैंने, यूं ही नहीं चमका हूं खताओं के बगैर। मुझको आदत नहीं हाथ फैलाने की, मैंने सीखा है जीना इल्तिजाओं के बगैर। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है प्रीति शुक्ला जी की बहराइश से, उनको सुनना है गाना है नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, और शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा डांडिया वाला गाना, सुपर डुपर हिट डिवोशनल सॉन्ग प्रीति शुक्ला जी की।

फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी प्रीति शुक्ला जी की तरफ से, जो की है बहराइच से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है एडवोकेट सुनील मझारा की, और एडवोकेट सुनील मझारा को सुनना है गाना कोई ना कोई चाहिए। अच्छा प्यार करने वाला, हाँ। सो एंजॉय करेंगे दीवाना का ये एक बार फिर से रोमांटिक सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। हम एंजॉय किया है ये गाना, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी एडवोकेट सुनील मझारा की, और अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों गुलफ्सा की, और गुलफ्सा को सुनना है गाना ये लड़का हाय अल्लाह से। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, कभी खुशी कभी गम का, सिर्फ और सिर्फ गुलफ्सा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: कबूल है,
1: कबूल है, कबूल है। सो हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सरंग में बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। एंड दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना चौगाड़ा। से एंजॉय करते हैं नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये सुपर डुपर हिट डांडिया सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है निशा की पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

आपने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की गोंडा से और इंजॉय करते हैं सबीहा की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा गाना था, हमने एंजॉय किया है शिवम सिंह की फरमाइश पर। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा शिवम सिंह है लखनऊ से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले इस नगमे को सुनने के बाद में मुझे कुछ याद आ रहा है। इसे मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि पीठ पीछे वार आगे मुस्कुराना देखिए, पीठ पीछे वार आगे मुस्कुराना देखिए, खंजरों को फूल कहता है जमाना देखिए, जख्म देकर पूछ रहे हैं वो हाल हमसे, जख्म देकर पूछ रहे वो हाल हमसे, कितना आसान है दिल दुखाना देखिए, आपके चेहरे की रंगत बता रही है आप, आपके चेहरे की रंगत बता रही है आप, अपने चेहरे का बदल जाना देखिए, रंग गिरगिट का भी शर्मिंदा हुआ है आपसे, आपका हर रंग में यूं ढल जाना जनाब देखिए। से एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है नागेश्वर धाकड़ की, और उनको सुनना है गाना आग चप से है लड़ी। सो एंजॉय करते हैं आ अब लौट चले का ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर।

है प्यार, हमने एंजॉय किया ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले रिमांड की तरफ। आज की अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और इनके फरमाइशी गीत के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहे कि आप सभी से अलविदा। सो एंजॉय करेंगे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। सो दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल फिर से एक नई बात के साथ, एक नई जज्बात के साथ, एक नए गीत के साथ। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, गुड नाइट, शब आखिर।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हेलो भाई साहब नमस्कार। और भाई साहब कैसे हैं? गजल सुनना था। अच्छा तो हम सुना नहीं पाएंगे। अच्छा तो राहत फतेह अली खां का सुना रहा हूँ। नजर से नजर मिलाई गई है, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। बस इतने नजर से नजर मिलाई गई है, मैं पीता नहीं पिलाई गई है। राहत फतेह अली खां का है ये गजल। हाँ ठीक है, बहुत बहुत आदाब आपको भी।

हाँ नमस्कार, ये कैसे हैं सर? मैंने कहा कि मैं ही शुरू कर दूं आज, मैं कोशिशें करूंगा। शायद इस बार भी थोड़ा कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छा, और मैं ये आपके ऊपर डेलीगेट कर रहा हूँ गाना। अब क्या मिसाल दूँ, बाकी अंडरस्टूड है, अब समझ गया। पहला शब्द आपके लिए है, बाकी शब्द समझ लीजिए कि अब किसके लिए होगा। तो क्या मैं कोशिश करूं? अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गए अकरम महतब की। अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गए अकरम महतब की। अब क्या मिसाल दूं

दिले कानो आँखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की, अब क्या मिसाल दूं, गैसो तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले रे कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, तौबार झिल मिलाए शमा शमा आफताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई महताब की, अब क्या मिसाल दूं, दीवार वो ये दर्द रंग या चल पे पैरहन, घर का

0: मेरे जन्नत के खाब की अब क्या मिसाल दूं। थैंक यू सर। चलिए मैं एक छोटा सा एक आध मुखड़ा और शायद वो अगर इजाजत दें तो सुना। तुम मुझे भुला ना पाओगे। क्या बात है, आपने पूरा एकदम इसको सही कर दिया। तो अगर कहिए तो एक दो लाइन में सुना दूं।
1: तुम मुझे जो भुला न पाओगे, तुम मुझे जो भुला

0: संग संग तुम वे गुनगुनाओगे, तुम मुझे यो भुला न पाओगे, तुम मुझे यो।
1: थैंक यू। मैं कहिए सुना दे।

0: पाओगे जब ख्यालों में मुझको पाओगे तो मुझे यो भुलाना पाओगे तुम मुझे यो।
1: थैंक यू।
2: हेलो हेलो गुजरा दरअसल आपकी आवाज इस पर रेडियो पर बहुत साफ आ नहीं रही थी, तो मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी था कि आपकी आवाज से इतना लगाव हो गया है कि उसको हर हफ्ते तो कम से कम सुनने का मन ही बना रहता है। प्रसन्न रहे प्रसन्न रहे, बढ़िया ठीक हूँ। राग यमन तो है ही, अपने आप में कुछ यूनिक भी है, और निस्संदेह हमने उसको कुछ कारणों बस ही इतना चाहा है, कुछ तो जरूर उसमें बात है। क्या ही कहा जाए, नहीं किसी की भी पसंद साधारण नहीं होती है, और हर एक आदमी अपने हिसाब से ठीक चीजें ही पसंद करता है। आप सभी का हमारे प्रति ऐसा लगाव है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और राग यमन कल्याण का ही जैसे कोई किसी का स्पेशलाइजेशन हो, जैसे टीचर किसी एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाने में लगे रहते हैं, उसी का स्पेशलाइजेशन है। ऐसे ही मैं इसी पर कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूँ और आपके सामने रखता रहता हूँ। और आज चूंकि नवरात्रि भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस पर कुछ धार्मिक चीजें ही आपके सामने रखी जाएं, कुछ आस्था से भरी हुई चीजें रखी जाएं। और मैं इस पर आधारित एक छोटे से भजन की कुछ लाइनें जरूर आपके सामने रख रहा हूँ। मैं शुरू करूँ। पधारो पधारो पधारो पधारो मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ये राग यमन कल्याण पर आधारित ही है। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, बोले शंकर जी ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। और बस इतना ही सुना पा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ऐसे क्लासिक चीज है कि कोई भी इसको याद कर ले आसानी से, कोई भी कहीं भी गा ले जाए, यही सब इसमें यही इसकी खसूसियत है। अच्छा कौन सा है? वो तो निस्संदेह है, उसकी तो कुछ एक अलग ही उसका वो है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर ही, वो हमारा शुरुआती दौर का बिल्कुल पसंदीदा गीत रहा ही है, और मैं जरूर ही इसको, आप कहा है तो जरूर ही आपके सामने रख रहा हूँ। मधुबन खुशबू देता है,

भुवन खुशी आए, मधुबन खुशबू देता।

चल सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अस्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, चलती है लहर चलती है लहरा के पवन किसान सदी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन किसान सदी की चलती रहे।

को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। थैंक यू। ये साजन मीना सुहागन फिल्म का गीत था। सारे ही लोग, मैं तो समझता हूँ कि दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, और मैं तो कुछ न कुछ चल ही लेता हूँ दो चार कदम कहीं न कहीं। बस क्या दे पाने की बात तो नहीं है, लेकिन बस केवल इतनी इच्छा रहती है कि मुझे इतनी ताकत दे मेरे प्रभु, किसी को प्यासा जो देखो तो खुद पानी हो जाऊं। बस यही मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को मन में रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और जब आपके मन में बात होगी तो आपको अलग ही एक संतुष्टि मिलेगी, ऐसा मेरा सोच रहा है। और बहुत समय मैं आपका ले चुका हूँ, अब मैं एक श्रोता के रूप में अनुमति दीजिए। ओके, थैंक यू आशीर्वाद।

0: हेलो सर, नमस्ते। जी, और कौन होता नाम सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपको भी सर नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपने सुना होगा, प्यार हमारा अमर रहेगा। जी
1: ठीक।

नजरिया

Thank you.

0: थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू
1: सर। तो आपका जो मैं कह चुका था तो
0: थैंक यू सो मच सर, शुभ रात्रि सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

शुभ संध्या मनु जी। रात बनेगी। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है। देर ना, परिवार सब ठीक ठाक है। देर ना करते हुए मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। एक सपेरा एक लुटेरा मूवी का गाना है ये। हम तो

सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, मालूम न था हम यूं नाकाम वफा होंगे, किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे।

0: जो रोक सके रोके, जो रोक सके रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
1: थैंक यू सर। हाँ सर, मैं ये लास्ट टाइम भी गाने वाला था कि मुझे पिछले बुधवार को मुझे मौका नहीं मिला। जी और एक गाना सर मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा हूँ सुनाने के लिए, उसकी मैं आपको लास्ट स्टैंजा सुनाता हूँ।
0: मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, पास ले आते जाते रहे प्यार, ले कि नहीं होगा कम,
1: जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ। थैंक यू सर। रूप कुमार राठौर साहब की है, उनसे बेहतर ये गाना, उनसे बेहतर सर ये गाना कोई गा भी ना पाता। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यार। नहीं नहीं, ये गाना, ये जो जिंदगी मौत ना बन जाए, ये उन्होंने गाया है शायद सोनू निगम साहब ने, जहां तक मुझे याद है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। हेलो।

थैंक यू सर। हाँ नमस्कार भैया, अरे क्या करे, चलो अनु भाई को बहुत बहुत थैंक्स भैया। क्या चीज सुनाया उन्होंने, वादे नहीं तोड़ेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे,

जो रो सके रो के। बहुत बहुत थैंक्स हेलो भाई, बहुत बेहतरीन चीज सुनाया, याची लाइन था। और कैसे हैं भैया, आप ठीक हैं? तो भैया हम भी शुरू कर रहे हैं, चुप टूटा फूटा थोड़ा सा याद आ गया है। तो मिले न फूल तो से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसल हमने जिंदगी कर ली, मिले ना

अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न पूरी।

नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, युवा खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल तो का तो से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बशर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से, यही कहेंगे सभी, यही कहेंगे कभी हमने खुद खुशी कर ली, मिले न फूल तो का तो से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर

0: in the pool.
1: Thank you, sir. Thank you.

हाँ जी सर नमस्कार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप पहचानने में बड़े उत्साह हैं सर। नहीं नहीं सर, हमने कहा कि लास्ट मोमेंट पे हमें लगा सर हो सकता है आज ट्रेन में मुलाकात हो, क्योंकि काफी देर से एंगेज जा रहा था। नहीं नहीं सर, इसमें क्षमा प्रार्थी की कोई बात नहीं है। सर आज आपको एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, संदेशे आते हैं। जी जी बॉर्डर का है ये, बॉर्डर उनका जी। तो वैसे तो ये सॉन्ग काफी लंबा है, लेकिन मैं कुछ स्टेंजा केवल आपको सुनाऊंगा ताकि दूसरे को भी मौका मिले। जी जी जी जी सर, तो शुरू करते हैं सर।

0: Listen.
1: सर वो तो सो गई है अभी क्या बच्चा इतना जग रहा है बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच प्रणाम प्रणाम सर

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी अधूरी बातें। राम, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? राधा की आवाज सुनकर राम ने धीरे से पलट कर देखा। 20 साल बाद सामने खड़ी उस लड़की को पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा जिसे वो कभी बिना देखे भी पहचान लिया करता था। राधा, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज, बस चेहरे पर उम्र की कुछ लकीरें और मुस्कान के पीछे छिपी हुई जिंदगी की थकान। राम कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। राधा हल्का सा मुस्कुराई। क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? राम ने धीरे से कहा। तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की थी, पहचानना कैसे भूल जाता। राधा की मुस्कान वहीं रुक गई। अस्पताल के गलियारे में लोग आते जाते रहे। किसी को नहीं पता था कि वहां दो ऐसे लोग खड़े थे जिनके बीच 20 साल पहले एक पूरी जिंदगी बसने वाली थी। राम अपनी मां की जांच करवाने आया था और राधा अपनी 10 साल की बेटी अनाया को लेकर अस्पताल पहुंची थी। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल की खिड़की के पास रखी बेंच पर बैठ गए। 20 साल का फासला था मगर बातचीत शुरू करने के लिए दोनों को वही पुरानी झिझक महसूस हो रही थी। आखिर राधा ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अब ठीक है, बस उम्र हो गई है, राम बोला। और तुम? राधा बोली। राम मुस्कुराया। मैं भी ठीक हूं। राधा ने उसकी तरफ देखा। तुम आज भी झूठ बोलते वक्त नजरें नीची कर लेते हो। राम पहली बार थोड़ा खुलकर मुस्कुराया। और तुम आज भी सवाल पूछने से पहले ही जवाब जानती हो। दोनों हंस दिए। वो हंसी कुछ ही सेकंड रही लेकिन उन कुछ सेकंडों में दोनों फिर से 20 साल पीछे पहुंच गए।

0: जी हाँ, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन जिंदगी का ये काश काश और काश शायद समाप्त नहीं हो पाता। हर इंसान की जिंदगी का यही हाल है, हासिले जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलेट 9.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन,
1: प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना 20 साल के अंतराल के बाद राम और राधा अस्पताल में मिले। राम अपनी माँ को दिखाने आया था और राधा अपनी बेटी को। वही झिझक, वही खामोशी आज भी दोनों के बीच थी, और एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही एक बार फिर से उन पुराने दिनों में लौट गए। अब आगे स्कूल में राम हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता था, राधा आगे बैठने वाली उन लड़कियों में से थी जिनकी कॉपियां हमेशा साफ और अक्षर सुंदर होते थे। राम गणित में अच्छा था, राधा हिंदी में। पढ़ाई के बहाने दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन राधा ने उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बड़े होकर क्या बनोगे? राम ने नीचे जवाब लिखा था, अभी पता नहीं, लेकिन जहां भी रहूंगा तुम्हें बताऊंगा। राधा ने उसके नीचे एक छोटी सी स्माइली बना दी थी। उस उम्र में दोनों को प्यार का मतलब पूरी तरह नहीं मालूम था। उन्हें बस इतना पता था कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद भी एक दूसरे से बात करने का मन करता है। फिर 10वीं की परीक्षा खत्म हुई। राम के पिता की छोटी सी दुकान थी, घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। राम ने आगे पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। राधा कॉलेज चली गई। शुरुआत में फोन पर बातें होती रहती, कभी 10 मिनट कभी आधा घंटा। फिर घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई और परिस्थितियां उनके बीच आने लगी। एक दिन राधा ने फोन पर कहा, राम पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। राम देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूं। राधा बोली, जानता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे चाहने से जिंदगी नहीं बितानी चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। राम ने जवाब दिया था, राधा ने रोते हुए कहा था, और अगर तब तक देर हो गई तो? राम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा राधा, लेकिन इस बार तुम्हारे सामने सिर झुकाकर नहीं, तुम्हारे बराबर खड़े होकर। दोनों को लगा था उनके पास बहुत समय है, लेकिन जिंदगी किसी के वादे का इंतजार नहीं करती। कुछ ही महीनों बाद राधा की शादी तय हो गई। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और परिवार चाहता था वो निश्चिंत हो सकें।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना राम और राधा बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें एक दूसरे से तब से प्यार हो गया था जब वो शायद प्यार का मतलब भी नहीं समझते थे। बड़े होने के बाद राम परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगा और राधा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। अब आगे राधा ने राम को आखिरी बार मिलने बुलाया। स्टेशन के पास वाली छोटी सी चाय की दुकान पर दोनों बैठे थे। वही दुकान जहां वो कॉलेज के दिनों में कभी कभी मिलते थे। राधा ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? राम ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल कह रहा था कि वो उसका हाथ पकड़कर कह दे, मत जाओ। लेकिन उसने कहा, तुम अपने पापा को दुख देकर मेरे पास आओगी तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। तो हमारा क्या होगा? राधा ने पूछा था। राम ने बहुत देर बाद जवाब दिया, शायद हम एक दूसरे की जिंदगी में नहीं होंगे, लेकिन जो था वो झूठा नहीं हो जाएगा। उस दिन राधा चली गई और राम अपनी चाय ठंडी होने तक उसी बेंच पर बैठा रहा। अस्पताल में किसी बच्चे की रोने की आवाज से राम की यादें टूट गईं। राधा सामने बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं। तुम्हें वो आखिरी दिन याद है? राधा ने पूछा। राम ने कहा, कुछ दिन भूलने के लिए नहीं होते राधा, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। राधा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसने वही सवाल पूछा जो शायद 20 साल से उसके मन में था, राम तुमने शादी क्यों नहीं की? राम खिड़की से बाहर देखने लगा, बोला, शुरुआत में लगा कि तुम्हारे जाने के बाद किसी और से प्यार करना तुम्हारे साथ बेमानी होगी। बाद में समझ में आया कि जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है, लेकिन तब तक मैं अकेले रहने का आदी हो चुका था। कभी किसी को पसंद नहीं किया? राधा बोली, किया होगा, लेकिन किसी को जिंदगी में लाने के लिए सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता। मैं हर बार खुद से यही पूछता रहा कि क्या मैं किसी को वो जगह दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना राम और राधा 20 साल बाद अस्पताल में मिले। राम अपनी माँ को दिखाने आया था और राधा अपनी बेटी को। वो दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हालातों वश उनकी शादी नहीं हो सकी। मिलने के बाद वो दोनों अतीत में लौट गए। पुरानी सारी यादें ताजा हो गईं। फिर राधा ने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की। अब आगे राधा ने धीरे से कहा, और जवाब हमेशा ना था। राम मुस्कुराया, शायद मैंने खुद को कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया। इस बार राधा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अनाया उसके पास आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। मम्मी, डॉक्टर अंकल ने कहा है थोड़ी देर में फिर बुलाऊंगा। राधा ने उसे अपने पास बैठा लिया। राम, ये मेरी बेटी अनाया है। राम ने मुस्कुरा कर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में, और मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो कभी अपनी ड्राइंग दिखाना, राम ने छोटी बिटिया से बोला। अनाया अपनी माँ से कुछ पूछने लगी और राम चुपचाप उन्हें देखता रहा। राधा ने अपनी बेटी के बाल ठीक किए। उस छोटे से पल में राम को समझ आया कि जिस लड़की को वो कभी अपने साथ भविष्य बनाते हुए देखता था, उसने अपना एक अलग संसार बना लिया था। उस संसार में उसकी जगह नहीं थी। और इस बात का दुख तो हुआ, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने राधा को बताया कि अनाया को कुछ और जांचों की जरूरत है, इसलिए परिवार को रिपोर्ट आने तक इंतजार करना था। राम ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, अस्पताल में मेरी पहचान है, जांच या डॉक्टर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। राधा ने सिर हिला दिया, थैंक यू राम। फिर दोनों अलग अलग रास्तों से बाहर चले गए। राम घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। माँ ने पूछा, आज बहुत चुप हो, सब ठीक है? राम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आज एक पुराना दोस्त मिल गया था। मां मुस्कुराई, दोस्त था या कोई खास? राम ने अपनी अलमारी खोली और पुराने कागजों के बीच से एक छोटी सी स्कूल की कॉपी निकाल ली। उसके आखिरी पन्ने पर वही सवाल लिखा था, बड़े होकर क्या बनोगे? और नीचे राम का जवाब था, जहां भी रहूंगा तुम्हें बताऊंगा। राम ने कॉपी बंद कर दी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना, स्कूल में एक दूसरे को पसंद करने वाले राम और राधा, जिनकी आपस में शादी परिस्थितियों के कारण नहीं हो सकी थी, 20 साल बाद फिर एक दिन अचानक मिले और पुरानी यादों में खो गए। यादों से वापस आकर जीवन का यथार्थ समझकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब आगे, पहली बार राम को लगा कि शायद वो 20 साल से राधा का नहीं, अपने उस पुराने वादे का इंतजार कर रहा था जो उसने एक ऐसे लड़के की तरह किया था जिसे दुनिया की मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। कुछ हफ्ते बाद राधा अपनी बेटी के साथ राम की मां से मिलने आई। दोनों परिवारों ने साथ बैठकर चाय पी। अनाया ने राम को अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाई। उनमें से एक ड्राइंग में एक स्कूल, दो बच्चे और उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ था। राम ने पूछा, ये कौन है? अनाया बोली, मम्मी कहती हैं कि स्कूल की दोस्ती जिंदगी भर याद रहती है। ये मम्मी और ये उनके दोस्त। राम ने ड्राइंग को कुछ पल देखा और मुस्कुरा दिया। राधा ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में पुरानी यादें थीं, लेकिन इस बार उन यादों में कोई शिकायत नहीं थी। जाते वक्त राधा दरवाजे पर रुकी। राम, एक बात पूछूं? राम बोला, पूछो। अगर समय पीछे लौट जाए तो क्या तुम फिर वही फैसला करोगे? राम ने कुछ देर सोचकर कहा, शायद उस उम्र में फिर वही करता, क्योंकि तब मुझे लगता था कि तुम्हें दुख से बचाना ही प्यार है। लेकिन आज अपने छोटे वाले राम से कहता कि अपने प्यार के लिए लड़ना और किसी की जिम्मेदारी समझना दोनों साथ हो सकते हैं। हर बार खुद को पीछे कर लेना जरूरी नहीं है। राधा की आंखें भर आईं। राम ने आगे कहा, और तुमसे एक बात कहूं, अगर जिंदगी ने मुझे किसी अच्छे इंसान से मिलने का मौका दिया तो इस बार मैं सिर्फ अतीत की वजह से उससे दूर नहीं भागूंगा। राधा मुस्कुराई, बस यही सुनना चाहती थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चली गई। राम दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे पहली बार ऐसा नहीं लगा कि कोई उससे कुछ छीन कर ले जा रहा है। कुछ कहानियां वापस पाने के लिए नहीं होती, वो हमेशा ये समझाने आती हैं कि हम कौन थे, क्या खोया और अब किस तरह जीना है। उस रात राम ने अपनी पुरानी कॉपी अलमारी में वापस रख दी। इस बार उसे छिपाकर नहीं, बल्कि बाकी किताबों के साथ, क्योंकि अब वो उस याद से भागना नहीं चाहता था। अब उसे अपनी जिंदगी का एक सुंदर हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहता था। पहली मोहब्बत का अधूरा रह जाना जिंदगी के अधूरे रह जाने जैसा नहीं है। अतीत को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन उसके कारण अपने आज और आने वाले कल को खो देना जरूरी नहीं। सच्चा प्यार कभी कभी हमें किसी के साथ रहना सिखाता है और कभी अपने भीतर की अधूरी बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अधूरी बातें। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

0: अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।
1: एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते ही बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर

0: और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हजारों तो हुई आज शाम। नाप हो सुर्खी मेरी नकली है तमाम, कल है दिन जो हजारों तो हुई आज शाम। ओ दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर
0: क्या?

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत,
6: देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
14: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
15: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
14: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
15: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
14: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: what they do to feelings.
1: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।